कहते हैं जब दिल खुश होना तो हर रास्ता खूबसूरत लगने लगता है और कदमों में अपने आप एक नई रफ्तार आ जाती है। प्यार और खुशियों से भरा यही एहसास इस गीत में बड़ी खूबसूरती से झलकता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आज दिन है सोमवार, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय यह सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठक

0: बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। समय बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रयासों से समय बदलने की कोशिश कीजिए। एक छोटा कदम भी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ कदम होता है। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 318। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता का प्रसारण किया जाएगा। श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आप सुन रहे हैं आजकल, और इसका भाग 6 आज प्रसारित किया जाएगा। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की, और इस कार्यक्रम को आप पुनः शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं।

शाम 7 बजे माफ कीजिएगा, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिस्तरे गीत और 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। बजकर 15 मिनट पर त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, और इसे आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे। 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक है। शाम 4 बजे सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, डॉक्टर अजीत मिश्र से जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ममता सिंह की बातचीत आप सुनेंगे। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुति जुबेर खान की। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म यादों की बारात के गाने। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण, निर्देशन पुरुषोत्तम धारवेकर। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर सुनेंगे आप और 8:45 पर समाचार संध्या।

रात्रि 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए और 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये था आज का झरोखा। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे भाग 318, लंका कांड।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्रीराम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जय घोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों, बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

0: संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का छठा भाग।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। दो शिष्य अपने गुरुजी से बार बार पूछा करते थे कि हम कैसा गाते हैं। गुरुजी चुप्पी साध जाते थे। जब बार बार पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा कि गाना सुनाओ। गाना सुनाने के बाद फिर वही सवाल पूछा कि गुरुजी हम कैसा गाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी तो हमने तुमसे रियाज सुना है। तुमने सिर्फ रियाज गाया है, गाना तो बहुत दूर है। तो खास बात यह है कि गायन में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। जितना गायन सहज होगा उतना आत्मचेतना लाएगा। मैं सोचता हूँ कि अच्छे गायन के लिए हर जोड़ बेजोड़ होना चाहिए। उसमें बढ़त, बहलावे, डांट, कंपित, आंदोल, लहक, लाग, डगर, जरब, ध्रुव, स्मृत, मुरन, सूत, मींड, बल, पेंच, डांट, धुरन, मूर्छित, गमक, सपाट, छूट, गमक की ताने, बोल ताने, फिरत, जरब से गमक, कूट तान, कड़क, मंद्र मध्य प्रधान होते हुए भी तीनों सप्तक में सधी हुई ताने आदि आदि होना बहुत आवश्यक है। स्वर के उपासक माया के बंधनों को तान तलवार से काट कर राग रंग से भवसागर को तर जाते हैं। तो आइए मेरी स्वर रचित बंदिश सुनिए राग मारवा में।

गायक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वो बंदिश को अपने गले के धर्म के अनुरूप स्वरूप में ढाल दे। आमिर खान साहब ने राग बिलास खानी में तानसेन के ध्रुपद को कितना खूबसूरत ढाला है, तो वह बंदिश मैं आपको गाकर सुनाऊं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का छठा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7 बजे हैं और प्रस्तुत है हमारा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल श्रोताओं, महाकाल वंदन के इस अध्याय में आइए प्रातः वंदन करते हैं कालों के काल महाकाल का। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।

FM 102.5 MHz पर ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूचना देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। सुबह 9:30 पर सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। सुबह 10:30 पर सुनिए सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा। सुबह 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से। दोपहर 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल विविध भारती मुंबई से। और दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर विविध भारती मुंबई से। दोपहर 2:00 सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे विविध भारती मुंबई से। दोपहर 3:00 सुनिए सखी सहेली। व शाम 4:00 आप सुन सकेंगे सेहतनामा विविध भारती मुंबई से।

हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवाओं का अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम युववाणी और शाम 6 बजे होगी भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत, 6:40 पर सुनिए आजकल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:21 पर सुनिए माटी दी बात और 8 बजे आप सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा के आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत आकाशवाणी उज्जैन से। रात 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले होगा। रात 10:00 सुनिए 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात 10:20 पर सुनिए आपकी फरमाइश या भोपाल कार्यक्रम और रात 11:10 से सुनिए एफएम गोल्ड के कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये था हमारा आज का कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच में एयरपोर्ट और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाने की घोषणा की। भोपाल में आज उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद का आयोजन होगा। प्रदेश में 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू होगी और अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश की संभावना। कई जिलों में गरज चमक के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नीमच में कहा कि जिले में शीघ्र ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वे अग्रोहा भवन में आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में 1 लाख से अधिक शासकीय भर्तियां की गई हैं और आगामी 2.5 वर्षों में 3.5 लाख से अधिक भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा से संकल्प अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी और सेवा की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने नीमच के खिमला क्षेत्र में मादा चीता छोड़े जाने को भी जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के साथ विश्व पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। वे कल ग्वालियर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे।
1: और उस आजादी के बाद जो 65 वर्ष गुजरे, वे संघर्ष के बाद कई देशों के लिए हजारों वर्ष लगता है उनके आकार बदलने के, चुटकी भर में नहीं होता। और 2014 में एक वातावरण था हमारे देश जहां लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं समाप्त होने की कागर, और उस समय भी भारत माता के एक ऐसे सेवक और ऐसे रक्षक ने कमान संभाली जिसने भारत माता की दिशा और दशा दोनों पिछले 12 वर्षों में बदल के छोड़ दी।
0: इस दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि अधोसंरचना, मानव संसाधन और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। श्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर में करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा, जिससे करीब 18,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत कल झाबुआ में गुजरात के वड़नगर से वाराणसी तक की सेवा संकल्प यात्रा का स्वागत महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और जनप्रतिनिधियों ने किया। वहीं धार में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा में विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अशोकनगर के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 25 सितंबर को मेरे सपनों का भारत तकनीकी नवाचार से विकसित भारत 2047 विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: 76वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर देश के साथ प्रदेश में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम देखते हैं कि यह अभियान रतलाम में किस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के विशेष अवसर पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत रतलाम में भी रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और महादीपोत्सव आयोजित किया गया। वहीं हितग्राहियों ने अपने घरों के बाहर दीपक लगाए, किसी ने रक्तदान तो किसी ने सेवा और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। रतलाम के युवा चिंटू मेहता इस अवसर पर बताते हैं कि
2: प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल से पिछले 4-5 सालों से अपने परिजन के लिए दवाइयां ले रहा हूं, जिससे प्रति माह मुझे जो दवाइयां पहले 2-3 हज़ार रुपये की मिलती थी वे अब मात्र 500 रुपये में ही मिल रही है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, जिससे हमें बीमारियों को लेकर चिंता अब नहीं सताती है।
3: मैं सावलिया पाटीदार पाजनखेड़ा से, प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हैं उनसे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं और ये एक अच्छी योजना है, इससे ग्रामीण जन भी काफ़ी खुश हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की जन औषधि योजना है उससे भी लोगों को कई सारी दवाइयाँ बहुत ही कम दामों पर मिल रही हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: भोपाल में आज उद्यानिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर नीति संवाद का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संयुक्त आयोजन में उत्पादन, प्रसंस्करण, वित्तीय संसाधन, मूल्य संवर्धन और वैश्विक बाजार तक पहुंच पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थाओं, उद्योग प्रतिनिधियों और कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 सत्रों में उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाओं, निजी निवेश, आधुनिक तकनीकी और बाजार से जुड़ाव पर भी चर्चा होगी। बिहार से आए 16 सदस्यीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दल ने उज्जैन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन में दल से संवाद कर शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन वीर भारत संग्रहालय, सर्प उद्यान और महाकाल महालोक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वीर भारत संग्रहालय में प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक की गौरव गाथाओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि सर्प उद्यान के माध्यम से सांपों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास होगा। वन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल की लिखित परीक्षा में सफल 5,935 वन रक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और पैदल चाल परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक अलग अलग वन मंडलों में होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 2 रजत पदक जीते हैं। एलावेनिल वलाविरन, विदारसा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एलावेनिल जापान की हिनाता ताइची के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। नए शामिल किए गए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने भारत के लिए 3रा पदक पक्का किया। उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम ट्रेडिशनल MMA स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में आज उनका मुकाबला सिंगापुर की तेओ हुई हुन से होगा। सेमीफाइनल में जीत या हार दोनों ही स्थिति में सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का मुकाबला कल श्रीलंका से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भी बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आगे भी बनी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के पीताम्बरा सर्वसिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर के पास हाल में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत की घटना के बाद रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ और अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 सप्ताह नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में भी मेरा युवा भारत द्वारा ओबीसी बालिका छात्रावास में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा संगम और स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि उपज मंडी जबलपुर में आयोजित साप्ताहिक जैविक हाट में कल बरगी विधायक नीरज सिंह ने

व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खंडवा में गणेश उत्सव के दौरान मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने वाली विभिन्न गणेश उत्सव समितियों का कल सम्मान किया गया। अशोकनगर के चंदेरी में हथकरघा संचालनालय 3 माह का साड़ी बुनाई कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहा है, जिसका चयन आवेदन

अनूपपुर डिंडौरी मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश की संभावना, कई जिलों में गरज चमक के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात श्रोताओं, जय श्री महाकाल। सुबह की शुरुआत हो उज्जैन के मंदिरों की घंटी की मधुर आवाज के साथ, शिप्रा के शांत घाटों से आती ठंडी हवाओं के साथ और स्कूल जाते बच्चों की खिलखिलाती हंसी के साथ। यही तो है हमारे उज्जैन की खूबसूरत सुबह। महाकाल की नगरी में हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और कुछ नई खबरें लेकर आता है। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात उज्जैन में। आज की सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत सोच के साथ करते हैं। हमारे छोटे छोटे अच्छे काम, हमारा व्यवहार और हमारी सकारात्मक सोच भी समाज में बदलाव ला सकती है। तो इसी अच्छी सोच और नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का सुप्रभात उज्जैन। आज के अंक में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी उज्जैन की, समाचार पत्र, रोपवे परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस की। और इन खास विषयों के साथ कुछ सुरीले गीत भी सुनेंगे तो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे। श्रोताओं, सुबह की इस खूबसूरत शुरुआत को संगीत के रंग के साथ सजाते हैं। एक प्यारा सा गीत आपकी सुबह में ताजगी और मुस्कान जोड़ने के लिए तैयार है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला गीत फिल्म मुगले आजम से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन और सुबह की इस सुरीली यात्रा में आप जुड़े हैं हमारे साथ। श्रोताओं, महाकाल की नगरी उज्जैन आज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ विकास की नई तस्वीर भी तैयार कर रहा है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शहर में सड़क, पुल, घाट, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कई काम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में सिंहस्थ जुड़े कई कामों पर समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है। हाल ही में 491 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 17 नए विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें सड़क और पुल से जुड़े कई काम शामिल हैं। शिप्रा के दोनों किनारों पर घाटों के विकास की योजनाएं भी चल रही हैं। यानी उज्जैन आने वाले समय में अपनी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, विकास की इन खबरों के साथ अब वक्त है संगीत की एक और प्यारी सी सौगात का। कुछ पल के लिए अपनी सुबह को गीतों के हवाले करिए। सुनते हैं एक खूबसूरत गीत फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। श्रोताओं, अब वक्त है आज के समाचार पत्र में छपी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने का। सबसे पहली खबर है डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा के बीच स्पेशल ट्रेन। त्योहारों सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर नगर और रीवा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर से रात 9:20 पर चलेगी। वापसी में यह 10 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रीवा से रात 10:50 रवाना होगी। इससे यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। अब खबर तेजा दशमी पर 4 जगह मेले, ट्रैफिक डाइवर्ट। उज्जैन में 4 प्रमुख स्थानों पर मेले और धार्मिक आयोजन होंगे तेजा दशमी पर। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की है। आगर रोड, उंडासा और गिरोड सहित कई क्षेत्रों में यातायात बदले मार्ग से चलेगा। मुख्य मार्गों पर पुलिस और ट्रैफिक बल तैनात रहेगा। अब खबर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तपागच्छ उपाश्रय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज में तपागच्छ उपाश्रय के निर्माण का भूमि पूजन किया। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ संघ और उपाश्रय ट्रस्ट द्वारा यह मंदिर और उपाश्रय बनाया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार करीब 3000 वर्ग फीट भूमि पर निर्माण होगा। इससे जैन समाज और धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को सुविधा मिलेगी। अब खबर रेलवे स्टेशन पर 550 से ज्यादा लोगों ने की सफाई। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत महाश्रमदान कार्यक्रम हुआ। इसमें 550 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। 8 प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया, ड्रेनेज और ट्रैक किनारे सफाई की गई। कासोन गांव में 24 घंटे पानी की सप्लाई। उज्जैन के कासोन गांव में ग्रामीणों की पहल से अब 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। अब खबर सिंहस्थ से। सिंहस्थ के लिए 15,000 शिक्षक संभालेंगे व्यवस्थाएं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर करीब 15,000 शिक्षकों को व्यवस्थाओं से जोड़ने का फैसला किया गया है। ये शिक्षक भारत स्काउट गाइड और गाइड से जुड़े होंगे और उन्हें 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सिंहस्थ प्रबंधन और जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। 23 सितंबर को भोपाल में सुरक्षित और पॉलिथीन मुक्त सिंहस्थ पर चर्चा होगी। अगली खबर, 185 पुलिसकर्मियों ने सीखा तनाव प्रबंधन। उज्जैन पुलिस लाइन में तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें 185 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्हें रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और हार्टफुलनेस की प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया। बांके बिहारी मंदिर में भागवत सप्ताह शुरू। उज्जैन के अंकपात स्थित बांके बिहारी मंदिर में 7 दिवसीय भागवत सप्ताह शुरू किया गया है। कथा वाचन धर्माचार्य हरिनारायण शास्त्री जी कर रहे हैं। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 तक होगी। आयोजन का समापन 26 सितंबर को होगा। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। 23 सितंबर को होगा भगवान वामन देव का जन्मोत्सव। उज्जैन में 23 सितंबर को वामन द्वादशी पर भगवान वामन देव का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 12 अखलधाम खेड़ापति हनुमान मंदिर में होगा। अब खबर है, महानंदा नगर में आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। महानंदा नगर में सोमवार रात 9 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा। यह आयोजन स्वर्गीय कवि सूर्यकांत मेहता की स्मृति में किया जा रहा है। सम्मेलन में मुल्तानी, सतीश सागर, नरेंद्र खत्री और अन्य कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में हास और व्यंग सहित विभिन्न विषयों पर कविता सुनाई जाएगी। ये थी हमारे शहर उज्जैन की सकारात्मक खबरें। अब वक्त हो गया है एक और प्यारे से गाने का। सुनिए फिल्म अभिमान से ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। और अब आगे बढ़ते हैं आज के एक खास विषय की ओर, वो है रोपवे परियोजना। श्रोताओं, उज्जैन में श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। लगभग 1.76 किलोमीटर लंबे इस रोपवे की अनुमानित लागत 258.37 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें 3 स्टेशन और 13 टावर प्रस्तावित हैं। परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक सड़क मार्ग में लगने वाला करीब 35 से 30 मिनट का समय घटकर लगभग 7 मिनट हो सकता है। खास तौर पर त्योहारों और सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान यह वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है। परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। तो श्रोताओं, उज्जैन की इस नई परियोजना की जानकारी के बाद अब माहौल को फिर से संगीत से सजाते हैं। सुबह का सफर गीतों के बिना भला कैसे पूरा हो सकता है, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म शालीमार से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख।

आकाशवाणी उज्जैन एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। सुबह के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी प्रीति। तो दोस्तों और श्रोताओं, अब बात करते हैं शांति की। जी हाँ,

आज 21 सितंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को शांति, अहिंसा और सहयोग के संदेश के लिए समर्पित किया है। वर्ष 2026 की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी हर व्यक्ति हर जगह और हर दिन शांति में निवेश करे। शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग और एक दूसरे की गरिमा को समझने से भी जुड़ी है। और शांति की शुरुआत कहीं दूर से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन, घर, परिवार और समाज से हो सकती है। तो श्रोताओं, शांति और सुकून की इस खूबसूरत बात के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो आपके मन को भी थोड़ा सुकून देगा। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात उज्जैन। श्रोताओं, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन अल्जाइमर और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता बढ़ा

और इससे प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के प्रति समझ और संवेदना बढ़ाने का अवसर है। अब जानते हैं अल्जाइमर है क्या। अल्जाइमर भूलने की समस्या। भूलने की समस्या को उम्र का सामान्य हिस्सा मानकर हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को याददाश्त से जुड़ी लगातार परेशानी हो रही है तो समय पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। परिवार का सहयोग, धैर्य और अपनापन ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ में शुरुआती पहचान और निदान के महत्व पर भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो श्रोताओं, जानकारी के इस सिलसिले के बाद अब कुछ पल संगीत के नाम करते हैं। सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो आपकी सुबह को और भी खुशनुमा बना देगा, फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, उम्मीद है आज की ये सुबह आपके लिए जानकारी, संगीत और सकारात्मकता से भरी होगी। आप जहां भी हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं प्रीति लेती हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई जानकारी और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति

0: कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
2: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
1: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
3: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
1: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पंजी।
0: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
6: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
5: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
7: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
5: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को

0: साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिन्दुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Mr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. U.S. President Donald Trump in deciding mode on Iran war says very big things going to happen soon. U.S. issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men score emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a three-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema, along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
4: Dr. Jaishankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. UN Secretary General Antonio Guterres has called on world leaders to strengthen international cooperation as they gather in New York for the General Assembly. In a video message, Guterres said, "Come together for peace, dignity, justice and humanity. Only with international cooperation we can build a better world." Guterres, attending his final UN General Assembly as Secretary General, with his tenure set to conclude later this year. Ashish Abraham for Akashvani News.
2: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service. His journey is guided by the principle of Jan Seva Se Desh Seva and a continued commitment to public service. Inspired by this vision of service and good governance, the government is working towards the goal of a developed India by 2047. This commitment through inclusive development and social empowerment is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the PM Kisan scheme.
5: In Madhya Pradesh, a large number of farmers are benefiting from the PM Kisan scheme under the financial assistance of 6,000 rupees every year in three equal installments directly into their bank accounts. This support is useful for farmers to meet their needs for fertilizers, seeds and other farming activities. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously working keeping the needs of farmers in mind.
6: Hamari sarkar chote kisanon ki zaruraton unki avashyaktaon ko dhyan mein rakhte hue bhi काम कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है.
5: द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2019. सो फॉर मोर देन 4,47,000 करोड़ रुपीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स थ्रू 23 इंस्टॉलमेंट्स. मोर देन 9,49,00,000 फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम द 23rd इंस्टॉलमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीएम किसान स्कीम फ्रॉम 2026-27 टू 2030-31. Jiwada farmer Basant Patel said that farmers are happy with the decision to continue the scheme for 5 more years.
7: सरकारी योजना जो है
8: We are very happy that the

0: किसान सम्मान निधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 more years. द स्कीम इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. इट हेल्प अस इन बाइंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर एंड इज आल्सो यूजफुल ड्यूरिंग द स्विंग सीजन. वी थैंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट.
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद.
2: वुमेन फार्मर्स हैव आल्सो बेनिफिट.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुबह की शुरुआत मुस्कान के साथ हुई होगी। मैं हूँ आपकी अपनी आवाज़, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी आरजे प्रीति, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर, और कार्यक्रम है उज्जैनी आरजे। तो दोस्तों, आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज सोमवार है, यानी एक नए हफ्ते की शुरुआत। और आज बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री करीना कपूर खान का जन्मदिन भी है। तो आज की

सुबह के पहले हिस्से में हम बातें करेंगे करीना कपूर की, उनके फिल्मी सफर की और उनके यादगार किरदारों और गानों की, और दूसरे हिस्से में होगी मंडे रीसेट की बात, यानी नए हफ्तों को नई सोच और नई ऊर्जा के साथ कैसे शुरू करते हैं वे बात करेंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले हो जाए एक करीना कपूर की फिल्म का एक शानदार गीत फिल्म ऐतराज़ से, जिसे गाया है अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने।

आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आकाशवाणी उज्जैन एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं करीना कपूर के फिल्मी सफर की। दोस्तों, आज करीना कपूर का जन्मदिन है। 21 सितंबर 1980 को जन्मी करीना ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत से ही उनके अभिनय ने एक अलग आत्मविश्वास नजर आया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। कभी चुलबुला अंदाज, कभी गंभीर किरदार और कभी बिल्कुल अलग रूप। करीना ने हर बार दर्शकों को कुछ नए किरदार दिखाए हैं। करीना के फिल्मी सफर के एक और खूबसूरत गीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, फिल्म जब भी मैट से श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, करीना के कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। कभी खुशी कभी गम की पू हो या हो जब भी मैट की गीत, इन किरदारों ने अपनी अलग जगह बनाई है। खासकर गीत का वो बेफिक्र अंदाज, उसकी बातें, उसकी एनर्जी और जिंदगी को देखने का उसका नजरिया, आज भी उस किरदार को याद करके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो अब बारी है एक ऐसे गीत की जो मूड को थोड़ा और फ्रेश कर देगा। तो करीना कपूर की फिल्म 3 इडियट्स से सुनते हैं ये शानदार गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, करीना को सिर्फ एक तरह के किरदार में देखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रोमांटिक किरदार किए हैं, कॉमेडी की है, गंभीर भूमिकाएं निभाई हैं और ऐसे किरदार भी किए हैं जो उनके लिए बिल्कुल अलग थे। यानी हर फिल्म में एक नया अंदाज, एक नया कैरेक्टर, शायद यही वर्सेटिलिटी उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। करीना के इसी अलग और खूबसूरत अंदाज को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म बजरंगी भाईजान से आतिफ असलम की रूहानी आवाज में।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, जन्मदिन सिर्फ केक काटने का दिन नहीं होता है, ये पीछे मुड़कर देखने का भी एक मौका होता है। हमने क्या पाया है, क्या सीखा है और आगे क्या करना है, यह दिन हमें याद दिलाता है। करीना के फिल्मी सफर को देखें तो एक बात जरूर नजर आती है, समय के साथ खुद को बदलते रहना। जी हाँ, हमें समय के साथ खुद को बदलना चाहिए और शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी भी है। तो चलिए इस खूबसूरत मौके को एक और मधुर गीत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे, आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं करीना कपूर के जन्मदिन के बहाने हमने याद किया उनका फिल्मी सफ़र, उनके खास किरदार और वो अंदाज जिसे दर्शकों के बीच खास बनाया, और उनके शानदार फिल्मी गाने। तो हमारी तरफ से करीना कपूर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। वो यूं ही मुस्कुराती रहे अपने काम में, अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। और अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं आज के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां बात होगी हमारी जिंदगी और हमारे नए हफ्ते की। लेकिन उससे पहले करीना के नाम एक और प्यारा सा गीत बनता है फिल्म जब भी मैट से मीका सिंह की आवाज़ में।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सोमवार की। कुछ लोगों को सोमवार बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को सोमवार का नाम सुनते ही छुट्टी याद आने लगती है, यार फिर सोमवार आ गया। लेकिन आज सोमवार को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ नया काम शुरू होने का दिन नहीं, बल्कि नए हफ्ते का रीसेट बटन मानिए। पिछला हफ्ता जैसा भी गया हो, अब नया सप्ताह आपके सामने है। एक नई शुरुआत के साथ, नए हफ्ते की नई शुरुआत में थोड़ा सा संगीत का रंग मिल जाए तो कैसा होगा। सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गीत जो आपके मूड को और खुशनुमा बना देगा। फिल्म कुर्बान से सोनू निगम और श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की आवाज में।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे प्रीति के साथ। तो दोस्तों, अक्सर हम कह

कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है इसीलिए काम शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार मोटिवेशन का इंतजार करना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस शुरुआत करनी होती है और एक छोटा सा काम उठाइए और उसे पूरा कीजिए, फिर दूसरा कदम अपने आप आसान लगने लगता है। इसीलिए इस सोमवार मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत करिए। अब एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं फिल्म जब वी मेट से, जिसे गाया है शान और उस्ताद सुल्तान खान ने।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, आज एक छोटी सी बात सोचिए कि इस हफ्ते आपको क्या नया शुरू करना है। नहीं, ये तो सभी सोचते हैं, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या छोड़ना है। आपको छोड़ना है दूसरों से तुलना करना, हर बात पर खुद को दोष देना, या फिर हर काम को कल पर टालना। क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ नया जोड़ने का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पुराना छोड़ देना ही नया शुरू करने की शुरुआत होती है। तो इसी सोच के साथ एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं फिल्म ऐतराज़ से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैनी आरजे आरजे प्रीति के साथ। दोस्तों, पूरे हफ्ते की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा लक्ष्य चुनिए, ऐसा काम जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं और खुद से कहिए इस हफ्ते में इसे पूरा जरूर करूंगा। छोटी छोटी जीत ही आगे चलकर बड़ी सफलता का रास्ता बनाती है, इसीलिए शुरुआत छोटी रखिए लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अब इस छोटी सी पॉजिटिव सोच के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, आप सुनिए और अपने दिन को थोड़ा और खूबसूरत बनाइए। फिल्म जब भी बैठ का एक और खूबसूरत सॉन्ग उस्ताद राशिद खान की आवाज में।

तो श्रोताओं, आज की इस मुलाकात में हमने शुरुआत की करीना कपूर के जन्मदिन से, उनके फिल्मी सफर और उनके खूबसूरत गानों के साथ। फिर हमने बात की नए हफ्ते की, तो जाते जाते बस इतना याद रखिए कि सोमवार को जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम ही काफी है। कुछ अच्छा शुरू कीजिए, कुछ नेगेटिव को पीछे छोड़िए और खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। एंड दिस इज आशा प्रीति साइनिंग ऑफ। जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना दोस्तों? अगर नहीं आ रही है तो अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है सफ़र बॉलीवुड बीट्स का। मूड होगा मस्ती वाला, सफ़र होगा बॉलीवुड की खूबसूरत धुनों का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर। तो दोस्तों, कुछ गाने दिल को छूते हैं, कुछ चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आपके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म ढूंढे अखियां जबरिया जोड़ी से, जिसे आवाज़ दी है यासिर देसाई और अल्तमश फरीदी ने।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स सुरों का सफर। तो दोस्तों, अब जरा मूड को थोड़ा और म्यूजिकल करते हैं थोड़े अलग अंदाज में। फिल्म दे दे प्यार दे 2 से ये प्यारा सा गाना, जिसे गाया है करण औजला, AV सरा ने। तो आइए सुनते हैं।

0: FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं सुरों का सफर बॉलीवुड बीट्स और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। अब बारी है एक मस्ती भरे अंदाज की जिसमें नटखटपन, प्यार और खूब सारी मस्ती है। जी हाँ, फिल्म भारत से ये खूबसूरत गीत आकाशा सिंह, नीति मोहन और कमाल खान की आवाज में आइए सुनते हैं थोड़ा सा पंजाबी रंग और थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का।
1: हैंड

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। तो दोस्तों, कुछ धुनों में एक अलग ही ठहराव होता है जिन्हें सुनते ही लगता है कि ये पल बस यहीं ठहर जाए। अब सुनते हैं ऐसा ही एक खूबसूरत गीत फिल्म डेढ़ बीघा जमीन से, आवाज है स्टेबिन बेन की। तो श्रोताओं, कुछ पल सुकून के नाम करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ दोस्तों, आज जाने की जिद ना करो क्योंकि सफर अभी बाकी है बॉलीवुड बीट्स का। तो चलिए मूड को थोड़ा स्विच करते हैं, क्योंकि प्यार में सिर्फ मुस्कान नहीं होती, कुछ अधूरे एहसास और कुछ अनकही बातें भी होती हैं। फिल्म कबीर सिंह का ये बेहद खूबसूरत गाना बेख्याली, जिसे अपनी आवाज दी है सचे टंडन ने। तो आइए दिल की कुछ अनकही बातों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स आकाशवाणी उज्जैन पर और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। दोस्तों, अब फिर से मूड को थोड़ा सा हल्का और रोमांटिक करते हैं। शाहरुख खान और तापसी पन्नू की फिल्म डंकी से ये खूबसूरत गीत, आवाज है अरिजीत सिंह की।

तो बॉलीवुड बीट्स का सफर, आज का सुरीला सफर यहीं पूरा होता है। अलग गाने, अलग रंग और हर गीत के साथ एक अलग एहसास। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति। मुझे दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन और जुड़े रहिए बॉलीवुड बीट्स के साथ। नमस्कार।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी उज्जैन पर अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड बीट्स। आकाशवाणी उज्जैन पर सुबह 10 बजे हैं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, गणपति बप्पा मोरिया। उज्जैन की गलियों में इन दिनों गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है और आज का हमारा विषय भी है उज्जैन के गणपति पंडालों के दर्शन। जगह जगह सुंदर पंडाल, आकर्षक प्रतिमाएं और भक्ति से भरा माहौल नजर आ रहा है। तो आइए आज के उज्जैन दर्शन में हम आपको कराते हैं शहर के कुछ खास पंडालों के दर्शन। आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं उज्जैन दर्शन, आपकी रेडियो साथी प्रीति के साथ। तो चलिए इस गणेश उत्सव में सबसे पहले सुनते हैं गणेश वंदना।

इस सुंदर प्रस्तुति के साथ ही उज्जैन दर्शन में आपका फिर से स्वागत है। महाकाल वन के युवराज और चार धाम चौराहा के दर्शन करते हैं। श्रोताओं, हमारी पहली गणपति यात्रा पहुंचती है महाकाल चौराहे पर, जहां महाकाल वन के युवराज के नाम से प्रसिद्ध गणपति पंडाल में बप्पा की भव्य और आकर्षक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद बात करें चार धाम चौराहे की, तो यहाँ गुफा वाले पंडाल में महाकाल मंदिर की सुंदर थीम देखने को मिलती है। शिवलिंग, मंदिर का शिखर और बप्पा के दर्शन इस पंडाल को खास बनाते हैं। अब इस भक्ति के माहौल को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गणपति बप्पा का एक और सुंदर भवन

भक्ति के इस पावन वातावरण में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का उज्जैन दर्शन में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी उज्जैन पर। श्रोताओं, अब चलते हैं दूध तलाई हार फूल वाला चौराहा की ओर, जहां भद्रबल युवा संगठन द्वारा सुतली और टाटपट्टी से गणपति जी की अनोखी प्रतिमा तैयार की गई है। वहीं सिंधी कॉलोनी की गली नंबर 1 में उमापुत्र गणेश की पर्यावरण संरक्षण की थीम देखने को मिलती है। यहां बप्पा की प्यारी प्रतिमा और शिव स्वरूप गणेश जी भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको पता है, उज्जैन में कहीं पानी पूरी के बप्पा, कहीं खड़ी हल्दी से निर्मित बप्पा का निर्माण भी किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। आइए अब बप्पा के चरणों में एक और भक्ति का फूल अर्पित करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उज्जैन दर्शन। श्रोताओं, अब रुक करते हैं नानाखेड़ा का, जहां कॉस्मोस मॉल के सामने नानाखेड़ा के राजा का भव्य पंडाल और सिंहस्थ थीम देखने को मिलती है। इसके बाद निकास चौराहे पर उज्जैन या चिंतामणि और नगर गणेश के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ शाम के समय झूलते हुए गणेश जी की अनोखी झांकी भी लोगों को आकर्षित करती है। गणपति उत्सव की सुंदर यात्रा में अब सुनते हैं बप्पा का एक और मधुर भजन।

FM 102.5 MHz आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं उज्जैन दर्शन और हम हैं उज्जैन के गणपति पंडालों की यात्रा पर। अब शहर के दूसरे खूबसूरत गणपति पंडाल की ओर बढ़ते हैं। श्रोताओं, गणपति पंडालों की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। गुदड़ी चौराहे के गुदड़ी के राजा, मालीपुरे के युवराज और शहर के अलग अलग इलाकों में सजे छोटे बड़े गणपति पंडाल भी इन दिनों भक्ति और उत्साह से जगमगा रहे हैं। हर जगह बप्पा को सजाने का अपना एक अलग अंदाज है और श्रद्धालुओं में भी गणपति दर्शन को लेकर खूब उत्साह दिखाई दे रहा है। चिंतामन गणेश मंदिर हो अष्टविनायक मंदिर या वही फ्रीगंज का रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर और चक्र तीर्थ के पास दशभुजा गणेश मंदिर भी आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यानी पंडालों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक गणेश उत्सव में पूरा उज्जैन पप्पा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। तो श्रोताओं, आइए इस भक्तिमय वातावरण को और भी पावन करते हैं इस भजन के साथ।

श्रोताओं, आज के उज्जैन दर्शन में हमने जाना उज्जैन के कुछ खास गणपति पंडालों और प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के बारे में। उम्मीद है हमारी यह गणपति दर्शन की यात्रा आपको पसंद आई होगी। भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ आपकी रेडियो साथी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा।

सखियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का महिला सभा कार्यक्रम और मैं हूं आपकी सखी डॉक्टर अनुभा गुप्ता। आज 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। कभी सोचा है आपने, क्या शांति केवल देशों के बीच समझौते से आती है या इसकी शुरुआत हमारे अपने घर और हमारे अपने व्यवहार से होती है? आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर इसी सवाल पर चलिए बात करते हैं। सखियों, अक्सर हम सोचते हैं कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएगी, घर में कोई परेशानी नहीं होगी, जब जीवन मतभेद और तनाव मुक्त होगा, तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कई बार हमारे आसपास सब कुछ ठीक होता है, फिर भी मन अशांत होता है, क्योंकि शांति परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर की स्थिति से अधिक जुड़ी होती है, हमारे मन से जुड़ी होती है। जब मन में क्रोध कम होता है तो शब्दों में कठोरता भी कम हो जाती है। जब मन में धैर्य आता है तो रिश्तों में तनाव घटने लगता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो विवाद की जगह संवाद जन्म लेता है, और शायद यही छोटी छोटी शांति मिलकर परिवार में शांति लाती है। वास्तव में शांति का अर्थ है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना, सामने वाले की बात सुनने की क्षमता रखना। सखियों, कई बार घर में एक छोटी सी बात बड़े विवाद का जन्म ले लेती है, क्योंकि हम सुनने से पहले जवाब देने लगते हैं, समझने से पहले निर्णय कर लेते हैं, और कभी कभी सामने वाले की बात से अधिक महत्व अपने अहंकार को दे देते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाए तो एक छोटा सा प्रयोग जरूर करके देखें। सबसे पहले अपने मन में कहें, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ पल रुक जाना, गहरी सांस लेना और फिर सोच समझ कर बोलना। ये प्रयोग बड़े विवादों को जन्म लेने से रोक सकता है। सखियों, एक महिला घर परिवार बच्चे नौकरी रिश्ते और सामाजिक दायित्वों के बीच कई बार खुद को सबसे लास्ट में रखती है। हम सबकी चिंता करते हैं लेकिन खुद से पूछना भूल जाते हैं कि मैं खुद कैसी हूँ। मन की शांति के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकालना स्वार्थ नहीं है। कुछ देर प्रकृति के साथ रहना, योग या ध्यान करना, किसी अपने से अपने मन की बातें कहना, ये छोटे छोटे काम मन को शांत रखने में सहारा देती हैं। इसलिए सखियों, आज सिर्फ इतना याद रखिए, दुनिया को शांत करने से पहले अपने मन को शांत करें, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। आइए अपने मन की शांति और सुखी खुशी से भरने के लिए सुनते हैं फिल्म लुटेरा का एक खूबसूरत गाना।

0: सखियों, आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। अल्जाइमर या भूलने की बीमारी सिर्फ बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो न केवल मरीज बल्कि उनके पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करती है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना, समय पर सही इलाज और देखभाल कितनी जरूरी है, इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा जी। नमस्कार सर, आकाशवाणी उज्जैन के महिला सभा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर, आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि अल्जाइमर बीमारी क्या है और ये आम भूलने की बीमारी से कैसे अलग।
1: अल्जाइमर एक प्रकार से मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं उनके कार्य करने की क्षमता धीमी हो जाती है। उम्र के साथ अधिकतर पेशेंट्स में ये उनके अटेंडेंट देखते हैं या परिवारजन देखते हैं कि बहुत से लोगों का ये होता है कि हम चाबी भूल गए या फिर किसी व्यक्ति विशेष को हम नहीं पहचान पाए, तो ये मेनली अल्जाइमर की फीचर नहीं है। अल्जाइमर में ये है कि जो याददाश्त है वो समय के साथ लगातार गिरती जाती है और वो इस लेवल पर गिर जाती है जिससे दैनिक दिनचर्या करने में मरीज को दिक्कत आती है।
0: सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि दैनिक दिनचर्या में दिक्कत आती है, तो क्या अल्जाइमर और डिमेंशिया एक ही चीज है या इन दोनों में कोई अंतर है?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न मैम ने आपने किया। डिमेंशिया एक प्रकार से लक्षणों का एक समूह है। डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत तरह की भूलने की बीमारियां आती हैं। जैसे डिमेंशिया में अल्जाइमर्स डिमेंशिया, एक स्ट्रोक के बाद जो वस्कुलर डिमेंशिया तो वो होता है, लेवी बॉडी डिमेंशिया और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया मेन प्रकार हैं जो डिमेंशिया के अंतर्गत आते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक मेन प्रकार है जो डिमेंशिया के 60 से 70% पेशेंट में अपने को अल्जाइमर्स डायग्नोस रहती है।
0: तो सर, ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिससे ये पहचाना जा सके कि अल्जाइमर है किसी को?
1: शुरुआती लक्षणों में अगर मैम देखा जाए तो जो भी अपने घर में बुजुर्ग व्यक्ति है उनका कोई एक ही बात को बार बार रिपीट करना या हाल में हुई किसी महत्वपूर्ण घटना को भूल जाना या पैसे का लेन देन या बैंकिंग से रिलेटेड समस्या का कोई पूर्ण ना कर पाना या किचन में या घरेलू कामों में कार्य करने में दिक्कत होना। इवन अल्जाइमर्स के एडवांस कंडीशंस के केसेस में पेशेंट को डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है कि घर में बाथरूम और किचन कौन सा है।
0: जी सर। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे उम्र का तकाजा मानकर अनदेखा कर देते हैं, समय पर डॉक्टर से संपर्क करना क्यों जरूरी है?
1: ये माना कि अल्जाइमर्स का पूर्ण इलाज अभी संभव नहीं है, है ना, बट ये है कि अभी जो मेडिकेशन है उनके इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। कोई भी बीमारी अगर हमें शुरू में पता चलेगी हम उसका शुरू में इलाज और लक्षण देख सकते हैं। चीज ये है कि बहुत सी बीमारियों के फीचर्स अल्जाइमर से मिलते हैं। भूलने की बीमारी बहुत बार करेक्टेबल कंडीशंस के कारण भी होती है, जैसे विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण, डायबिटीज के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। तो उन ट्रीटेबल कंडीशंस को रूल आउट करने के बाद और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग पे हमें पता चलता है कि अल्जाइमर से। तो अगर हम अल्जाइमर्स को बहुत शुरू में पकड़ लेंगे तो पेशेंट की लाइफ, जो दैनिक दिनचर्या जो अफेक्ट होती है, उसको हम बहुत समय तक बचा सकते हैं।
0: सर, अल्जाइमर के मरीज की देखभाल करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी दीजिए।
1: अल्जाइमर्स के मरीजों का ध्यान रखते समय बस दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो धैर्य और सम्मान। धैर्य जो केयर गिवर या परिवारजन है जो उनका केयर कर रहे हैं उनका, और सम्मान उस मरीज के प्रति, क्योंकि बहुत से अल्जाइमर्स के पेशेंट कई चीजों को बार बार रिपीट करते हैं और बहुत अगर वो किसी चीज को भूल रहे हैं या कोई चीज वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उनको हेल्प करनी है। उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या अपने लेवल पे स्वयं बिना किसी सपोर्ट के करने देना चाहिए। जितना सपोर्ट उनको मिनिमम रिक्वायर्ड उतना करना है और उन पे कभी भी क्रोध या गुस्सा नहीं करना है।
0: सर, अक्सर देखा जाता है कि मरीज की देखभाल करते करते देखभाल करने वाले जो परिवार के लोग होते हैं वो खुद ही मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, इस तनाव से बचने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे?
1: तो अधिकतर ये होता है कि घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके केयर का भार अंततः घर में रहने वाली गृहिणी या महिला पर भी आता है, तो हमें ये जो केयर है वो किसी एक व्यक्ति पर न छोड़ते हुए परिवार के जितने सदस्य हैं उनको अल्जाइमर के पेशेंट को एक जिम्मेदारी लेते हुए उस जिम्मेदारी को बराबर बांटना है, क्योंकि अगर एक ही पेशेंट उनकी लगातार केयर करेगा तो उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या उनको घेर सकती है। अगर ऐसा लगता है कि कोई भी केयर गिवर है या अल्जाइमर के पेशेंट पे कोई केयर गिवर नहीं है, तो जितनी अल्जाइमर के पेशेंट का ध्यान रखना है उतना ही उनके केयर गिवर का ध्यान रखना है। और अगर नींद की कमी या चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं अपने को आती हैं तो अपने को डॉक्टर से संपर्क करना है।
0: सर, महिलाओं में मोनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण कई बार भूलने की समस्या, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी शिकायतें देखने को मिलती है। इसे सामान्य मोनोपॉज बदलाव और अल्जाइमर जैसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों से किस तरह अलग से पहचाना जा सकता है, आप हमारी महिला श्रोताओं को बताइए कि किन संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: अधिकतर मेनोपॉज के बाद देखा जाता है तो महिलाओं का यह कहना होता है कि हमें चीजें याद नहीं रहती, या हम बोलते तो हम कोई नया शब्द नहीं ढूंढ पाते, या तो हमें थोड़ा समय लग जाता है चीजों को समझने में। तो ये हार्मोनल चेंज के कारण एक ब्रेन फॉग होता है, उसका इंडिकेशन है। ब्रेन फॉग का ये है कि अगर मेनोपॉज के कारण कोई समस्या है तो वो क्षणिक रहेगी और कुछ समय बाद वो इम्प्रूव हो जाएगी जब तक वो हार्मोनल फेज बैलेंस हो जाता है। अल्जाइमर के केस में ऐसा कोई स्ट्रेसिक या कोई फेज नहीं आता। अल्जाइमर से रिलेटेड जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जाती है।
0: सर, क्या अल्जाइमर का पूर्ण इलाज संभव है, या दवाई और थेरेपी के जरिए केवल इसके लक्षणों को हम नियंत्रित कर सकते हैं?
1: अगर सच पूछा जाए तो अल्जाइमर्स का अभी पूर्ण इलाज संभव नहीं है, है ना। अल्जाइमर्स होता क्यों? अल्जाइमर्स हमारे ब्रेन में कोशिकाओं में डिपोजिशन, कुछ पदार्थों के डिपोजिशन के कारण, उनके काम न करने के कारण होता है। तो अल्जाइमर्स के लिए अभी जो मेडिकेशन अवेलेबल हैं उनसे अगर हम इनिशियल स्टेज में अल्जाइमर्स का ट्रीट करें तो उसकी सीवियर कंडीशन तक पहुंचने का समय को हम खींच सकते हैं, और पेशेंट की जो डिपेंडेंसी है अटेंडेंट पे वो थोड़ा लेट आए और पेशेंट एक अपनी लाइफ थोड़ा अच्छे समय तक जी पाए, उसके लिए हमें अभी मेडिकेशन अल्जाइमर्स के अवेलेबल हैं। मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है। हो सकता है निकट भविष्य में हमें अल्जाइमर्स का शुरुआती इंडिकेशन पर पकड़ने के बाद पूर्णतः इलाज मिल जाए।
0: आज की जीवन शैली को देखते हुए मस्तिष्क को स्वस्थ रखने और आगे चलकर ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी डाइट, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में क्या क्या बदलाव करने चाहिए, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अधिक हमें नॉर्मल एक व्यायाम करना है, रोज 20 से 30 मिनट तक हमें तेज चलना है। फल, नट्स, अखरोट वगैरह का सेवन हमें करते रहना है। प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन करना है और स्ट्रेस फ्री जीवन हमें जीना है, और नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की अप्रोप्रिएट नींद हमें लेना है।
0: सर, अंत में आप विश्व अल्जाइमर दिवस पर आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: विश्व अल्जाइमर दिवस की इस बार की थीम ही है कि आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। कि डिमेंशिया के बारे में पूछें और अल्जाइमर के बारे में पूछें। तो आपके अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं अल्जाइमर और डिमेंशिया के लिए तो वो आप पूछ सकते हैं, और उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जानकारी हमें अल्जाइमर की रहेगी उतना ही हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। क्योंकि हम सभी के घरों में जो हमारे माता पिता हैं वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं और उनके क्षणिक भूलने की समस्याएं होती हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे पे आते हैं, बहुत से अटेंडेंट मेरे पे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को भूलने की समस्या हो गई है, और वो इतने एंशियस होते हैं कि उसका प्रेशर उनके पेरेंट्स पे आ जाता है और वो भी अपने आप को मान लेते हैं कि हमें अल्जाइमर्स है। तो जब भी आपको ऐसी कोई संभावना लगे निकटतम न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अल्जाइमर्स को डायग्नोस करने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है और हमें बहुत पेशेंस के साथ उनको बात करनी है। अगर हम उनको पहले से अल्जाइमर्स की डायग्नोसिस अपने स्वतः के तौर पर दे देंगे कि आपको भूलने की समस्या है अल्जाइमर्स, तो उनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण ये बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हर भूलने की समस्या को अल्जाइमर समझने की गलती ना करें। अगर अल्जाइमर से बताए गए मेरे लक्षणों में अगर आपको कोई लगता है तो निकटतम न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनकी जांच कराएं।
0: डॉक्टर साहब, आपने अल्जाइमर जैसी बीमारी पर बहुत ही सरल और व्यवहारिक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हमें उम्मीद है कि आज की ये खास बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि उज्जैन का होते हुए उज्जैन के लोगों को मैं अल्जाइमर्स के बारे में थोड़ा बता पाया। इस जानकारी से मुझे आशा है कि जो एक भ्रम या भ्रांति सी अल्जाइमर्स के बारे में है वो नहीं होगी, और अपने आसपास अगर कोई पेशेंट आपको या अपने आस पड़ोस में कोई दादाजी दादी जी या घर में कोई वृद्धजन ऐसे लगते हैं तो उनको अपन समय पे दिखा के उनका इलाज कर सकते।
2: सखियों, अभी आपने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा से विश्व अल्जाइमर डे पर विशेष चर्चा सुनी। कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं गाना।

अब बात करते हैं आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस पर। इसको मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है जीवन की सभी सकारात्मक चीजों, ईश्वर, प्रकृति और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब ये हमारे दिल से निकलता है तो रिश्ते मिठास से भर जाते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीज़ों का हिसाब लगाने में लगे होते हैं जो हमारे पास नहीं है। शिकायतें करना आसान होता है, मौसम खराब है, काम बहुत है, समय नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने रुककर उन चीज़ों की गिनती की है जो भगवान ने, प्रकृति ने और हमारे अपनों ने हमें दी है। जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो हम केवल एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि उनके प्रयास और उनके प्रेम का सम्मान करते हैं। हमें खुद के प्रति और अपने आसपास के उन लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहिए जो हमारी जिंदगी को आसान बना देते हैं। कृतज्ञता हमारे भीतर के अहंकार और शिकायत की भावना को खत्म कर देती है और दिल में सकारात्मकता भर देती है। तो चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। आज हम बिना किसी झिझक के दिल खोलकर अपनों का शुक्रिया अदा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृतज्ञता दिवस पर हमारी ये छोटी सी कोशिश यही सिखाती है कि जीवन में मिलने वाले हर छोटे बड़े प्यार और साथ को दिल से महसूस करें और उन्हें धन्यवाद कहें। इसी खूबसूरत एहसास और उम्मीद को बयां करता हुआ आइए सुनते हैं बेहद प्यारा गाना।

सखियों, इन दिनों हम सभी के घर में गणेश जी विराजमान हैं। गणेश उत्सव की धूम पूरे शहर में मची है। स्थान स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है और हमारे घरों में भी गणेश जी के भोग के लिए कुछ न कुछ प्रसाद हम बना ही लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी को मोदक बहुत ही पसंद है। आज मैं आपसे ड्राई फ्रूट मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको एक कप कटे हुए खजूर, बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, साथ ही एक चम्मच घी चाहिए। अब पैन में एक चम्मच घी डालकर सारे कटे मेवे 2 मिनट भूनकर निकाल लें। उसी पैन में खजूर को 2 से 3 मिनट मध्य आंच पर पकाएं ताकि वह नरम और मेश हो जाए। अब भुने हुए मेवे और खजूर को आपस में अच्छे से मिला लें और मोदक के सांचे में डालकर मोदक बना लें। तो लीजिए, गणेश जी के पसंदीदा मोदक हो गए ना झटपट तैयार। तो सखियों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली महिला सभा में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सखियों का विशेष कार्यक्रम महिला सभा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में अगले कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारती मुंबई से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: ऋषि पाठक की आवाज में यह पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे। हनुमान अंश फिल्म से ऋषि पाठक का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

प्यार का पहला खत। इस एल्बम से आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये कलाम, जिसे लिखा राजेश रेड्डी ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कासिम कुरैशी का कलाम भूपिंदर सिंह की आवाज में, और इसे हमने लिया है नशीमन एल्बम से।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: इंतजारे सबा इस एल्बम से पंकज उदास की आवाज में आप सुन रहे थे जमीर काजमी का कलाम। अली गनी ने इसे संगीत से सजाया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

रूपमा राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरफरोश फिल्म से ये गीत, इसरत अंसारी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मोहब्बत कर ले रे।
1: मोहब्बत कर ले, इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। शामक डावर और साथियों की आवाज, तरुणानंद, नितिन रायकवाड़ के बोल और राम संपत का संगीत।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा फैज अनवर ने, संदेश शांडिल्य का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

गणेश हेगड़े की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। मनोज संतोषी और विजय शर्मा ने इसे, माफ कीजिएगा, विकी शर्मा ने इसे लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल, इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है वीके मेहता ने, कमाल खान का संगीत।

सुनो तो दीवाना दिल इस एल्बम से आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में गीत, वीके मेहता के बोल, कमाल खान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कैलाश खेर की आवाज में सुनिए अगला गीत जिसे उन्होंने लिखा है। कैलाश खेर, परेश और नरेश ने संगीतबद्ध किया है। एल्बम है कैलाशा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकुवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीर ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

गीत गाता चल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ से रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। आज है फिल्मकार ताराचंद बड़जात्य की पुण्यतिथि, तो उनकी फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।

नदिया के पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जसपाल सिंह हिमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपने सुना दोस्ती फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बड़जात्या को याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत उपहार फिल्म के इस गीत में।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन के बोल। उन्हीं के संगीत से सजा था ये गीत सौदागर फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं अखियों के झरोखों से। इस फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं संगीत और बोल रविंद्र जैन का।

0: आंखों के झरोखों से इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज फिल्मकार ताराचंद बरजात्या की फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं।

चित्चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता की आवाजों में, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं पिया का घर फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, येसुदास हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों के बाद।
1: जरा नजरों से

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, जिसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में। तो आज की इबारत या टेक्स्ट कौन सी है ये आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने लिखा है, आज निगाहें मिली और इशारे हुए, दिल ने कहा वो हमारे हुए, फेरी नजर उसने और टूटा ये दिल, क्यों उस बेवफा के नजारे हुए। एक नन्हा सा सपना आंखों में खिला, पलक झपकते ही हुआ लापता, ढूंढती हैं अखियां पुकारती है नजर, आंखों आंखों में ही गुम वो सारे हुए। नजरों के किस्से निगाहों की बातें, गली गली ऐसे इशारे हुए, नजरें उठी भी नजरें झुकी भी, नयन तेरे कैसे बेचारे हुए। कभी भरे आंसू कभी प्यार छलका, तो कभी नैना ये सुलगते से अंगारे हुए। तो इनमें से शब्द आपको चूज करना है, चुनना है और बताना है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत सुनवाए जाएंगे। और आपने तो शुरुआत कर ही दी है कमेंट्स के जरिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत आंखें नैन निगाहें इन शब्दों से के गीतों से सजाई गई है। किसी से प्यार में आंखें ही अक्सर वो सब कुछ बयां कर देती है जो जुबान से कहना मुमकिन होता है, मुमकिन नहीं होता है, चाहे वो मिलन की खुशी हो या जुदाई का दर्द। आंखें हमारी गहरी भावनाओं की आईना होती हैं, क्योंकि इन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। किसी से जुदाई के वक्त सबसे पहले भारी होती हैं, क्योंकि कभी कभी नैनों से आंसू नहीं गिरते तो भी नैनों का सूनापन और दिल के खालीपन को ये आसानी से जाहिर कर देती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी, और भी हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी हैं, वो आपको बताएंगे ही। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको किन की आंखों का इशारा याद है, और आपको आंखों की भाषा कितनी समझ आती है, और सबसे ज्यादा नजरों से बातें कब की जाती हैं। तो ये बातें आप बताइए, और कोई अगर किस्सा हो जिसमें आपने कुछ इशारा किया हो किसी को और उसने समझ लिया हो कुछ गलत, तो ऐसे मजाहिया किस्से भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइए।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गद्यांश में नयन नयन निगाहें पलक आंखों की बात होंगी। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की भारत एक सुंदर कविता के रूप में जो प्रेम के शुरुआती आकर्षण, उसकी मासूमियत और फिर अचानक मिले धोखे या जुदाई के दर्द का बहुत ही मार्मिक और सजीव चित्रण करती है। इसमें आंखों और नजरों के माध्यम से बयां होने वाले एहसासों की गहराई को बखूबी उकेरा गया है। प्रेम की कोमलता और उसकी बिछोह की कसक का बहुत ही संतुलित और काव्यात्मक मेल देखने मिलता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि कभी पलक झपकते ही कोई ख्वाब सा सामने से गुजर जाता है और आंखें उसे पकड़ने को फिर उसी दिशा में ठहर जाती है। निगाहें भी कितनी अजीब जुबान होती हैं, फिर बिना लफ्जों के जाने कितनी दास्तां कह जाती है। कभी नैनों की झलक से प्रेम का इजहार हो जाता है तो कभी पलकें झुकाकर दिल अपनी राज छिपा लेता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता न मन

रहा होता है। कुदरत सबको नवाजती है प्यार, प्रेम और खुशी से। सब्र जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी का कहना है कि आंखों की भी अपनी एक जुबान होती है, बिना लफ्जों के कह देने की। कभी एक नजर में कोई अपना सा लगने लगता है, कभी वही नजर लौट जाए तो दिल में एक खाली सी जगह रह जाती है। आंखों में खिले छोटे से ख्वाब भी अजीब होते हैं, पलक झपकते ही बिखर जाते हैं, मगर उनकी किरचें देर तक यादों में चमकती रहती है। इश्क भी आंखों का ही कोई पुराना किस्सा है, जो कहा कम जाता है, महसूस ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम उन्हें अच्छे लगते हैं और वो देश देश भर में सारी जगह जब ये कार्यक्रम जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक और साथी का कहना है कि आज बातें नजरों की आंखों की है, पर यदि आंखें ही नम हो या आंसुओं से भरी हो तो कोई कैसे लिखे क्या लिखे। किसी ने आंखों में आंसू दिए, हम चाहते तो बदले में उसकी आंखें भी नम कर सकते थे, मगर दिल ने कहा छोड़ दो। हर दर्द का जवाब दर्द से देना जरूरी नहीं होता। हमने उसे माफ किया, कोई सजा नहीं दी, बस दिल से एक दुआ निकली, तुम जहां भी रहो खुश रहो और कभी किसी के दिल को इतना मत दुखाना जितना मेरा दुखा है। दिल में दर्द हो फिर भी किसी के लिए नफरत ना हो। भाई हम तो यही कहेंगे कि आपकी आंखों में जो आंसू आए हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। और ये गीत सुनिए, शायद इस गीत से आपको कुछ आराम हो। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

यहूदी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि कुछ साथी कह रहे हैं कि अनसुना सा गीत है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि आज सोच रहा था कमेंट है ना करूं, फिर दिल ने नहीं माना क्योंकि आप हम जैसों के कमेंट की ओर ध्यान ही नहीं देते। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कमेंट सामने आते हैं हम उन्हें जरूर पढ़ते हैं। और चलिए कोई बात नहीं, गुस्से वाला ही कमेंट सही, नाराजगी वाला कमेंट ही सही शामिल तो हुआ। हमारे एक साथी कह रहे कि नजरें मिली तो लगा जिंदगी मिल गई, धड़कनों को जैसे एक नई साज मिल गई, पर वो मुस्कुराहट महज एक छलावा थी, वादों की कश्ती बीच भंवर में खो गई, आस जगी थी सूने दिल में जो पल भर में आंसुओं के धार में बह गई, खोए हुए उस साए को तलाशती ये राहें जहां कभी चाहतों के हंसी सिलसिले हुए, निगाहों के खेल भी बड़े अजीब होते हैं, कभी पास लाते हैं तो कभी दूर कर जाते हैं, वो जो पलकों को उठाकर मुस्कुराना तेरा, अब वही यादें सीने में तीर सी चुभती हैं, कभी इन आंखों में वफा का नूर था, आज वही नैना तन्हाई के साए में अंगारे हुए। भाई क्या बात है। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि शब्दों से बनने वाले गीत यदि लिखे जाएं तो पहले तो शब्द ही इतने हैं कि उन्हें गिनने और गिनकर लिखने में कम से कम आधे घंटे में पूरे हो जाएं तो गनीमत है, फिर उन पर गीतों के चयन प्रक्रिया में तो यदि 4 से 6 घंटे लग जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाई पूरे के पूरे फिल्मों के गीतों को खंगालते हुए चयन करना कोई तो 1-2 घंटे का काम है नहीं, फिर कार्यक्रम तो केवल 1 घंटे का है। फिर भी भाई कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद के गीत लिख सकते हैं और यही तो इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि आपकी पसंद के गीत और हमारे गीत कितने मिलते हैं यही तो पता चलेगा। और शब्द हो सकता है कि आप कोई नए शब्द चुन लें उस इबारत में से जो हमें भी ना नजर आए हों, और ये बातें ही इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाती है। तो अपनी जो प्रक्रिया है आप जारी रखें, हमारी प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखें। और हमारी एक और साथी कहती हैं कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का, प्यार या प्रेम का या जीवन का, कोई भी गहरा भाव वो अक्सर शब्दों का मोहताज नहीं होता और आंखों से ही बयां हो जाता है। आंखें दिल का आईना होती हैं, जब जुबान खामोश होती है तब भी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। शब्दों में झूठ छुपाया जा सकता है लेकिन आंखों की चमक या उसकी नमी कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेम का असली स्वाद और सुकून किसी की सिर्फ एक नजर से महसूस किया जा सकता है, बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को देखकर पूरी बात समझ लेना सबसे खूबसूरत रिश्ता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि हमको हमारी गणित की अध्यापिका का खतरनाक तरीके से आंखें निकालकर देखने का अनुभव आज तक याद है। उनकी आंखों का एक इशारा सारी क्लास को पल भर में ही खामोश करवा देता था। भाई ऐसे ही आपको याद आ रही है किनकी आंखों का इशारा याद आ रहा है, क्या कोई बेहतरीन अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ खूबसूरत किस्सा हो सकता है, कुछ ये डराने वाला किस्सा हो सकता है। अक्सर तो जब घर में मेहमान आते हैं तो भी आंखों का इशारा बहुत किया जाता है, कुछ ऐसा अगर आपको याद आए तो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल याद करके बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का वो गीत है और लिखा किसने है।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों ने दिया और हमारे साथी अलग अलग बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे साथी मोहम्मद रफी की आवाज पहचानना तो बिल्कुल पहचान ही सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुबा से तो झूठ पकड़ा नहीं जाता मगर आंखें सब बयां कर देती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जो बात जुबा नहीं बोल पाती आंखों से पता चलता है। कई बच्चे तो आंखों में ही डरते हैं, इन्हीं आंखों में हम कई सपने सजाते हैं लेकिन आंख खुली और सपना जैसे आंखों से ओझल हो जाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई बता सकता है कि मेरा कमेंट शामिल क्यों नहीं होता, शायद किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। तो शायद जवाब भी आपको साथ ही साथ आपने दिया है। हालांकि कमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी कुछ कमेंट्स उनमें गुम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने आपकी बात पढ़ी हो तो हम ज़रूर उसे शामिल कर लेते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जब आंखों में आंसू हो और दिल जानता हो कि इन आंसुओं की वजह कौन है, फिर भी दिल उसी के लिए सजा नहीं दुआ मांगे, तो समझिए वहां नफरत से कहीं ज़्यादा दोस्ती और इंसानियत बची हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नयन निगाहें आंख लोचन चक्षु पर बातें होंगी। आंखों का एक गुणधर्म है, वो अधिक खुशी और गम दोनों पर छलक जाती हैं। वाह क्या बात आपने कही। और एक खेल हुआ करता था जो बचपन में हम खेला करते थे, जिसमें एक दूसरे से नजरें मिलाकर रखे रहना होता था बहुत लंबे समय तक, और जो पहले पलकें झपकाता था वो हार जाता था। तो क्या आपने वो खेल खेला है और क्या आप उसमें जीता करते थे या नहीं, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम इस गाने को जब सुनते हैं, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, तो अजीब सी उधेड़बुन में होता हूं कि नजरों का निशाना भी कहीं चूक जाता है। ये तो ऐसा कमाल का हथियार है कि बिना किसी रसायन बिना टेक्नोलॉजी का ऐसा बम है कि जिस पर गिरता है हाई करके बस रह जाता है। आमना सामना हुआ कि दुश्मन चारों खाने चित, वो दाएं बाएं भाग भी नहीं सकता, खुद ही शिकार के पास पहुंच जाता है और समर्पित भाव से निवेदन करने लगता है कि दिल जिगर के साथ मेरी सारी संपत्ति सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बख्श दो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मजे के तौर पर लिख दी है, लेकिन कभी कभी तो निशाना चूक भी सकता है। तो क्या कभी निशाना चूका आपका, ये हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बड़ी मजाहिया बात लिखी कि आंखों ही आंखों में मोबाइल बस गया, देखते ही देखते चश्मा लग गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, हमें सारी बातें आप बताइए। और कार्यक्रम ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बातें आप हमें बता सकते हैं जो कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती हैं। और कार्यक्रम में आप शामिल हो रहा है एक ऐसा गीत जिसके बारे में आप हमें बताइए कि किस फिल्म का गीत है।
1: झुके जो तेरे नैना

कंगन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाजों में। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब दो दिल एक दूसरे की धड़कन सुनने को बेताब हों तो दिल की बातें बताए बिना नहीं रह सकते, पर परिस्थिति बस कहा भी ना जाए तब भी आंखें एक दूसरे से बात करती हैं, कोई शोर नहीं करती पर चोर जरूर करती हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो किसी के सामने कुछ भी बोल देता था, और जब मैं आंख से इशारा करती कि चुप रहे तो सबके सामने बोलता था कि मम्मा आंख से इशारा करती हैं, तो सब हंसा करते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अब बेनी बुनना सीख रही हूँ, 35 टाके की नातू के लिए इधर उधर ध्यान गया तो कांटा चूक गया। ऐसा होता है, मतलब उसमें नजर ध्यान रखना जरूरी है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के सभी पति अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नाचते हैं, यही सत्य है। भाई कितना सत्य है तो सब पति पत्नी ही बता सकते हैं। वही हमारे एक और साथी का कहना है, वो आंखों के बारे में कह रहे हैं कि निगाहों से शुरू हुआ जो सफर वो इशारों में खो गया, कभी हंसाया इन आंखों ने तो कभी अशकों में भिगो दिया, एक नन्हा सा सपना जो सजाया था पलकों पर, न जाने वो पलक झपकते ही कहां गुम हो गया। तो हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि नजर भी अजीब शह है, दो की चार हो जाए तो प्यार कहलाती है, झुकी झुकी नजर हो तो प्यार का इजहार होती है, कुछ लोग बॉस की नजर में चढ़ने के लिए दिन को रात और रात को दिन कहने से नहीं चूकते, दूसरी ओर मेहनती आदमी देर से ही सही मगर नजर जरूर आता है, उधार लेने वाला नजरें चुराता है और वसूलने वाला उसे खा जाने वाली नजर से देखता है। भाई क्या बातें कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब किसी से नजर मिलती है तो अक्सर बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह जाती है, आंखों में खिले छोटे से सपने, नजरों के इशारे और दिल में उठती प्यार की नजरें, प्यार की लहरें मन को एक

अनोखी खुशी देती है। कभी नजरें उठती हैं तो प्रेम झलकता है, कभी झुकती हैं तो शर्म और अपनापन, और कभी आंसुओं में छिपा दर्द सामने आ जाता है। यही नजरों और नैनों के अनकही किस्से प्रेम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वैसे नजरों के या कहें आंखों के रंगों के ऊपर भी कहा जाता है अलग अलग भावों के लिए कि जब कोई गुस्सा होता है तो आंखें लाल कर देता है, और इस तरह की बातें भी होती हैं। क्या आप भी ऐसे कुछ किस्से या बातें जानते हैं या कुछ कहावतें भी आप हमें बता सकते हैं, और साथ ही बता सकते हैं कि किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहने कि मैं तो सोचती हूँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आंखों से ही बातें हों तो दुनिया एक शांतिमय जगह हो जाए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुके तो तेरे नैना गीत बहुत दिनों के बाद सुना, उन्हें अच्छा लगा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आंखें नेमत हैं और शायद सबसे कीमती चीज जो हमारी है जो हैं वो हमारी दो आंखें हैं। ये आंखें हैं जो हर भाषा को पढ़ने का हुनर रखती हैं। जीवन के सबसे कठिन पलों में अपने सबसे करीबी साथी को आंखों ही आंखों में सहारा देकर देखना। जीवन में जिसने आंखों की मूक भाषा पढ़ ली, समझ लो उसने आधी दुनिया का सच समझ लिया। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जहां शब्द अधूरे रह जाते हैं, नैनों के इशारे काफी होते हैं। हृदय की अनकही भावना बिना बोले नजर ही कह देती है। आंखों की एक हल्की सी हरकत, पलकों का उठना, शर्मा कर झुक जाना, यही प्रेम की पहली और सच्ची लिपि है, जिन्हें बिना छुए सिर्फ रूह महसूस करती है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि आंखें माँ की ममता भी माँ की ममता भरी नजर के सामने सब फेल हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में पिता के

आंखों की भूमिका ही प्रभाव डालती है। बच्चों और अन्य पर अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आंख ही होती है। आंखों के इशारे से ही प्यार झलकता है, सहम भी जाता है और दुखी भी होता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे कई बार स्कूल कॉलेज में कन्फ्यूजन होता था कि स्कूल की टीचर मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं या पीछे वाले से। ये शायद टीचर जिस तरह से देखा करती होंगी उससे इन्हें ऐसा लगता होगा। हमारे एक और साथी ने एक बड़ा ही मजेदार किस्सा लिखा है कि सालों पहले मैं मेरे पति का हाथ बटाने शॉप पे जाया करती थी। एक बार एक सेल्समैन आया जिनसे मेरे पति मिलना नहीं चाहते थे। उसने मेरे पति का नाम लेकर पूछा कि भाई साहब नहीं है, कब मिलेंगे। मैंने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे मना किया और मैंने सेल्समैन से कहा कि भाई साहब 2 दिन बाद मिलेंगे। 8 दिन बाद वो ही सेल्समैन मुझे मिला तो हंसकर पूछने लगा कि आप इतनी जल्दी कैसे भाई साहब के इशारे को पहचान गई। यानी कि उन्होंने देख तो लिया था लेकिन इस बात का मान रखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी हमें नजरों की भाषा समझ नहीं आती पर नजर लग जाती है, खासकर छोटे बच्चों को, नई ब्याहता बेटी बहू को ऐसा लोग कहते हैं, होता भी है। इसलिए हर माँ अपने बच्चों को काजल का टीका लगाती है नजर से बचाने के लिए। भाई ये भी माँ की ममता का ही एक रूप है। लेकिन कभी कभी जब माँ गुस्से में आती हैं तो उनकी नजरें देखकर बच्चे का जो हाल होता है वो तो वही समझ सकता है। क्या कैसा ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ हमें बताइए। और हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जिसमें आपको पहचानना है कि किस फिल्म का गीत है।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया और हमारे साथियों ने कहा कि नई फिल्म के गीत हैं, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें कभी प्यार छलकाती है, कभी आंसुओं से भर जाती हैं, तो कभी दर्द और बेबसी में सुलगते से अंगारे बन जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब दिल टूटता है तो सबसे ज्यादा सजा आंखें ही भुगतती हैं, जो हर एहसास को चुपचाप सहती हैं। निसंदेह ये कविता केवल आंखों के मेल मिलाप की नहीं, बल्कि इस टूटे हुए विश्वास की कहानी है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। वही मालिक साथी का कहना है, कभी जो निगाहें दिल का हाल मुस्कुराकर सुनाती थीं, आज वो पलकें आंसुओं का बोझ छुपाने में थक जाती हैं। वो नैनों की भाषा

अब बस खामोशी से रोती है, जब मोहब्बत अधूरी हो तो रातें आंखों में ही कटती हैं। और एक और साथी का कहना है कि कभी कभी दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है, और जब निगाहें मिलती हैं तो जैसे अनकहे इशारों में ही मोहब्बत की कहानी लिख दी जाती है। आंखों में सजते हैं छोटे छोटे सपने, फिर इंतजार करती पलकें, और कभी नैनों में प्यार छलकता है, कभी यही नजरें झुककर शर्माती हैं तो कभी दूर होकर यादों में बस जाती हैं। इनमें कभी विरह के आंसू उतर जाते हैं और कभी वही आंखें शिकायत बनकर सवाल करने लगती हैं। वही तो आंखों की खूबसूरत भाषा है जिसे दिल पढ़ लेता है, अगर उसे सुरों में ढाल दें तो एक सुरीला मधुर गीत बन जाता है। तो ये तो बात हो गई, एक सुरीला मधुर गीत आपका इंतजार भी कर रहा है इस कार्यक्रम में, और आपकी बातें तो आप भेज ही रही हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप नजरों से या इशारों से कोई बात किसी को कहें लेकिन वो व्यक्ति आपकी बातें समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, तो क्या करते हैं आप ऐसे मामले में? और हमें पूरा यकीन है कि जो गीत अब आपको सुनवा रहे हैं आपको पता होगा किस फिल्म का ये गीत है, और नायक का नाम बताएंगे तो और भी अच्छा होगा।

मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले।

शाहरुख खान इसमें नायक हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, और अगर खुशी होती है तो आंखों में ही चमक पहले होती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि इस समय मेरी नजरें विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के ऑफिशियल फेसबुक के पेज पर सुरीला सफर की पोस्ट पर है और कान रेडियो की तरफ, जो सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उसका जवाब देने के लिए इस तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसा कहना होगा। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि जब देखूं गुलाबी लाल पीली अंखियां, ये बात तो एक डॉक्टर किसी मरीज से पूछते हैं, पता नहीं कौन से फिल्म का गीत है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि निगाहें कभी खामोश नहीं होती, बिन कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं, कभी प्यार की रोशनी बनती है, कभी दर्द की कहानी कह जाती है। किसी की एक निगाह में अपनापन मिलता है तो किसी की एक नजर में पूरा संसार। निगाहें दिल का आईना होती हैं, जो छुपा हो दिल में कर देती हैं इजहार। वहीं हमारे एक साथी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही गंभीर सवाल। उनका कहना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए क्या करें। भाई हमें तो इसके बारे में यही पता है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो आप भी उन्हें नजर लगा दें। वैसे हमारे साथी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आंखों के कलर की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, तो कई रंग आंखों के हमने देखे हैं और उन पर गीत भी बने हैं, तो ऐसा कोई गीत आपको याद आता है और कौन कौन से रंगों की आंखें आपने देखी हैं हमें बता सकते हैं। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। बताइए किस फिल्म का गीत किसने लिखा है।

आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। असर जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना। हमारे एक साथी कह रहे कि मैं तो इकलौता बेटा था, तू माँ की आंख का तारा था, कभी आंखें तरेर कर उन्होंने हमें देखा ही नहीं, ये हमें मतलब देखा हो ऐसा हमें याद नहीं। हाँ, पिताजी ने गुस्से में पढ़ाई को लेकर आंखें लाल पीली की तो माँ ने हमेशा बचाव किया, उनकी नजरें रास्ते पर टिकी रहती जब मैं स्कूल जा रहा होता या आ रहा होता। हमारे मास्टर ने स्कूल में एक बार दो डंडे मारे थे तो माँ मास्टर को खा जाने वाली नजरों से देखकर उन्हें ऐसी फटकार लगाई थी कि वे आंखें ही नहीं मिला पा रहे थे। सारी क्लास की बच्चों की नजरें मेरी माँ पर थी। कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी पूरी बातें नजरों आंखों और इन बातों पर लिखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि दर्द दिल में होता है और आंखें बरसती हैं, खुशी हो तो आंखों में चमक पहले होती है। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट किया जिसे हम हिंदी में कहने वाले हैं। हम वो कह रहे हैं कि आंखें सिर्फ हमारे चेहरे पर ही नहीं होती बल्कि आंखें मानव शरीर में हर जगह होती, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे छूने की शक्ति, स्पर्श की जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो इंद्रियां होती हैं वो उन सभी की अपनी अपनी एक आंखें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली ये जो आंखें हैं हमारी, वो हमारे दिल की आंखें होती हैं माफ़ कीजिएगा। और उनका कहना है कि इन आंखों से हम बहुत सी चीजों को देख सकते हैं लेकिन वो चीजें दूसरे लोग नहीं देख सकते। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश की रिकॉर्डिंग चालू है क्या, हमारा नंबर नहीं लगता। भाई, हमारी तो यही उम्मीद है, यही हमारी शुभकामना है कि आपका नंबर भी जरूर लगेगा, लेकिन अभी नंबर आ गया है गीत का, तो दूसरा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया हमें बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

0: बताना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और देव आनंद इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू।

भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे नसीब में आंखें मिलाना लिखा ही नहीं था, बच्चे भी मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं शासन नहीं करना चाहती। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आंखें मिलाने का खेल मैंने खेला है जो हमने पूछा था और हमेशा मुझे हार मिली है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी की आंखों के इशारे पर नहीं नाच सकता और ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में जब कोई मेहमान आता था तब हम सारे बच्चे वहां घूमते टहलते रहते थे क्योंकि टेबल पर सजाई गई भोज्य सामग्रियां हमें खूब लुभाती थी कि शायद हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन फिर माँ और ताई जी आंखों से इशारा करती कि चलो भागो यहाँ से। जब उनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाता कि जाओ बाहर जाकर खेलो। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं आंखों पर मुझे कुछ गीत याद हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी या फिर नीली नीली आंखों के दिल पर तीर चल गए और जादू भरी आंखों वाली सुनो। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे तो आंखें काली भूरी सुनहरी नीली देखी है पर फिल्मी गीतों में गुलाबी आंखें और कत्थई आंखों वाली लड़कियां भी देखी हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गुलाबी आंखें छोड़कर सभी आंखें हमने देखी होंगी। और एक साथी कह रहे हैं कि पड़ोस में जब कोई मेहमान आता था तो अपनी बेटियों को आंखों के इशारे से समझा देती थी कि किस प्रकार की चाय और नाश्ता देना होता है। आंखों के रंग से मुझे एक बात याद आई, हमारे एक साथी ने कहा कि लंकापति रावण की आंखें हमेशा लाल हुआ करती थी, भाई इसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी का वृंदावन में पर्दा जब बार बार बंद और खुलता है ऐसा मानते कि ये छलियां हैं, कहीं किसी से अगर उनकी आंखें मिल गई तो उसके साथ ही चल देते हैं। तो चलिए हम भी चल देते हैं इशारों इशारों में बातें करने, क्योंकि कार्यक्रम का अंतिम गीत पहुंच चुका है आपके सामने और अब आप बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

कश्मीर की गली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और वक्त ने इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, बोल गुलजार के हैं, धुन आर डी बर्मन की, और फिल्म का नाम है आंधी। और इसके बाद आप सुनेंगे चितचोर फिल्म का गीत।

0: यशुदास और हेमलता की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारम्भ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केन्द्र का उद्घाटन भी करेंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ किया। यात्रा में पंजाब में नशे की समस्या, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले श्री चौहान ने तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेक कर पंजाब की सुख समृद्धि और नशा मुक्त पंजाब के लिए अरदास की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से वडनगर तक निकली बाइक सेवा यात्रा कल रविवार को सतना लोकसभा क्षेत्र पहुंची। सतना सांसद गणेश सिंह ने बेला में यात्रा की आगवानी की और हनुमान मंदिर में श्रमदान कर स्वच्छता और पौधरोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि, पशुपालन, डेयरी प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों को अपनाकर आय बढ़ाने का आह्वान किया। दिनवारा में ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने समस्याएं रखी। बाद में यात्रा चित्रकूट विधानसभा के नया गांव पहुंची, जहां सांसद ने यात्रा में शामिल युवाओं से मुलाकात की।
1: हमारी जो यात्रा है जो वाराणसी से चलकर वडनगर की तरफ रवाना हो रही है, कल रात्रि यहाँ पर मेला में उनका विश्राम हुआ। आज सेवा वाटिका में वृक्षारोपण करने के बाद मैहर की तरफ उनका प्रस्थान होगा। उनके टीम के सभी साथियों का भी सतना जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से, यहाँ उपस्थित सभी साथियों की तरफ से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि से जापान में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर और जबलपुर सहित कई जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल करीब 458 करोड़ रुपए की चंबल कोतवाल जल परियोजना का निरीक्षण किया। लोक निर्माण और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने मालाखेड़ी में 368 लाख रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवीए विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। शिवपुरी जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर 2 से 8 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। जबलपुर में रेलवे ने विकास कार्यों के चलते जबलपुर हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस के 19 फेरे और भोपाल दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस के 7 फेरे रद्द करने का फैसला लिया है। भोपाल जिले के प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आज विशेष आधार नामांकन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 बकरियों की मौत हो गई, वहीं 3 चरवाह इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
4: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
6: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
7: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में। कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर

0: मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक

यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं परवरिश फिल्म से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के बोल, दत्ताराम वाडकर का संगीत।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फागुन फिल्म के इस गीत में आशा भोसले को। कमर जलालाबादी ने से लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: फागुन फिल्म के इस गीत में आप सुन रही थी आशा भोसले को, कमर जलालाबादी ने इसे लिखा ओपी नैयर की तर्ज।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जमाना है पुराना। सीआईडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सुनते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: पहले दे दो।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: रही सहेली।
1: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार, चंचल वर्मा का, और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा, आपको भी
2: नमस्कार। चंचल जी, आपको और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
2: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
1: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
2: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती है जब अच्छा खाना खाने मिले, इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ,

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना। और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते ना कि हम भूले नहीं इस गाने को
1: जी।
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज हम किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
4: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा, भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
5: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
4: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश मालक

0: अब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब है।
1: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
0: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन डाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
2: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रिंटेंडेंट थे। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए डी फिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपया पाते हैं लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
3: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
2: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
3: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
1: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी।
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीजों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीजों के साथ में बहुत चीजों को हल्के में लेती हैं, और जब हल्के में हम चीजों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत
1: जी।

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने

0: वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है
3: सखी सहेली। और हमें तो याद है ये सारी चीजें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
3: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो लक्षण है, मतलब आमतौर पर हम छोटी मोटी चीजें भूलते हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है, किस जगह हैं आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
2: और कई बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है। हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है, तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता। तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग नजरअंदाज करते थे, समय है, उम्र बढ़ रहा है तो ये चीजें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
3: हाँ, जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरापान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
2: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
3: बिल्कुल, और हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल एडीआई की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
2: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब हम शांति की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
3: बिल्कुल, अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की। और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
2: तो देखियो ना, मैं भी भूल गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में और शांति दिवस का संदेश पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
3: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो
1: हाँ
0: शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की
1: हाँ
0: कोशिश वो जरूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस
0: हाँ
1: की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा।
0: जी
1: और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है, साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्रवाई भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके ये काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता।
1: हाँ
0: इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा।
1: जी,
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है।
1: जी।
0: और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होते हैं,
1: हाँ,
0: शांति का प्रतीक माना जाता है, उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है, नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, समझाएं किसी तरह से, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
0: तो आपने कहा दूसरों को सुने,
1: हाँ,
0: समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते
1: बिल्कुल।
0: हैं। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली, यानी सखी यानी मेरी धर्म पत्नी, शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
1: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा,
0: जी,
1: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज।
0: जी।
1: तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था, घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
0: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: सही बात है। आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो
0: हाँ
1: रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप उस पर डाल सकते हैं।
0: हाँ
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं
0: कुछ भी
1: होता।
0: नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है
0: मलाई
1: वैसा वाला
0: जी,
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब
0: जी
1: एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक

0: लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचाव हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है। और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए, और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सूखे मसाले ना जलें इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है
1: जी।
0: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है। धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म लियोदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से
1: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें, ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताज़ा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है, सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी हूँ,
0: लियोदुर चमन
1: लियोदुर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना जो ताजी सब्जियां, जिस तरह से थोड़े से मसालों के साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है, और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
0: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
1: बिल्कुल।

0: चंचल जी, हमारी एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो बस
0: अपना
1: आप
0: ख्याल
1: पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना, और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला।

0: मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
0: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ ये
1: जी
0: सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा,
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता है, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
0: तो दो चीज़ें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो
1: जी
0: एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुँच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है,
1: ओ
0: ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज़्यादा ब्लड जा रहा है ब्रेन में, खून की नस फट गई है,
1: ओहो
0: तो ऐसे ले मैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलता है, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना,
1: ओ
0: बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा,
1: ओ
0: उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकेंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं।
1: जी
0: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है,
1: ओ
0: मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से 1 मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं।
1: जी
0: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट, अच्छी है,
1: हैं।
0: बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको, फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं
0: करेक्ट
1: बिल्कुल,
0: करेक्ट, तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक
1: जिस
0: ही
1: पर?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्त दाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त, तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का
1: जी,
0: प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी, जी।
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है
1: जी।
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है। अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहा है। अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं। तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जो स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश प्रयास किया जा सकता है?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, MRI, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर में मोच आ गई, उसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे MD फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने MRI किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस है। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो
1: जी।
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयां और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं।
1: ओके।
0: तो इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं
1: जी। तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
0: बहुत,
1: तो इसका क्या संबंध?
0: खून अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है
1: जी, जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छा है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है
1: जी जी। तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखिए जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं, उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना?
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए। उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी,
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए हर्निया, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाए।
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम।
1: जी, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो

0: है इसमें, या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो
1: जी
0: उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
1: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए
0: बहुत
1: परिवार की?
0: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन,
1: जी,
0: दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही
1: वो
0: सही
1: सही
0: था।
1: था।
0: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि
1: जी
0: बीमारी का जो आउटकम है वो
1: हाँ
0: समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको
1: जी
0: समझाना काफी मुश्किल
1: मुश्किल
0: बोल
1: होता
0: सकता
1: है।
0: हूँ
1: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए हो,
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो
0: तो वो जो एक
1: ये
0: मिथ है
1: जो
0: कि मेरे
1: बात
0: गांव
1: है।
0: में तो ऐसा हुआ था, हमने
1: हाँ
0: उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए,
1: हाँ
0: तो अब
1: हाँ
0: जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं इसमें तो कुछ है नहीं।
1: जी
0: बट
1: जी
0: जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब
1: जी
0: अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेप, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है। अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो,
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, दो
1: जी,
0: साल 5 साल। और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी के हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयां शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दो
1: जी
0: हजार एकदम सेफ दवाइयां रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए। अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो, ऐसा।
1: बिल्कुल, और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए, और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है, पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो। तो
1: जी
0: उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
1: तो दवा
0: तो
1: ले लो
0: नेट पे उसका एक इलाज भी
1: बिल्कुल
0: अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो। तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं, पेशेंट को 10 दिन दवाई देने से दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
1: जी
0: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
1: जी
0: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है,

0: है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
1: जी जी
0: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को

0: हमारा ये करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई भेजने से दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
1: जी
0: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
1: जी
0: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा, हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं, इसका वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
0: जी
1: ये गाना।
0: करेक्ट।

0: माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
1: जी जी
0: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही अच्छी चीज है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम है। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है, ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है
0: जी।
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है।

0: होती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है, जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी
1: कैंसर
0: तो
1: है।
0: मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे, तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
1: जी।
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
0: देखो, जैसे
1: अचानक?
0: ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है, वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
1: दबे
0: स्पेसिफिक
1: पांव आने
0: मतलब
1: वाली बीमारी।
0: करेक्ट। तो काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है। तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा, वॉमिटिंग होती है इसमें। तो अब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो अब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोलो जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी
1: जी
0: में, वहाँ MRI छोटे आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
1: जी
0: तो हर
1: जी
0: एक का MRI करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
0: ऐसे
1: जिससे?
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी। तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि एक तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो एमआरआई देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी।
1: तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके, तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी। तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना खाना बाहर की लाइफ एक्टिविटी वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
0: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
1: एक
0: जरूरी?
1: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए। बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का,
0: जी।
1: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
0: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
1: करेक्ट करेक्ट।
0: तो उसके क्या लक्षण है?
1: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं,
0: ट्यूमर
1: गांठ।
0: वही है।
1: तो बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
0: जी।
1: जैसे बाकी शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
0: जी। तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है, कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
1: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
0: और
1: तो
0: फिर
1: उसके
0: इसका
1: हिसाब से इलाज डिसाइड होता है। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, दो तीन साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ?
1: ऐसा जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15-20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15-20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन, बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है, किसी को नहीं पता। जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम है फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
0: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है, किस तरह की
1: स्ट्रोक? यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट ट्यूमर में संभाव कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
0: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
1: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है, जो आसानी से मरीज ले सकता है।
0: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
1: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है फिर भी। स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी? तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
0: जी जी,
1: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज है नशा बंद कर दो, बहुत फायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफी खराब चीज है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
0: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेन जी जो सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद बात है।
1: करेक्ट, तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है ऑलमोस्ट सारे छोटे सिटी में भी, काफी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या ही होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
0: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए जरा।
1: हर पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
0: जी जी,
1: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हॉर्मोन्स एंजाइम सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग, तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
0: जी,
1: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयां भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
0: जी,
1: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
0: जी,
1: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग मॉडिफाई करना है, बट एक है कि ये दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
0: जी, एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो मूवमेंट अजीब सा होता है, तो ये क्या कोई न्यूरो
1: रिलेटेड ही है? उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगते हैं, तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया, उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसा हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है, तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं, बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
0: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
1: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से।
7: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का। हम लेकर हाजिर हैं युवा संवाद और युवा आवाज से सजा कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत करता है रचना और ऋषि।

0: जय श्री महाकाल। दोस्तों, आकाशवाणी उज्जैन के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ऋषि।
1: और मैं हूं रचना। नमस्कार ऋषि, आज सोमवार है, यानी हफ्ते का वो दिन जिसका हमें और हमारे श्रोताओं को बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है। सोमवार का मतलब है हमारा और आपका सबका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हफ्ते में दो दिन सोमवार और शुक्रवार हम सीधे आपके साथ टेलीफोन लाइंस के जरिए जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रचना, यह एक ऐसा मंच है जहां कोई औपचारिक दीवार नहीं होती, बस हमारे श्रोता होते हैं, उनकी बातें होती है और ढेर सारी गपशप होती है।
1: बिल्कुल ऋषि, और दोस्तों हर बार की तरह आज भी हम एक खूबसूरत और विचारणीय विषय लेकर आपके बीच हाजिर है।
0: यह चर्चा न केवल इंफॉर्मेटिव होगी बल्कि इसमें हमारी संस्कृति की खुशबू और त्योहारों की उमंग भी शामिल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास फोन इन कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आज का हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल, यानी त्योहार के इस पावन अवसर पर हमारे अपने शहर के स्थानीय कुम्हारों, कारीगरों, हस्तशिल्पों और छोटे दुकानदारों से खरीदी करने का महत्व, उसके फायदे और हमारे अनुभव। तो देर किस बात की दोस्तों, उठाइए अपना फोन और मिलाइए हमारे स्टूडियो का सीधा नंबर 0734405-4191।
1: जी हाँ, एक बार फिर नोट कर लीजिए 0734405-4191। अगर आपने भी इस बार अपने शहर के किसी कुम्हार से खूबसूरत दिए खरीदे हैं, किसी स्थानीय कारीगर से हाथ से बने तोरण या सजावटी सामान लिया है, या आपके पास वोकल फॉर लोकल से जुड़ा कोई भी दिल को छू लेने वाला अनुभव है, तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।
2: नूर कहता हूं, कभी मैं

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं कि हमारा पहला कॉल आ चुका है।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आपका नाम क्या है?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा शिमला से।
0: अच्छा, शिमला से आप बात कर रहे हैं। आज जैसे राकेश जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल।
1: जी, वोकल पे लोकल। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भारतीय जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भारत में जो चीजें बनती हैं अपने मिट्टी की बनती हैं, जैसे कि खासकर जो है खाने पीने की चीज जो है अपने भारत में होती है। जैसे कि हम जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या ये चीज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बदले अगर हम गन्ने का जूस का रस पीते हैं तो वो हमारे लिए भी सेहत का ठीक रहता है, क्योंकि अगर हम विदेशी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पैसा जो है विदेश में चल जाएगा, तो फिर हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। आत्मनिर्भर तब होगी जब हम अपने भारत की बनी हुई चीजें को हम इस्तेमाल करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने राकेश जी। और इसके साथ ही स्थानीय दुकानदारों से सामान लेने पर शुद्धता और ताजगी की भी ज्यादा हमें श्योरिटी मिलती है।
1: जी बिल्कुल, रखिए मिठाई जो है शुद्ध ताजा और मिलती है। और मिठाई की बात नहीं, जैसे कि आजकल भारत में कई चीजें बन रही है, जैसे कि खिलौने हैं या मोबाइल फोन है, ऐसे ऐसी चीज जो है भारत में बन रही है, लेकिन लोग सोचते कि ये महंगा है तो ये ज्यादा पड़ेगा, लेकिन महंगा है अच्छी क्वालिटी वाले जो है ये जो है भारत में बन रहे, तो इसलिए भारत के बने हुई चीजों का उपयोग कर रखी है, और अपना पैसा जो है क्या बोलते हैं हमें विदेश से बचा रखी है, तभी जाके हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा जब हम अपने भारत, और इसमें क्या होता है अपने अपने भारत की पहचान भी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा।
1: जी
0: आपके शहर में या आसपास लोकल मार्केट कौन सा फेमस है, जहां कहीं बिना किसी चीज इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हो, जहां आपको शॉपिंग करने में मजा आता हो?
1: जी, देखो मैं कहना चाहता हूँ, कुल्लू है, जो कुल्लू वाला शॉल आपने सुना होगा वो सबसे बड़ा फेमस है और उसकी बिक्री ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री हिमाचल जब कहीं भी जाते हैं विदेश में, तो हिमाचल हिमाचल टोपी और कुल्लू शॉल लेके जाते हैं, तो इसकी हमारी ज्यादा पॉपुलरिटी है।
0: बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे जुड़ के। धन्यवाद
1: जी
0: आपका कॉल कर। रचना सोचिए, जब एक कुम्हार सुबह सुबह चौक चलाकर मिट्टी को आकार देता है, तो उसमें सिर्फ उसकी कला नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीद डलती है। जब हम उससे दिए या मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, तो हम सिर्फ माटी का एक टुकड़ा घर नहीं लाते बल्कि उस हुनरमंद के घर में भी खुशियों का दिया रोशन करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तुमने ऋषि। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
2: जी प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेम सिंह जी, आज का जैसा कि हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल।
3: जी कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेम सिंह जी।
3: और बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी व्रत भी चले, त्योहार भी आ रहे हैं और फसल भी हमारी कटने की तैयारी भी है,
0: बिल्कुल
3: तो हम आसपास ही खरीदे या फिर जो हमारे आसपास जितने भी लोकल लोग हैं ना, उनसे खरीदारी करें ताकि उनका भी

0: सहयोग हो जाए और हमें अपनी जरूरत की चीजें मिल जाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप करते क्या हैं?
0: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी जैसे वोकल फॉर लोकल का हमारा टॉपिक जो चल रहा है, तो इसमें अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि स्थानीय दुकानदारों के सामान लेने पर शुद्धता और ताजगी ज्यादा मिलती है?
0: बिल्कुल, शुद्धता और ताजगी ज्यादा मिलती है और हमें उससे मतलब जो हमारे जान पहचान वाले रहते हैं ना, तो वो हमें जानबूझ के भी अगर ऐसे खराब की जाएगी ना तो हमें नहीं दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये भी हमें बड़ा अच्छा फायदा होता है। या ऐसे कुछ खराब भी हमारे पास में प्रोडक्ट आ जाते हैं ना, तो हम वापस उनसे जाके चेंज करवा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा। और आप जैसे अभी त्योहारों की अब हमारे यहाँ लाइन आती जाएगी, त्योहार आते जाएंगे एक के बाद एक, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा पे जाएंगे या हमारे जो दुकानदार है छोटे इन लोग से ज्यादा खरीदी करेंगे?
0: जी, जहाँ तक तो मेरा मानना है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करता हूँ। मैं कम ही करता हूँ, नहीं मतलब करता ही नहीं हूँ। जो भी खरीदारी होती है ना, अपने आसपास के क्षेत्र वाले लोगों से ही खरीदता हूँ और ऐसे चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है ना, वही खरीदते हैं और अपने आसपास वाले लोगों से ही और अपने रिलेशन वाले से ही खरीदे, ताकि मतलब उनका भी सहयोग हो जाए और अपना भी काम बन जाए।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अगर आपने भी इस बार स्थानीय कारीगरों से कोई खास खरीदारी की है या आपके पास वोकल फॉर लोकल से जुड़ा कोई प्यारा सा अनुभव है, तो तुरंत उठाइए अपना फोन और सीधे जुड़िए हमारे साथ। हम आप ही के कॉल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारा नंबर है 0734-405-4191। इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार ऋषिव जी, नमस्कार आपको हमारा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
4: नमस्कार नमस्कार।
6: आकाशवाणी उज्जैन के युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना नाम बताइए।
5: रजनी दीदी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी नमस्कार प्यार भरा। मैं संतोष जी हड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ाउत कंजर डेरे देवास जिले से।
6: जी संतोष जी कैसे हैं आप?
5: जी हम तो बढ़िया है, आप बताओ दीदी।
6: जी हम भी बढ़िया ही है। संतोष जी जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल। त्योहारों का मौसम है और हम सब शॉपिंग में लगे हुए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार आपकी त्योहारों की तैयारियां कैसी चल रही है?
5: जी बढ़िया चल रही है दीदी। पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल बोलिए।
5: जो अपन खाने पीने की चीज जो मार्केट से लेते हैं
4: जी,
5: उसमें काफी मिलावट आती है। मेरे हिसाब से खाने पीने की चीज अपन घर बना के शुद्ध खाओ।
4: बिल्कुल। तो
5: और जो जी जी
4: जी जी आप बोलिए बोलिए
5: बोलिए सर आगे बोलिए।
4: नहीं नहीं आप बताइए, मैं तो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था एक।
5: जी पूछिए।
4: कि अपने शहर के जो कारीगरों के हाथ से बना कौन सा सामान आपको सबसे सुंदर और खास लगता है?
5: अपने शहर का तो बस ये नमकीन और मिठाइयां जो भी है ये ठीक थे।
4: अच्छा
5: जी
4: चलिए। और जैसे
6: संतोष जी आने वाले त्योहार में आप अपने घर की सजावट के लिए क्या क्या लोकल सामान खरीदने की सोच रहे हैं?
5: जी अभी जैसे अपने लोकल जो भी चीज मिलती है जो छोटे दुकानदार हैं
4: जी,
5: उनसे अधिकतर खरीदने में फायदा है। और जो अपन ऑनलाइन बुलवाते हैं वो करते हैं, कभी छोटा सामान आ गया कभी बड़ा आ गया, अपने को बहुत समस्या आती है उसमें।
4: जी जी।
5: और अपने हाथों से जो लोकल मार्केट से सामान लेते हैं वो अपने पसंद का रहता है और उसमें दिक्कत भी नहीं आती।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हमें ये बताइए कि जब आप किसी छोटे व्यापारी के से सामान खरीदते हैं तो उसके चेहरे की खुशी देखकर आपको कैसा महसूस होता है?
5: जी जैसे कि मैं सर यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा
4: जी,
5: जैसे कि हम 4 महीने किसान व्यक्ति हूँ मैं, जैसे 4 महीने फसल के लिए अपना इंतजार रहता है और फिर वो अपनी फसल बिकती है और पैसा अपने घर में आता है, बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा ही गरीब आदमी की जो अपन सामान लेते हैं वो उसका घर चलता है, उसमें बड़ी खुशी मिलती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे।
4: बिल्कुल बोल दी
5: सर। जैसे ये आपका जो कार्यक्रम है बहुत बढ़िया लगा मेरे को, इसी विषय में एक हमारा मन पसंद गाना भी इसमें जोड़ दिया करो हमसे सवाल पूछ के, तो और सुंदरता आ जाएगी इस कार्यक्रम में।
4: सर उसके लिए हमारा एक बुधवार को एक कार्यक्रम होता है, उसमें आप आपकी फरमाइश वाले में आप फेसबुक पे हमें पोस्ट करिए, कमेंट करिएगा, आपका पसंदीदा गाना हम जरूर सुनाएंगे।
5: जी जी धन्यवाद ऋषि जी।
4: धन्यवाद आपका। सुनते हैं ये अब हमारा अगला गीत।

0: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आपका नाम क्या है?
1: सुरेश गगनीजा,
0: सर आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी। खेती
0: अच्छा, वैसे आप करते क्या है?
1: किसानी जी।
0: खेती किसानी करते तो जैसे कि अभी आज का हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल,
1: जी
0: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे जो विदेशी और प्लास्टिक सामान जो खरीदते हैं हमारे जो श्रोता हैं
1: जी
0: उनको आप
1: बिल्कुल
0: क्या बताना चाहेंगे कि हम कैसे उससे बचें या उसको कम उपयोग करें या ज़्यादा?
1: जी। देखिए, एक तो हमें अपने जो देश में सामान बनता है
0: जी बिल्कुल
1: उसका उपयोग करना चाहिए, और दूसरी बात है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगी,
0: जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: क्योंकि शरीर के लिए, सेहत के लिए प्लास्टिक बहुत हानिकारक है जी।
0: तो वैसे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी छोटे दुकानदार ने आपको पहचान वाला समझकर बिना मांगे थोड़ा एक्स्ट्रा सामान या डिस्काउंट दे दिया हो?
1: जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी।
0: अच्छा, कोई बात नहीं,
1: जो
0: बाकी
1: जो रेट उनके फिक्स होते हैं वो ही लगाते हैं जी।
0: जी, वो तो बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं। और जैसे आपको क्या लगता है कि कभी किसी कारीगर को चाक या हाथ से सामान बनाते हुए देखने गए हैं आप?
1: जी नहीं, कभी नहीं देखा जी।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: ऋषि, जब बात स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार की

0: पूरी तरह से इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल होते हैं। इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता और इस्तेमाल के बाद ये प्राकृतिक रूप के मिट्टी में भी मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तुमने ऋषि। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए।
3: सुनीता शर्मा
2: जी। सुनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
3: मैं रतलाम से कर रही हूँ
2: जी। तो सुनीता जी, जैसा कि आप जानती हैं, आज का हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है?
3: जी, जो अपने देश में बनी हुई चीजें और अपने छोटे छोटे गाँव में लोग, ये लोग जो बनाते हैं, उनसे ही सामान खरीदना, उनका ही सामान लेना, उसका ही उपयोग करना, वो ज्यादा अच्छा है। जबकि बल्कि ऑनलाइन से लेने से बजाय छोटे छोटे कारीगरों से कुछ बनी हुई चीजें लेना। अभी जैसे त्योहार के टाइम पे ये मिट्टी के गणेश जी छोटे छोटे से दुकान लगा के बैठे थे कुछ, तो उनसे हम लोगों ने उनसे ही खरीदा और वो चीजें उनसे लाए तो ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुनीता जी। सुनीता जी, आपने अपने पास के किसी पुराने हलवाई की कौन सी मिठाई आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
3: हमारे यहाँ पे जो रतलाम में एक हलवाई वाला है कन्हैया लाल जी करके,
0: जी
3: मुझे बहुत पसंद थी और उसमें भी वो गरम गरम जलेबियाँ बनाते थे तो हम लोग अक्सर लेने जाते थे।
0: अच्छा,
3: तो आज भी याद है उनके हाथ की जलेबियाँ।
0: अरे क्या बात है। वैसे अब आप हमें ये बताइए, क्या कभी किसी स्थानीय दुकान ने आपकी पसंद के हिसाब से कोई सामान कस्टमाइज बना कर दिया है?
3: हाँ, दिया है अपने अपने हिसाब से जो बना के हम लोगों ने। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सुनीता जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी विदेशी और प्लास्टिक सामान को तरजीह देते हैं?
3: जी,
2: आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अभी भी विदेशी या प्लास्टिक सामान खरीदते हैं?
3: नहीं नहीं बिल्कुल, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये विदेशी सामान ये बिल्कुल नहीं खरीदना और प्लास्टिक के सामान का तो उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने अपने स्वदेशी सामान का उपयोग करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी स्थानीय बाजारों से जुड़ी कोई ऐसी सुंदर याद या अनुभव है तो उठाइए अपना फ़ोन और मिलाइए 0734405411। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, मैं गुजरात से आपका नियमित श्रोता धीरे जबारी बात कर रहा हूँ।
0: जी वैसे आप करते क्या है सर?
1: सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी से जुड़ता हूँ। और आकाशवाणी उज्जैन का जो युवाणी विभाग है, जो आप फोन इन करते हैं सोमवार और शुक्रवार, तो मुझे बहुत ये कार्यक्रम पसंद है। मैं हिस्सा भी लेता हूँ और आप लोग जो श्रोताओं को जो मौका देते हैं बातचीत करने का, तो उसके लिए मैं आपको और आकाशवाणी युवाओं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
0: धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल।
1: जी सर, हमारा जो आपने विषय चुना है वो देखा जाए तो इसकी पहले से हम ये काम करते थे, आज भी करते हैं। हमारा लोकल फॉर लोकल यानी हमारा खुद का यानी जो भी गृह उद्योग हो, कोई भी हो, हमारी स्वयं की बनावट है चीज वस्तुओं की, तो वो तो पहले थी और अभी भी है। और देखा जाए तो हमारी जो भी यानी भरत काम है, कोई और हस्तकला है और कई यानी जो उद्योग है, उसमें हमारा यानी लोकल यानी स्थानिक लोगों का बहुत यानी अहम योगदान होता है। और ये हमारी चीज वस्तु है, उसकी डिमांड भी बाहर जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था को वो जो ये व्यवस्था है बहुत मजबूत करती है सर।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताइए आपने।
2: सर, आपके शहर में आसपास कौन सा लोकल मार्केट फेमस है?
1: यहाँ देखा जाए तो जो यानी जो भरत काम होते हैं, जो यानी जो बहने काम करती है ना, जो कपड़ पर जो डिजाइन करती है दोरे धागे से, तो यहाँ वस्त्रापुर हाट है, उसको जो हाट बोलते हैं, तो वहाँ कई बार यानी उसका शो रखते हैं बहनों का, यानी इतने जो यानी भरत काम हुई तो बहुत फेमस है। और अगर हो सके तो आप कभी भी यहाँ गुजरात में आओ तो वस्त्रापुर में जो हाट बाजार है वहाँ बहुत चीजें है जो गाँव में बनाई हुई है यानी बहनों यार भाइयों के द्वारा।
0: बढ़िया बात बताई आपने सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शॉपिंग के दौरान बाजार की भीड़ भाड़ और वो रंग बिरंगी दुकान देखकर बचपन की कौन सी याद ताजा हो जाती है आपकी?
1: सर देखा जाए तो बचपन में तो बहुत यादें हैं, यानी दुकानों में कई ऐसी चीजें हैं जो हमको वो चीज के लिए वो दुकान पर दौड़ यानी हमारा मन करता था कि ये चीज ले ये चीज ले। तो अभी यानी बहुत पहले जैसा माहौल कम ही रहा है क्योंकि बच्चे को समय ही नहीं रहता है यानी बाजार में मम्मी पापा के साथ जाने का, लेकिन वो कई ऐसी चीजें हैं यानी खिलौने थे यानी कोई ऐसे बनावटी वस्तुओं थे, तो वो बहुत मन करता था सर। और अभी तो फिलहाल उम्र हो गई लेकिन वो यादें अभी भी हमारे मन मानस पटल पर अंकित है सर।
0: अच्छा, तो अगर आपको किसी दोस्त को सिर्फ एक लाइन में ये बताना हो कि लोकल बाजार से खरीदी करने की सलाह देनी हो तो आप क्या कहेंगे उसे?
1: सर मैं देखा जाए तो हमारा जो पुराना यानी बाजार था, पुराने बाजार में हमारा खुद की जो यानी कोई चीजें है खुद की बनाई हुई, तो वो खरीदने से हमें दो तरह के फायदे है, एक तो हमारा गृह उद्योग फूलेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और उनको भी मुनाफा होगा और देश के अर्थतंत्र में वो ज्यादा सहयोग देगा। हमारे जितने साथीदार है जो लोकल फॉर वोकल यहाँ की जो चीजें वो खरीदे सर।
0: बिल्कुल।
2: वीरेन जी, आपके पीछे से जो मोर का साउंड आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, आप अभी कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ और यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर भी बहुत है, और इसीलिए मैंने भी यानी एक देखा जाए तो मोर की आवाज तो हम नहीं बोल सकते कि आप बोलो, एक वो खुद अपने आप में बोलते, बारिश की बूंदाबाजी हो रही है और वो मोर की तो एक बारिश में बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है बोलने का, और ये जो मोर बोलते है वो सभी को अच्छा लगता है।
2: वही तो वीरेन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: तो ऋषि, जब हम वोकल फॉर लोकल अभियान की बात करते हैं तो इसका एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है। जब हम किसी मॉल या बड़े शोरूम से खरीदारी करते हैं तो वहाँ फिक्स्ड प्राइस होते हैं और हम बिना कोई सवाल किए भुगतान कर देते हैं, लेकिन जब कोई गरीब विक्रेता या कुम्हार सड़क किनारे बैठ कर सामान बेचता है तो अक्सर लोग उनसे मोल भाव करने लगते हैं।
0: यह बहुत ही विचारणीय मुद्दा है रचना। हमें यह समझना होगा कि छोटी छोटी दुकानों और ठेलों पर सामान बेचने वाले कारीगर अमीर बनने के लिए व्यापार नहीं कर रहे होते, बल्कि वे केवल अपने परिवार का पालन पोषण और त्यौहार की बुनियादी खुशियां जुटाने के लिए मेहनत करते। 5 रुपये या 10 रुपये का मोल भाव छोड़कर यदि हम उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य दें तो उनके चेहरे पर जो संतोष और खुशी देखेगी वो हमारे त्योहार का असली आनंद है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने ऋषि। और इसी के शायद अगले हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं।
4: नेत्रा में एक बार एक राउंड खेल दो।
0: नमस्कार।
4: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में युववाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा योगेंद्र जी,
4: योगेश जी
0: जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल।
4: जी,
0: तो आप हमें बताइए कि आप वोकल फॉर लोकल से क्या समझते हैं?
4: अब यही किया कि अपने लोकल जो निर्मित सामान जो होते हैं
0: जी,
4: जो अपने आसपास जो मिलते हैं जो बहुत आयात रूप में, ज्यादातर उन्हीं का हम उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके शहर में ऐसी कौन सी चीज मिलती है जिसे आप बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को गर्व से गिफ्ट करते हैं?
4: अब देखिए भैया, फसल पानी यहाँ तो भरपूर मात्रा में होता है अधिकांश फसलें।
0: अच्छा
4: हाँ,
0: तो आप उन्हीं को सब अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक आप पहुँचाते हैं?
4: जी जी जी जी।
0: अच्छा, और जैसे कि अगर ऑनलाइन डिलीवरी बॉय से पैकेट लेने में ज्यादा मजा आता है या बाजार में थैली टांगकर खुद सामान खरीदने में?
4: अब वो तो भैया बचपन से तो बाजार का ही सामान खरीदे हैं तो वही ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल।
3: योगेश जी, आपके शहर में आपके आसपास कौन सा लोकल मार्केट फेमस है जहाँ वहीं की बनी चीजें मिलती हो?
4: अब लोकल तो यही बेमेतर हमारा जिला मुख्यालय है और जो भी चीजें वही कृषि प्रधान है तो ज्यादातर सब यही साग सब्जी यही सब ज्यादा मिलता है।
0: अच्छा, तो क्या आपके घर में आज भी पुराने मिट्टी के मटके में पानी इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल सजावटें की जाती है उससे?
4: हाँ भैया, फूल वगैरह भी लगाए हैं उसमें तो।
0: अच्छा
4: जी
3: जी, योगेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: शुक्रिया। चलिए
0: तो दोस्तों सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार सर, मैं शैलेश सिसोदिया ग्राम लोध तहसील तराना से बोल रहा हूँ।
0: जी जी सर, जैसे कि अभी हमारा विषय है वोकल फॉर लोकल,
1: जी
0: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि खरीदी हमें किस तरीके की करनी चाहिए, मतलब लोकल से या ऑनलाइन?
1: सर एक्चुअली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली हमारे प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है। हमारे यहाँ गांव में तो विशेष तौर पे आज भी चलता है कि कई लोग अनाज देकर सब्जियां खरीद लेते हैं और सब्जी वाला उस अनाज को या तो घर में उपयोग करता है या बेचता भी है। लेकिन ये प्रणाली बहुत समय से हमारे यहाँ विद्यमान है और मैं तो बोलता हूँ कि हमें अपने लोकल दुकानदार से और आसपास वालों से ही सब्जी खरीद या जो भी खरीदना है खरीदना चाहिए। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना पैसा बाहर ले जाती है, हमारा पैसा हम तक हमारे लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा सर ये आपने। वैसे सर, जैसे कि आपके शहर या गांव की ऐसी कौन सी पारंपरिक कला या सामान है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होता है?
1: सर हमारे यहाँ पर जो अपने खजूर होते हैं उससे वो बनाए जाते हैं, ऐसी टोकरियां बनाई जाती हैं और ऐसे बिछाने के लिए बिछौने बनाए जाते हैं, हमारे गांव में ही बनाते हैं, झाड़ू में बनाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं और बड़ी सुंदर बनाते हैं।
0: अच्छा,
1: मुझे वो अच्छा लगता है वो कला।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ पर खजूर की चीजों से ये सब चीजें बनाई जाती है। जब आप स्थानीय व्यापारियों के सामान खरीदते हैं तो क्या उनके साथ कोई पारिवारिक या आत्मीय रिश्ता बनता है आपका?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा एक तरीके से स्वागत करते हैं, हमें देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमें मुस्कान आ जाती है। ऑनलाइन में हम कहाँ किसी को देखते हैं कि सामने वाला कौन है क्या है, लेकिन हमारे हमारे संबंध बनते हैं आपस में।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपको क्या लगता है कि किसी कारीगर को चाक या हाथ से सामान बनाते हुए आपने कभी देखा है?
1: जी बिल्कुल देखा है, मेरे पास के गांव में एक बिल्कुल मैंने हाथों से बनाते हुए देखा है।
0: अच्छा, तो वो किस तरीके के मतलब सामान बनाते हैं?
1: आप चाक के ऊपर बात कर रहे हैं?
0: जी जी
1: जी जी जी जी, वो आजकल तो इलेक्ट्रिक होने लगी है, पहले तो हाथ से घुमाने वाली होती थी लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक होने लगी और बड़े सुंदर तरीके से और बड़े अच्छा तरीके से देखना अच्छा लगता है क्योंकि वो कला अपने आप में एक धैर्य और उसका परिणाम है कि इतनी सुंदरता से मटका बनाया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आपके घर में इस बार दिवाली के दिए मिट्टी के आ रहे हैं या प्लास्टिक के?
1: जी जी, हम तो हमेशा से मिट्टी के उपयोग करते आए और मिट्टी के ही करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो मिट्टी से जुड़े रहना बहुत अच्छा है।
0: सही कहा आपने।
2: शिरीन जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी विदेशी प्लास्टिक सामान खरीदते हैं?
1: जी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने देश का सामान उपयोग कीजिए, देश का पैसा देश में रखिए, साथ ही अपने आसपास के लोगों को मद की मदद कीजिए ऐसा करके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: बहुत अच्छा लगा शरीर जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।
0: रचना, आज की नई पीढ़ी और बच्चों के दृष्टिकोण से देखे तो वोकल फॉर लोकल का अनुभव उन्हें अपनी संस्कृति को जड़ों से जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है।
2: बिल्कुल, बहुत सही कहा तुमने ऋषि। आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध हो

0: जाती है। जब माता पिता अपने बच्चों को स्थानीय कारीगरों की दुकानों और कुम्हारों की कार्यशालाओं में ले जाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि एक मिट्टी का दिया या हस्तशिल्प तैयार करने के पीछे कितनी लगन, पसीना और कला छिपी होती है।
1: बिल्कुल, इससे बच्चों के मन में मेहनत और कला के प्रति सम्मान पैदा होता है। वे सीखते हैं कि हर वस्तु केवल पैसे से खरीदी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी मनुष्य का श्रम और साधन है। यह व्यवहारिक सीधे उन्हें एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने जी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के युवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार दीदी, मैं दुले सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बादशाह, जिला आगरमालवा।
2: जी दुले सिंह जी, आप तो दुले सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा विषय है लोकल फॉर वोकल, तो इससे जुड़ा आपका कोई अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
3: हाँ बिल्कुल दीदी, हमें क्या है कि वो लोकल से ही खरीदना चाहिए, हमें बाहर से नहीं मंगवाना चाहिए कोई भी सामान। और हम तो आज भी खरीदते हैं, ये जो मिट्टी के घड़े वगैरह ये सब हमारे आसपास के गांव वाले आते हैं, वही देते हैं और उनसे लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात है ये आपकी। हाँ तो आप हमें ये बताइए कि आपके घर में सजावट का सामान क्या हर साल नया आता है या सालों पुरानी हाथ से बनी चीजें सहेज कर रखी जाती है?
3: ये फूल वगैरह तो ये जो आते हैं बाहर के बेचने वाले सजावट के, इनसे ले लेते हैं दीदी। बाहर के लोग आते हैं ना मालूम कहाँ के, लेकिन वो बेचने वाले गांव में आते हैं, गमले छोटे छोटे ऐसे सजावट के।
1: अच्छा,
3: तो
1: अच्छा,
3: इनसे ही लेते हैं हम।
2: तो सर आपके हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी विदेशी सामान खरीदते हैं?
3: विदेशी सामान नहीं खरीदना चाहिए दी, बिल्कुल दीदी। हमें हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो लोकल एरिया के ये शहर है, इससे खरीदना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके,
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको भी।
0: श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों अब समय आ गया है कि हम आज के इस बेहद खूबसूरत और सार्थक फोन इन कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए।
1: बिल्कुल रही, आज हमारे श्रोताओं ने जिस तरह से खुलकर अपने विचार साझा किए और वोकल फॉर लोकल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उससे यह स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति, हमारे स्थानीय कारीगरों के प्रति हमारा प्यार आज भी उतना ही गहरा है। तो इस त्यौहार सिर्फ अपने घर का दिया मत जलाइए, बल्कि अपने आसपास के हर कुम्हार, कारीगर और छोटे व्यापारी के घर में खुशियों की रोशनी फैलाइए।
0: स्थानीय सामान खरीदिए, अपनी कला पर गर्व कीजिए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाइए।
1: इसी सुंदर संदेश के साथ मैं रचना
0: और मैं हूँ ऋषि
1: लेते हैं आप सभी से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। सुनते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी उज्जैन के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का कार्यक्रम भजन संध्या में। आज की ये शाम विशेष है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की। हर वर्ष 21 सितंबर को पूरी दुनिया में यह दिवस शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो भाव रखा वह है शांति में निवेश करें, हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। श्रोताओं, शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं है। शांति हमारे जीवन में सुरक्षा, सम्मान, सहयोग और संवेदना का अनुभव भी है और शायद इसीलिए शांति की शुरुआत किसी बड़ी जगह से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से होती है। तो आज भक्ति और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर शांति का एक दीप जलाएं और प्रयास करें कि कुछ पल इन संसार की चिंताओं से दूर होकर प्रभु के स्मरण में लीन हों। आइए शुभारंभ करते हैं आज भजन संध्या का।

साथियों, अक्सर हम दुनिया में शांति खोजते हैं, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी हमारे मन से शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी हमें यही याद दिलाता है कि शांति केवल देश और समाज की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की भूमिका भी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में शांति के ऐसे सामान्य लोगों को एवरीडे आर्किटेक्ट ऑफ पीस, यानी शांति के रोज़मर्रा के निर्माता कहा। और उनका कहना था कि यह कितना सुंदर विचार है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी शांति की नींव बन सकते हैं। मन शांत हो तो छोटी सी बात भी प्रेम से सुलझ जाती है, और भक्ति हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं रहेंगी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को हम संभाल सकते हैं। प्रभु का नाम लेते हुए जब हम कुछ क्षण शांत बैठते हैं तो भीतर बहुत सा बोझ हल्का होने लगता है। कभी कभी एक छोटी सी प्रार्थना भी मन को वह सहारा दे देती है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आज अपनी प्रार्थना की शुरुआत हम स्वयं उस प्रभु से करें जो कि उज्जैन और उज्जैन में बसे महाकाल के आराध्य हैं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं यह सुंदर शिव भजन।

श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की भावना हमें यह भी बताती है कि शांति केवल बड़े समझौतों से नहीं बल्कि समुदायों और रोजमर्रा के जीवन में भी बनाई जाती है। किसी के दुख को समझना, किसी की सहायता करना और किसी से सम्मानपूर्वक बात करना, ये भी शांति की दिशा में छोटे कदम हैं। वर्ष 2026 का विषय इसी बात पर जोर देता है कि शांति हर व्यक्ति, हर जगह और हर दिन से जुड़ी है। और भक्ति में तो करुणा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना या किसी अकेले व्यक्ति को अपना समय देना, यह भी सेवा के रूप हैं। जब हम दूसरे के दर्द को अपना समझते हैं, तब मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी कम हो जाती है। और जहाँ दूरी कम होती है, वहाँ संवाद और सद्भाव के लिए जगह बनती है। आज हम संकल्प लें कि अपने आसपास किसी एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी खुशी ज़रूर लाएंगे। हो सकता है हमारी छोटी सी संवेदना किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाए। आइए श्रोताओं, प्रेम और समर्पण के इसी भाव को सुनते हैं इस सुंदर भजन में।

श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। और श्रोताओं, आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति दिवस की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में की थी। उस समय इसका उद्देश्य राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करना था। और बाद में वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 सितंबर को स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में इसे निर्धारित किया और इसे अहिंसा तथा युद्ध विराम के दिवस के रूप में भी मान्यता दी। लेकिन शांति का संदेश केवल इतिहास या संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं है, यह हमारे घरों, विद्यालयों, कार्यस्थलों और समाज के हर छोटे बड़े संबंध में जीवित रहता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भी तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें। कितना सुंदर है कि हमारी प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए मंगल कामना करती है। आइए श्रोताओं, मंगल मूर्ति से यह मंगल कामना इस भजन के माध्यम से करें।

साथियों, शांति की राह में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है क्षमा। कई बार हमारे मन की अशांति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि पुरानी शिकायतों और दुखों से पैदा होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का संदेश हमें केवल बाहरी संघर्षों को रोकने की बात नहीं कहता बल्कि संवाद, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों के महत्व की ओर भी ध्यान दिलाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी संवाद कई गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, क्षमा का अर्थ है उस घटना के बोझ को अपने हृदय से धीरे धीरे मुक्त कर देना। भक्ति हमें सिखाती है कि करुणा दूसरों के लिए ही नहीं अपने लिए भी जरूरी है। प्रभु के सामने बैठकर जब हम अपने क्रोध और अहंकार को समर्पित करते हैं तो भीतर एक नई शुरुआत होती है। आज किसी पुरानी शिकायत को याद कीजिए और उसे प्रभु के चरणों में छोड़ने का प्रयास कीजिए। मन में कहिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में द्वेष की जगह प्रेम भर दीजिए। आइए श्रोताओं, इसी भावना के साथ सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, आज इस विशेष भजन संध्या में हमने चर्चा की कि शांति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। वर्ष 2026 का संदेश भी इसी ओर ध्यान दिलाता है कि शांति के लिए हर व्यक्ति कुछ कर सकता है और किसी की सहायता करना, अपनी आवाज़ का सकारात्मक उपयोग करना, संवाद के लिए जगह बनाना और समुदाय में सहयोग बढ़ाना, ये सभी शांति की दिशा में कदम हो सकते हैं। क्यों ना आज भी हम अपने हिस्से की शांति का संकल्प लें। घर में किसी की बात धैर्य से सुनेंगे, किसी नाराज़ व्यक्ति से प्रेम से बात करेंगे, किसी ज़रूरतमंद के लिए अपना थोड़ा समय निकालेंगे और अपने शब्दों को ऐसा बनाएंगे कि उनसे किसी का मन न टूटे। क्योंकि शांति केवल बड़े मंचों पर नहीं बनती, वह हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में भी आकार लेती है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कैसी प्रार्थना जो सबके सुख और कल्याण की कामना करती है।

दारी है और इसके लिए हमें किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी, हमें आज से ही इसकी शुरुआत करनी है अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से और करुणा से। इसी मंगल कामना के साथ आपकी रेडियो साथी दृष्टि को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे भक्ति संगीत और प्रभु स्मरण की एक नई अनुभूति के साथ। आप सुनते रहिए FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूँ सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के सुमधुर सफर में। श्रोताओं, सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पर्दे पर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी सोच, उनकी बनाई हुई कहानियाँ और उनके खड़े किए हुए संस्थान पीढ़ियों तक दिखाई देते हैं। आज की शाम ऐसे ही एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता को समर्पित, नाम है ताराचंद बड़जात्या। 21 सितंबर 1992 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनके द्वारा स्थापित राजश्री की कहानी आज भी जारी है। सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में वर्ष 1933 में उन्होंने मोती महल थिएटर्स में एक प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और वहीं फिल्म निर्माण से पहले उन्होंने फिल्म वितरण को अपनी कर्मभूमि बनाया और फिर 15 अगस्त 1947 इसी ऐतिहासिक दिन उन्होंने राजश्री पिक्चर्स की स्थापना की। और श्रोताओं, इसी राजश्री प्रोडक्शन के तहत उन्होंने वर्ष 1962 में पहली फिल्म बनाई आरती। फिल्म में अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार जैसे कलाकार थे और संगीतकार थे रोशन।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरती से। गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत रोशन का। श्रोताओं, ताराचंद बड़जात्या की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती उपलब्धि थी वर्ष 2064 में आई फिल्म दोस्ती, जिसे 12वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और उस समारोह की सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह फिल्म रही। इसके बाद उपहार और पिया का घर, जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों ने रोज़मर्रा के पारिवारिक सिनेमा को उनके विषय में ढाला। पिया का घर, गीत गाता चल और वर्ष 1976 की चिच्चोर ने बिना अत्यधिक नाटकीयता के ही प्रेम और रिश्तों की एक सरल कहानी कही। और दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अखियों के झरोकों से, इन फिल्मों ने युवा भावनाओं को पारिवारिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ा। श्रोताओं, ताराचंद बड़जात्या के लिए फिल्म का मतलब सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, वे ऐसी कहानियां सुनाते जिनमें दर्शक अपने जीवन का कोई न कोई हिस्सा पहचान सकें।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म चिच्चोर से, गायक हेमलता और केजे यशुदास की आवाज़, गीतकार रविंद्र जैन और संगीत रविंद्र जैन का। श्रोताओं, इसी के साथ ताराचंद बड़जात्या की कहानी और राजश्री के सफ़र को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। शाम के 6:40 होने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें। के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकास, विरासत और आत्मविश्वास वाले नए भारत के शिल्पकार। आलेख संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन धर्मेंद्र सिंह लोधी का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। किसी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन इस बात पर आधारित होना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, नागरिकों में आत्मविश्वास पैदा हो और आधुनिकता की यात्रा करते हुए समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी जड़ों से गहराई के साथ जुड़ा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की यात्रा को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में एक तरफ आधुनिक अधोसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, नवाचार और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में नया स्थान भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन की सामाजिक दृष्टि का मूल भाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। बैंकिंग व्यवस्था से वंचित नागरिकों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने से लेकर आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, खाद्यान्न सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं तक अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने शासन और सामान्य नागरिक के बीच की दूरी को कम किया है। नारी सशक्तिकरण भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत और अधोसंरचना विकास ने उद्यमिता को नई गति प्रदान की है। सड़क, रेलवे, विमानन, मेट्रो, बंदरगाह तथा डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार ने आर्थिक विकास को भौतिक और समावेशी आधार प्रदान किया है। समावेशी विकास के माध्यम से सामाजिक विषमता को कम करने का प्रयास भी मोदी जी के शासन दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता दीर्घकालिक कठोर निर्णय लेने की राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है। जीएसटी में एक राष्ट्र एक कर की दिशा, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों की समाप्ति, डिजिटल भुगतान क्रांति, ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष योजनाएं, आधारभूत संरचना में व्यापक निवेश जैसे निर्णयों ने शासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। इन निर्णयों से भी अधिक एक महत्वपूर्ण परिवर्तन राष्ट्रीय मानस में दिखाई देता है कि भारत अब खुद को भविष्य की प्रेरक शक्ति के रूप में देखने लगा है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी के विकास और राष्ट्र दृष्टि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र सामने आता है, विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में हमारी गौरवशाली संस्कृति को राष्ट्रीय आत्मविश्वास से जोड़ा गया है। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ पुनर्निर्माण, सोमनाथ में विकास कार्य, करतारपुर साहिब कॉरिडोर और देश के अनेक तीर्थों में आधुनिक सुविधाओं के विकास ने आध्यात्मिकता और पर्यटन के बीच नया संबंध स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को विश्व पटल पर प्रमुखता से पहचान मिली है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि के सबसे बड़े केंद्र के रूप में रेखांकित हुआ है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, ओरछा, खजुराहो आदि महत्वपूर्ण स्थलों का विकास, कला और संस्कृति के अनेक केंद्रों की स्थापना और जनजातीय गौरव रेखांकित करने वाले अनेक कार्य मध्यप्रदेश की पुण्य भूमि पर हुए हैं। कहते हैं, जो राष्ट्र अपनी विरासत पर गर्व करता है वही आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण करता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब देश में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के उच्च प्रतिमानों को गढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक पटल पर दृढ़ता से रेखांकित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक यात्रा एक राष्ट्र के अपनी सभ्यतागत स्मृति, सांस्कृतिक अस्मिता और आध्यात्मिक आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने की यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने भारतीय मानस को न केवल अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाया है, बल्कि उस विरासत को वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास भी दिया है। कार्यक्रम आजकल में बस इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है भोपाल से, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प अभियान जारी है। इस अभियान की शुरुआत पर 17 सितंबर को भोपाल में रक्तदान शिविर के साथ आशीर्वाद के दीप जलाए गए। पेश है भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से मध्य प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, साथ ही रक्तदान करने वाले युवाओं और लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दिन शाम को शहर में आशीर्वाद के दीप जलाए गए। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई। वीआईपी रोड पर जलाए गए दिए लोगों की आकर्षण का केंद्र बने रहे। शहर के चौतर बंगला स्थित मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निवास पर 25 फीट ऊंचे दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में 125,000 दीप जलाए गए, जबकि निवास पर 9,125 दीपों में रोशनी की गई। सांसद आलोक शर्मा के नेतृत्व में भवानी चौक पर 5,151 दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा केकड़िया स्थित नमो उपवन में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के संकल्प को समर्पित 2047 पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने भी शाम को दीप जलाकर पीएम को बधाई दी। विधायक भगवान दास सबनानी ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी की एवं मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट।
0: वहीं विदिशा जिले में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से विदिशा जिले में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत 8 स्थानों पर नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक आयोजित रक्तदान शिविरों में 140 यूनिट रक्त संग्रहित किया, जिससे जरूरतमंद मरीजों के उपचार में लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम से नागरिकों में सेवा भावना के साथ स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विदिशा जिला मुख्यालय में हुए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में भारत की ख्याति को बढ़ाया है। भारत के प्रति दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान SETI इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता एवं नशा मुक्ति पर केंद्रित संदेश परक नाटकों का मंचन किया गया। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अतिथियों द्वारा बड़ी संख्या में हित लाभ देते हुए

0: आवश्यक उपकरणों का वितरण किया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में अशोकनगर जिले में चल रहे सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दे रहे हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला।
2: अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। अभियान का फोकस सेवा, स्वच्छता, सामाजिक सहभागिता, हितग्राही कल्याण, युवा नवाचार और नागरिक दायित्व से जुड़ी गतिविधियों पर किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ समाज में हुए बदलाव की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत 13 प्रमुख गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। अभियान का शुभारंभ आशीर्वाद का दिया के साथ किया गया। 17 सितंबर को पूरे अशोकनगर में सामूहिक दीप प्रज्वलन किया गया। जिला मुख्यालय पर नगर पालिका परिषद द्वारा आइकॉनिक स्थल चिन्हित किए गए थे, जहां आशीर्वाद के दीयों का प्रज्वलन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीणों एवं नगरीय क्षेत्रों में शासकीय सेवकों द्वारा पीले चावल एवं आमंत्रण पत्र देकर शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। अभियान के अंतर्गत बच्चों के सपनों का भारत में चित्रांकन सहित अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नवो सेवा गाथा, नुक्कड़ नाटक, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगन का महोत्सव, आंगन मिलन सेवा और कहानी बदलाव के जैसे कार्यक्रम भी होंगे। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान और सरकार आपके द्वार जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। वहीं सेवा मेरा योगदान के तहत रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, स्वच्छता और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं और स्टार्टअप के साथ राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज भी प्रस्तावित किए गए हैं। 17 अक्टूबर को समापन जनसेवा महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट के रूप में होगा। इसमें जनप्रतिनिधि समागम भी प्रस्तावित किया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस देश में जनसेवा, राष्ट्र सेवा से आमजन को जोड़ने के लिए भागीरथी प्रयास सुनिश्चित होगा। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले में आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी सुनिए हमारे अनूपपुर संवाददाता अजीत कुमार मिश्रा से।
3: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत अनूपपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले भर में ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर जन्मदिन की खुशियों को साझा किया। जिले में लगभग 5 लाख दीप जलाए गए, जिससे गाँवों और शहरों में उत्साह का माहौल नजर आया। अभियान का भव्य समापन मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित रामघाट पर हुआ। यहाँ 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी में रामघर जगमगा उठा। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद महाआरती की गई। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अमरकंटक रामघाट पर आयोजित कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, चढ़ोल संसदीय क्षेत्र के सांसद माद्री सिंह, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और एवं पूर्व विधायक रामलाल रोतेल सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता उपस्थित थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर महाआरती की सहभागिता की। भाजपा जिला कार्यालय अनूपपुर को दीपों से सजाया गया। इसके साथ ही 16 मंडलों के बूथ स्तर तक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, भाजपा जिला पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान करीब 1 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की। हितग्राहियों ने अपने पक्के आवासों के बाहर दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। हितग्राही परिवारों ने कहा कि जिले में दीप प्रज्वलन के दौरान सेवा, समर्पण और जन भागीदारी का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर रत्नाकर झा ने बताया कि जिले में आयोजित सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार के जन उपयोगी कार्यों को भी अमली जामा पहनने का कार्य किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
1: श्रोताओं, ये तो रही बात प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित सेवा संकल्प अभियान की। अब प्रादेशिक समाचार दर्शन में बात करते हैं बैतूल जिले की, जहां पर विद्यार्थियों के आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2026 में संचालित विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान में बैतूल प्रदेश के शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव।
4: विद्यार्थियों के आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अगस्त 2026 में संचालित विद्यार्थी के लिए आधार अब विद्यालय के द्वार अभियान में बैतूल प्रदेश के शीर्ष 5

0: प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहा है। जिले ने अभियान के तहत 10.9% उपलब्धि दर्ज की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मध्य प्रदेश निदेशक श्री सुमित मिश्रा ने इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाणे को पत्र भेजकर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने बैतूल जिले की पूरी टीम, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग और जिला ई गवर्नेंस के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया है। श्री मिश्रा ने कहा कि अगस्त माह के दौरान अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बैतूल का शीर्ष 5 जिलों में स्थान बनाना जिला टीम के समन्वित और प्रभावी प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे के नेतृत्व में बैतूल जिला अभियान के आगामी दिनों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखेगा। विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के आधार में निर्धारित आयु पर आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट को गति देना है। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर ही आधार संबंधी प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने इस उपलब्धि का श्रेय अभियान से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और मैदानिक अमले के सामूहिक प्रयासों को दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से डॉक्टर मयंक भार्गव।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है आगर मालवा जिले से, जिसका चयन स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इस बारे में हमें और अधिक विस्तार से बता रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
2: स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित आगर मालवा जिले में भी MPACDC द्वारा MPE सेवा सारा एवं संपदा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में जिले की चयनित ग्राम पंचायतों शिवगढ़, महुड़िया, भीमाखेड़ा, निपानिया, हनुमान, गेलाना, खनोटा, देहरी गुजर, करकड़िया, अमरकोट में प्रत्येक सप्ताह 3 दिवसीय शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इन ग्राम पंचायतों के 19 ग्रामों के 2135 निजी प्लाट के अधिकार अभिलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा, जिसमें सर्वाधिक 335 प्लाट ग्राम निपानिया हनुमान तथा सबसे कम 10 प्लाट ग्राम त्रिलोकपुरा में हैं। तहसीलवार जानकारी के अनुसार आगर मालवा में 374, बड़ौद में 663, सुसनेर में 493, नलखेड़ा में 357 एवं सोयत कला में 248 निजी प्लाट की जानकारी प्राप्त हुई है। शिविर स्थलों पर वाईफाई, इंटरनेट, विद्युत व्यवस्था, पेयजल सहित समस्त आवश्यक सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री अर्पिता राय को निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। योजना का ग्राम सभा के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर समस्त सक्षम अधिकारियों का HSM पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं उमरिया जिले का, जहां पर फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी से।
3: उमरिया जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत जिले भर में 4,303 हितग्राहियों के लिए 3,635 भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें अब रजिस्ट्री के जरिए मूर्त रूप दिया जा रहा है। राजस्व अधिकारी विक्रेता के रूप में और हितग्राही क्रेता के तौर पर रजिस्ट्रार कार्यालय में भूमि की रजिस्ट्री संपादित कराएंगे। और योजना की खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में हितग्राहियों को किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रजिस्ट्री के बाद हितग्राही को स्थायी अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद हितग्राही प्राप्त भूमि अधिकार पत्र से कई लाभ ले सकता है, जिसमें बैंक गारंटी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं शामिल है, जिसके तहत हितग्राही मूलक योजनाओं से हितग्राही सीधे लाभान्वित हो सकेगा।
1: उमरिया की रिपोर्ट के बाद अब प्रादेशिक समाचार दर्शन की आज की अंतिम रिपोर्ट में बालाघाट जिले के बिरसा बहर गांवों में स्वास्थ्य और जनकल्याण अभियान पर जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
4: बालाघाट जिले के बिरसा विकास खंड के 57 गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और पोषण को लेकर प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। कुंडेकशा, अडोरी, कोरका, बोंदारी, घुम्मुर, मछुरदा और मातला समेत आसपास के गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग और उपचार कर रही है। अब तक 40,820 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 6,701 मरीज अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 587 मरीजों का अस्पताल में जबकि 6,000

0: 83 मरीजों का उपचार घर पर किया गया है। निगरानी और उपचार के लिए 57 सर्वे टीमों के साथ 18 मेडिकल ऑफिसर, 12 एम्बुलेंस और 6 पीएम जनमन ANMMU की सेवाएं लगाई गई है। स्वच्छता और कीट नियंत्रण के तहत 54 गांवों के 6,065 घरों में कीटनाशक का छिड़काव और 44 गांवों के 8,610 घरों में फॉगिंग कराई गई। पेयजल व्यवस्था के तहत 37 हैंडपंपों का क्लोरिनेशन किया गया। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और पोषण सेवाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। अब आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
4: This strategic partnership.
5: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
3: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। श्रोताओं, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर सुनिए अपनी बोली मालवी में कार्यक्रम माटेरी बात। रात 8 सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात 8:35 पर आकाशवाणी उज्जैन से सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात 8:45 पर सुनिए समाचार संध्या दिल्ली से अनुप्रसारित। रात 9 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम न्यूज एट 9। रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले। रात 10 भोपाल से अनुप्रसारित 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात 10:20 पर आप सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित आपकी फरमाइश। रात 11 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात 11:10 से सुनिए FM गोल्ड के कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए आपको कल दिनांक 22 सितंबर सन 2026 मंगलवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह ठीक 5:50 पर प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। प्रातः 6 दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित होंगे। सुबह 6:05 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए कार्यक्रम वंदनवार। सुबह 6:35 पर आप सुन सकेंगे रामचरित मानस गान और ठीक 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। कल प्रातः 7 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर सुनिए आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से अनुप्रसारित प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ठीक 8 सुनिएगा दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। कल 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज और सुबह ठीक 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से फिल्मी संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। कल सुबह 9:30 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10 कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कल दिन में 11 विविध भारती मुंबई से सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोपहर 3 विविध भारती मुंबई से सुनिए सखियों का विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। दोपहर 4 सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कल शाम 5 संध्याकालीन सभा में आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 सुनिए भक्तिमय कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल। कल शाम 7 दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 7:21 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज मालवी समाचार के साथ। कल रात 8 भोपाल से अनुप्रसारित विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आप सुन सकेंगे। रात 8:35 पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुनिए फिल्म संगीत। रात 8:45 पर दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार संध्या। रात 9:00 कार्यक्रम न्यूज एट 9। रात 9:15 पर सुनिए उर्दू समाचार। रात 9:30 पर भोपाल से अनुप्रसारित उर्दू कार्यक्रम कहकशा। रात 10:00 भोपाल से अनुप्रसारित 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात 10:20 पर सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित फिल्म संगीत। और रात 10:30 पर राग रजनी। कल रात 11:00 दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे। और रात 11:10 से आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है और थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के शासक के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास जिले के हाट पिपलिया में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया और कल बेंगलुरु में टेलीकॉम कंपनियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री ने शाही परिवार और दुबई की जनता के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाला टीवी कमर्शियल जारी करेंगे और लखनऊ और देहरादून में एनसीबी के नए जोनल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे। सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सीहोर जिले के एक गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रूपये और बेहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रूपये की मांग की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवास जिले के हाट पिपलिया क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। 32 किलोमीटर लंबा राजोदा केलोड डबल चौकी मार्ग हाट पिपलिया को देवास, इंदौर और बैतूल से जोड़ेगा। ये सड़क डबल चौकी में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलेगी। इससे करीब 25 गांव के 70,000 ग्रामीणों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने सुखलिया से टिगरिया मार्ग बनाने की घोषणा भी की। 12 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। रीवा में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि रीवा में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। त्योथर, लोनी, सिरमौर और सिमरिया की परियोजनाएं पूरी होने पर करीब 1,35,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
3: हमारे एक किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
2: केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
4: इसमें हम लोग किसानों को काफी खुशी है और ये योजना बहुत लाभदायक है।
2: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बेंगलुरु के उद्योग जगत से संवाद करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल बेंगलुरु में टेलीकॉम कंपनियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होंगे। बैठक में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। बैठक में टेलीकॉम उपकरणों के साथ रिसर्च इनोवेशन और इससे जुड़े उद्योगों के विस्तार पर भी चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री बेंगलुरु के क्वालकॉम आरएनडी सेंटर समेत कुछ तकनीकी संस्थानों का भी दौरा करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने 24 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दिन छतरपुर सतना दमोह डिंडौरी सिवनी छिंदवाड़ा पांडुना नर्मदापुरम बैतूल और हरदा में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में अब तक औसतन 33.9 इंच पानी गिर चुका है जो मानसूनी कोटे का करीब 91% है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 और 39 में चिन्हित स्थलों पर पूर्व में विशेष सफाई अभियान चलाया गया था। अनूपपुर में गांधी जयंती के अवसर पर 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह के तहत गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। असीहोर कृषि उपज मंडी में नई सोयाबीन की फसल की आवक शुरू हुई। बैतूल कलेक्टर ने आज आयोजित समय सीमा की बैठक में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। मंदसौर में विश्व अल्जाइमर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी में कल जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में स्थित बालाजी परिसर में आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने अटल जी के राष्ट्र निर्माण सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10

0: इतनी रात में SMS? KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
4: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। शाम के 7:21 होने को हैं और मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का। समय हो चला है मालवी बोली और निमाड़ी गीतों से सजे कार्यक्रम माटेरी बात का। प्रस्तुत करता है दिया उमठ।

राम राम साहब, मैं दिया उमट आज आपकी अपनी ग्राम सभा में माटी री बात में आप सभी लोग और को स्वागत है। सब मजा में तो हो, कैस्तर कई दिन कटी रहा है, या यूं कहे यूं कूं कि कैस्तर कई मजा चाली रहा है। माटी री बात में माटी की मने की गांव की, और गांव में जैसा लोकगीत गाए हैं वी भी, और साथ ही साथ जो तीज त्यौहार मनाए हैं वी भी, ओके भी हम बात करेंगा। पर सबसे पहले अपनी ग्राम सभा में मालवी समाचार ने उका बाद में अपन अपनी गांव की ने आज की बात करांगा।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दिया उमट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास जिला का हाटपिपलिया क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनवा वाली सड़क को भूमि पूजन करेगा। करियो आगर मालवा जिला में नमो सेवा अभियान का तहत जिला मुख्यालय का अलग अलग स्थान होर पे नुक्कड़ नाटक होया। मौसम विभाग ने 24 सितम्बर से कई जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी करियो है। मुख्यमंत्री सड़क भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास जिला का हाटपिपलिया क्षेत्र में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनवा वाली सड़क को भूमि पूजन करियो। 32 किलोमीटर लंबा राजोदा केलोर डबल चौकी मार्ग हाटपिपलिया के देवास, इंदौर और बैतूल से जोड़ेगा। यह सड़क डबल चौकी से इंदौर में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलेगी। एक करीब 25 गाँव होर के 70,000 ग्रामीण के फायदे होएगो। मुख्यमंत्री ने सुखलिया से टिगरिया मार्ग बनवा की घोषणा भी करी। 12 किलोमीटर लंबी यह सड़क करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। बलराम कृषि महोत्सव। रीवा में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित करियो गयो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़ के किसान होर से संवाद करियो। उनने बतायो कि रीवा में सिंचाई सुविधा होर की तेजी से विस्तार करियो जा रियो है। त्योंथर, लोनी, सिरमौर और सेमरिया की परियोजना होर पूरी होवा पे करीब 1,32,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई मिलेगी। प्राकृतिक खेती के बढ़ावो देवा का लिए जिला में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को क्लस्टर का रूप में विकसित करियो जा रियो है। प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र में किसान होर के नई तकनीक को प्रशिक्षण दियो जा रियो है। बेंगलुरु टेलीकॉम सीएम। प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ावा देवा का लिए राज्य सरकार बेंगलुरु का उद्योग जगत से संवाद करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बेंगलुरु में टेलीकॉम कंपनी और निवेशक का साथ इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में शामिल होएगा। बैठक में ग्वालियर में विकसित करिया जा रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावना होर पर चर्चा होगी। बैठक में टेलीकॉम उपकरण होर का साथ रिसर्च इनोवेशन और ऐसे जुड़े उद्योग होर के विस्तार पे भी बात होगी। अन्य दौरान मुख्यमंत्री बेंगलुरु का क्वालकॉम R&D सेंटर समेत कई तकनीकी संस्थान को दौरा भी करेगा। मध्य प्रदेश भवन विकास बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने निगम की आय बढ़ावा का लिए जल्द रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी बनावा का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री निवास में बन रहा करीब 26 करोड़ रुपया का जनमन सभागार के जनवरी 2027 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहला पूरा करवा के निर्देश दिया गया है। बैठक में 25 करोड़ रुपया तक की निविदाओं के मंजूरी देवा को अधिकार प्रबंध संचालक और अधिकार समिति के देवा को प्रस्ताव की भी मंजूरी मिली। दिव्यांग बच्चे होर को भुगतान। प्रदेश में दिव्यांग बच्चा होर की संस्था होर के भुगतान अब जिला स्तर पर होएगो। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक आदेश जारी करियो है। अभी तक यह प्रक्रिया भोपाल केंद्रित थी। कई मामला होर में निधि उपलब्ध होवा का बावजूद भुगतान महीनों तक लंबित रियो। एक रोकवा का लिए कलेक्टर और विभागीय अधिकारी होर की जिम्मेदारी तय करी गई। इन्हीं व्यवस्था से 20 शासकीय और 23 शैक्षणिक अशासकीय संस्था होर के 3,410 विद्यार्थी जुड़िया है। आगर मालवा जिला में नमो सेवा अभियान का तहत जिला मुख्यालय का अलग अलग स्थान होर पे नुक्कड़ नाटक होया। एक अजरिया केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना होर स्वच्छता सेवा भाव और जन भागीदारी को संदेश दियो गयो। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जिला अस्पताल का लिए नई हेमोडायलिसिस मशीन की स्वीकृति दी है। मशीन आवा से गुर्दा रोगी होर के जिला में ही डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। झाबुआ जिला में कल सेवा संकल्प अभियान का तहत बड़नगर और वाराणसी से निकली सेवा संकल्प यात्रा पहुंची। पिटोल का रास्ता जिला में आई यात्रा की महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और जनप्रतिनिधि होर से ने स्वागत करियो। कालाखूंट में चौपाल संवाद होयो जिनमें शासकीय योजना होर के हितग्राही होर से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन का 25 साल पे आधारित वीडियो दिखायो गयो। इंदौर का शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में कल नशा मुक्त युवा अभियान का तहत राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित करियो गयो। यो कार्यक्रम विकसित भारत का लिए नशा मुक्त युवा 100 सप्ताह अभियान का अंतर्गत होयो। एमए युवा होर ने नशा से दूर रहवा और स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली अपनावा की सामूहिक संकल्प लियो। मौसम को हाल। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहला बारिश को दौर रहेगो। मौसम विभाग ने 24 सितंबर से कई जिला होर में भारी बारिश को अलर्ट जारी करियो है। इन दिन छतरपुर, सतना, दमोह, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में अब तक औसतन
33.9 इंच पानी गिर चुकी है, जो मानसून कोटा का करीब 91% है। मालवी समाचार समाप्त।

मालवी समाचार का बात सुनो। ग्राम सभा में माटेरी बात में निमाड़ी लोकगीत, जैकी शुरुआत हम हमेशा लोकगीत का साथ करा है, तो आपका लिए प्यारो सो लोकगीत।

तो आपने सुने यो प्यारो सो गीत, अब एक बाद आप सुनोगा कि किस तर कई संजा होइए, पर ओका भी पेला हूँ आपके बताऊँ, बरसात में का बाद पशु होर्ग में होवा वाली बीमारी से बचाओ। जैसा कि बरसात का बाद पशु होर में नमी, कीचड़, गंदो पानी और मच्छर मक्खी होर की संख्या बढ़वा की कई बीमारी होर को खतरों बढ़ी जाए है। ग्राम सभा आकाशवाणी में आपके हमेशा ऐसी ऐसी चीज बताई है जिसे आप पशु होर की घनी सारी फिक्र कर सको है, घनी सारी जानकारी आपके मिली सके है। पशुशाला साफ और सूखी रखो, गोबर गंदो पानी और कीचड़ नियमित रूप से हटाओ, फर्श पे पानी जमा मत होवा दो और पशु होर के बैठवा की जगह सूखी रखो। साफ पानी पिलाओ, बारिश का दौरान दूषित या रुके हो पानी पशु होर के मत पिलाओ। घना सारा लोग करे कि बारिश में जो पानी पड़े है वो इकट्ठो कर ले, तो असो पानी हमारे पशु होर के नहीं पिलानो है। टीकाकरण समय पे करवाओ, पशु होर के गलघोंटू, लंगड़ी, खुरपका, मुंहपका जैसे संक्रामक बीमारी होर से बचावा के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह का अनुसार टीकाकरण करवाओ। कीड़ा और परजीवी होर से बचाव करो, बरसात का बाद बाहरी परजीवी जैसा किलनी, जू, मच्छर बढ़ सके हैं। पशु होर की नियमित जांच करो और पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार करवाओ। चारों सुरक्षित रखो, गीला सड़ा या फफूंद लगियो चारों पशु होर के मत दो। हरा चारों साफ जगह से लाके उचित मात्रा में खिलाओ। बीमार पशु के अलग रखो, घनी सारी बीमारी होर पशु होर में हो जाइए जगह बारा में हमारे नी मालम पड़े है या थोड़ा बहुत लक्षण दिखे तो उनके पहला डॉक्टर के दिखाओ, ने उन पशु होर के अलग बांधो, उनके खावा पीवा की चीज अलग रखो। एक साथ पशु होर के नहीं करना चाहिए, जैसे बीमारी संक्रामक रहे तो वह फैले है। किन्हीं पशु में बुखार, खानो छोड़नो, सुस्ती, लगातार खांसी, दस्त, मुंह या पैर होर में घाव जैसा लक्षण दिख रहा है तो उके दूर पशु होर से अलग रखो और पशु चिकित्सक से संपर्क करो। पशुशाला में हवा और धूप का प्रबंध करो, नमी कम करवा के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन रखो। बारिश रुकवा पे पशुपालन पे में धूप आवा दो, बाढ़ या जल भराव वाला क्षेत्र होर में विशेष सावधानी रखो। लंबा समय तक जमियो पानी में पशु होर के खड़ों मत रेवा दो और गंदा पानी में चरवा से बचाओ। तो आपने सुनी या पशु होर की किस तरह आप देखभाल कर सको है, किस तरह की पशु होर के सुरक्षित रख सको है, एक बात आज है संजा से मांडना तक जो मैंने एक विषय लियो है छोटो सो, जो गाँव होर में घड़ो ही मांडी जाइए, मांडना मांडिया जाइए, संजा मांडी जाइए, तो ओको महत्व कई है, ओका महत्व का बारा में आप थोड़ा सो जानोगा। तो ओका महत्व का बारा में बताने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी है जो आपके घनी सारी जानकारी उनने

0: पता ही है तो वाह आप सुनो।
1: आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दिया उमट और आज हमारे बीच में आपकी अपनी ग्राम सभा में है डॉक्टर राजेश रावल जी। आज हम राजेश रावल जी से चर्चा करेंगे संध्या जिसे कहा जाता है, संध्या जिसे कुछ स्थान पर कहा जाता है, संध्या के महत्व पर, संध्या लोकोत्सव का यहाँ पर मूल रूप से कहाँ कहाँ कब मनाया जाता है और विभिन्न विभिन्न चर्चाएं। राजेश जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि संध्या लोकोत्सव का यहाँ पर्व मूल रूप से कहाँ कहाँ और कब से मनाया जाता है।
2: जी जी जी पहले तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
1: जी।
2: और आपने बहुत ही विशेष इस पर्व को अपने आकाशवाणी में स्थान दिया, इसके लिए भी आकाशवाणी का धन्यवाद
1: जी।
2: ये लोक पर्व वैसे तो ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से मनाया जाता है और बालिका ऐसा नहीं है कि शहरों में इसे नहीं मनाया जाता, शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में इसे मनाया जाता है आज भी। और संध्या लोकोत्सव का जो पर्व है ये मूल रूप से मालवा में, निमाड़ अंचल में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में भी इसे मनाया जाता है
1: जी।
2: ये है कि अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नाम से थोड़ा सा चेंज है, जैसे अपन मालवा में संध्या बोलते हैं, निमाड़ में आप जाएंगे तो सांझी बोलेंगे
1: जी।
2: या महाराष्ट्र में संया करके इसका थोड़ा सा नाम, बाकी जो उसकी परंपरा है उसको जो मनाने का तरीका है, गीत थोड़े से अलग हो सकते हैं, कुछ में महाराष्ट्र का लुक आएगा मराठी का तो कुछ में अपने निमाड़ी का भी उसमें सुनने में आता है
1: जी।
2: तो ये काफी विस्तार है इस व्रत का और मूल रूप से सभी जगह से मनाया जाता है
1: जी जी राजेश जी, संध्या लोक पर्व बालिकाएं क्यों और किस रूप में मनाती है? और मुझे जहां तक ज्ञात है कि कुंवारी बालिकाएं संध्या लोक पर्व को बड़े ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाती है।
2: बिल्कुल, छोटी छोटी बालिकाएं इस व्रत को मनाती है और शायद इसके पीछे ये रीजन रहा होगा कि जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए जाए 16 या 17 साल की उम्र में
1: जी।
2: तो तब तक वो उस पर्व के माध्यम से भी परिपक्व हो जाती है क्योंकि उसके जो गीत है वो सभी बाल मन को छूने वाले गीत है
1: जी।
2: बच्चों को इसमें दो तीन तरह से बालिकाओं को मदद मिलती है। एक तो ये है कि वो जैसे हम पितरों का पूजन करते हैं घर में, श्राद्ध में ही पूजा जाता है पितरों को, तो बालिकाओं के मन में बचपन से ही अपने पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो, वे माता पिता सास ससुर माता पिता के साथ तो रहती है जब तक कुंवारी रहती है
1: जी।
2: लेकिन जब शादी के बाद वो जब एक दूसरे परिवार में जाएंगी तो उसका क्या ससुर क्या है, सास क्या है, ननद क्या है, देवर क्या है, देवरानी क्या है, ये सारे भाव उसके अंदर धीरे धीरे जन्म लेते हैं गीतों के माध्यम से। और दूसरा ये कि घर कोई व्रत के लिए कोई बाहर से कोई सामग्री लाई नहीं जाती है, सब घर में से उपलब्ध होती है, गाय का गोबर है या जो आसपास की जो प्रकृति है उसके फूल है उनको ला करके सुनना, फिर बाल मन के गीत होते हैं उन गीतों को दोहराना, पूजन करना, मतलब कुल मिलाकर अपनी परंपरा से उस बालिका को जोड़ने की तैयारी पूरी संध्या लोकोत्सव में दिखाई देती है
1: जी। संध्या को संध्या को सांझ जो होती है, जो शाम पड़ती है, इसी समय क्यों मनाया जाता है? इसी समय आकृतियां बनाती हैं बालिकाएं, तो इसके पीछे कोई कारण है या कोई लोक कथाएं हैं? आप हमें थोड़ा सा बताइए।
2: एक तो इसको पार्वती के रूप में भी देखा जाता है, माता पार्वती ने जैसे भगवान शंकर को पाने के लिए तप या व्रत वगैरह जो किए थे उसी रूप में संध्या को भी देखा जाता है। सांझ का समय भौतिक रूप से भी अपन देखें तो किसानी से जुड़े हुए लोग रहते हैं क्योंकि हमारा तो कृषि प्रधान देश है
1: जी।
2: तो अधिकांश जो व्रत उत्सव होते थे जैसे सत्यनारायण की कथा भी होती है तो उसमें भी लिखा है कि संध्या के समय हो
1: जी।
2: या ये भी जो व्रत है ये भी संध्या के समय ही है, ऐसे बहुत से व्रत हैं लोक पर्व में जो सांझ को, क्योंकि हम हमारे खेती किसानी के काम से जो व्यस्ततम हमारा समय है उससे निकाल करके हम इन व्रत उत्सव को अच्छे से दे पाए। फिर ये सूर्य से भी जुड़ा हुआ है और हमारी जो परंपरा होती है कि शमसो मा ज्योतिर्गमय, हम मतलब एक प्रकाश की ओर जाने का हमारा भाव होता है तो उसको लेकर के भी शाम के समय दीपक लगाना, संध्या को बनाना, उसमें चांद तारे ये सभी दिखाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है हम प्राकृतिक रूप से भी जोड़े, उसके साथ आध्यात्मिक रूप से भी जोड़े, फिर उसको धार्मिक रूप से भी जोड़े तो कहीं ना कहीं इस व्रत के माध्यम से बच्चों में आध्यात्मिकता भी आती है
1: जी।
2: संध्या के समय अगर उसको लिया जाए तो सांझ का जो समय होता है जिसको हम गोधूली

0: भी बोलते हैं,
1: जी
0: बहुत सारे, क्योंकि ग्रामीण अंचल के व्रत पूर्व उत्सव है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमारे आंचलिक परिवेश से भी जोड़ना, प्लस क्योंकि इसमें गाय के गोबर का भी उपयोग होता है तो वो तो शाम को ही मिलेगा। उसी प्रकार इसमें एक गीत गाया जाता है, कहाँ से लाऊं भाई हरे हरे गोबर।
1: जी
0: ये जो अभी का जो महीना है हमारा, जो भाद्रपद और अश्विन का जो लगेगा, इस दौरान हरी घास ज्यादा गायें खाती है, तो जो गोबर का जो कलर होता है वो भी हरे रंग का ही होता है, इसलिए उन गीतों में कहीं ना कहीं वो हमारी जो वैज्ञानिकता भी छिपी हुई है, आध्यात्मिकता भी छिपी हुई है, और धार्मिक निष्ठा तो उसमें है ही। तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं पर्वों को इन उद्देश्य से भी देखा जाता है। तो संध्या के समय मेरे हिसाब से तो यही है कि शाम के समय फुर्सत का टाइम भी होता है, बच्चों के साथ माँ बाप भी इसमें सम्मिलित होते हैं, गीत गवाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, उनके लिए सामग्री जुटाते हैं, तो कहीं ना कहीं संध्या का भी इसमें महत्व है।
1: जी राजेश जी, यहाँ व्रत प्रदेश के और किन हिस्सों में मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्योंकि अभी आपने बताया कि यहाँ व्रत सिर्फ मालवा में ही नहीं अपितु अलग-अलग राज्यों में भी अलग-अलग नाम से मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि मालवा निमाड़ की संस्कृति तो करीब करीब एक ही है,
1: जी
0: सिर्फ हम देखें तो सिर्फ माँ नर्मदा या देवा का तट ही हम मालवा निमाड़ की संस्कृति को बांटता है, बांटता नहीं है मतलब हम दो हिस्सों में उसको कर लेते हैं कि इधर का भाग मालवा का है, उधर का निमाड़ का।
1: जी जी
0: हालांकि मालवा निमाड़ की अधिकांश, चाहे गंगोर व्रत हो या दूसरे जो भी व्रत है, करीब करीब सभी समान है।
1: जी
0: इसके साथ ही राजस्थान से जुड़ा हुआ है, कई बार गीतों में आता है कि संध्या भाई को सासरो आगर में, जो
1: जी
0: हमारा आगर मालवा है, तो
1: जी
0: वहां तक उस, क्योंकि लोकगीतों में या लोक की जो गीतों में उसमें उनका इतिहास भी छुपा होता है, संध्या
1: जी
0: भाई को सासरो आगर में कदम पधारिया गड़े, मतलब तो थोड़ी देर में हम वहां जा करके पहुंच गए। तो इस
1: जी
0: प्रकार से इसमें जो है, इसका इतिहास तो काफी पुराना है, क्योंकि जब हम पार्वती को इसमें जोड़ते हैं या सूर्य नारायण की उपासना से इसको जोड़ते हैं, तो इसका जो महत्व है वो 700 700 सनातन से हो जाता है।
1: जी
0: फिर इसमें जो मांडने का जो नियम है वो भी इसका करीब करीब सभी जगह एक जैसा है, जैसे पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है व्रत,
1: जी
0: और अमावस्या को किला कोट के साथ, तो किला कोट अपन जानते हैं किला किसको बोलते हैं,
1: जी
0: जो राजा
1: जी
0: महाराजाओं के समय में, राजपूताने के समय में जो किले होते थे, बड़े बड़े गढ़ होते थे,
1: हाँ
0: और आसपास जो कोट होते थे, तो उसी तर्ज पर इसका नाम किला कोट रखा गया। तो हम मान लें कि ये राजस्थान से भी, इसको मान लें कि राजस्थान से आया हुआ व्रत है, ये राजस्थान की परंपरा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो आकृतियां बनाई जाती है, वीर पुरुषों की भी आकृतियां बनाई जाती है, पितरों की भी बनाई जाती है, तो हाथी घोड़े ये सब इसमें बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वर्ग की जो परंपरा रही है, राजस्थान रहा है, तो
1: जी
0: वहां से भी कई लोग, विद्वान लोग इसको मानते हैं कि राजस्थान से परंपरा आई होगी। मीरा से भी जोड़ करके इसको देखा जाता है, जो भक्त मीरा हुई,
1: जी
0: काफी इसका विस्तार भी है, और लोक पर्व की अपनी मान्यताएं भी हैं, और इन क्षेत्रों में भी उसी तरह से इसको मनाया जाता है। जैसे पूनम का पाटला, पूनम के दिन पाटला बनाती है, आकृतियां जो बनाती है गोबर से,
1: जी
0: दूसरे दिन जब उसको मिटा देती है, फिर बिजोरा, बिजोरा राजस्थान में बिजोरा बोलते हैं, अपने अपने इधर पंखा बोलते हैं उसको मालवी में,
1: जी
0: तो पंखे की आकृति बनाई जाती है, तीसरे दिन घेवर बनाए जाते हैं, चौथे दिन चौपड़ बनाई जाती है, जो राजा महाराजा पहले चौपड़ खेलते थे। तो
1: जी
0: कहीं ना
1: जी
0: कहीं राज संस्कृति से या हमारे राजा महाराजाओं के टाइम से भी इस व्रत को देखा जाता है।
1: राजेश जी, कहा जा सकता है कि संजा सिर्फ मालवा, सिर्फ मध्य प्रदेश का त्योहार ना होकर देश के कई प्रदेशों की
0: बिल्कुल
1: संस्कृति, कई प्रदेशों के इतिहास को खुद में समाहित है, खुद में समाहित करती है, और मांडना जिसे बोला जाता है, आकृतियां जिसे बोला जाता है, जिसे हम संजा बनाते हैं, उसमें वो प्रदर्शित होती है।
0: बिल्कुल
1: जी राजेश जी, एक और प्रश्न यहाँ है कि वर्तमान संदर्भ में इस व्रत अथवा पर्व का कितना महत्व है, और यहाँ पर्व लोक मान्यता, लोक कथाओं में ही है, या इस पर्व का विज्ञान की दृष्टि पर कितना खरा उतरता है?
0: हमारे जितने भी सनातन के जितने भी पर्व हैं,
1: जी
0: वो बीच में लोगों ने उनको कहा कि अंधविश्वास है ऐसा, मतलब इनको मना लेते हैं अंधविश्वास के तौर पर, या इनका कोई रीजन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकता बढ़ी और वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करना शुरू किया, तो
1: जी
0: उनको लगा कि ये जितने भी सनातन के पर्व है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। मैं मानता हूँ कि 100% 100% उस पर खरे उतरते हैं।
1: जी
0: जैसे कि बालिकाओं का जो समय होता है, उनका जो 3 4 वर्ष के बाद वो बनाना शुरू कर देती है, और वैसे तो दो दो तीन तीन साल की बच्चियां भी जो अपनी बड़ी बहनें होती है उनके साथ मानने मानती है,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक स्तर पर विकास हो, तो कहाँ से कूची लाएंगे, कहाँ से कलर लाएंगे अगर उनका मानसिक विकास करना है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो उस कलर के फूल भी लाएंगे, उसमें चिपकाएंगे, तो उसके रंगों से भी जुड़ेंगी बालिकाएं। उसके साथ ही गोबर का जहां तक मिट्टी से भी बना सकते थे, लेकिन गोबर जो है अभी अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो इसमें कई लोग कहते हैं मिट्टी के गणेश इको फ्रेंडली, हम कहते हैं इको फ्रेंडली गणेश, यानी जो मिट्टी के बने हुए गणेश है वो इको फ्रेंडली यानी मित्रवत है
1: जी।
0: लेकिन गोबर जो है, यदि गोबर के आप गणेश जी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इको गार्जियन
1: जी,
0: मतलब वो आपको पूरी तरह विकसित करता है। गोबर का जो तत्व है उसमें विषाणुओं को नष्ट करने की ताकत है और जो जीवाणु है उनको जीवित रखने की उसमें क्षमता होती है। हम जब गोबर का लेप अपने हाथों में या शरीर पर करते हैं तो हमारे शरीर के विषाणु नष्ट होंगे, लेकिन जो हमारे जीवाणु है जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं उनको जरा सा भी गोबर से नुकसान नहीं होता है। तो जब बच्चियां गोबर से बनाती है तो उनके हाथ भी गोबर में होंगे, उसकी जो गंध है वो भी श्वास के माध्यम से शरीर में जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो उसके अंदर जो विकार है या जो भी शारीरिक मान लें या जो भी विकार होते हैं वो उससे नष्ट होते हैं
1: जी।
0: अब हुआ ये है कि हम गोबर की जगह धीरे धीरे वो जो पन्ने चिपकाने लग गए हैं बने बनाए, तो वो कहीं ना कहीं विकृति भी उसमें आई है। लेकिन मूल रूप से इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन तो यही है कि गोबर फिर उसके बाद प्रकृति का स्पर्श करती है बालिकाएं
1: जी,
0: हमारे बाड़े में या हमारे खेत में कौन से फूल उस समय में है, उनकी कौन सी पत्तियां हैं, उनको चुन करके लाना, उन फूलों को कौन कौन से रंग के फूल कहाँ लगेंगे, मतलब एक रंगों का भी उनको ज्ञान होता है
1: जी।
0: कि कहाँ हरा हरा फूल पत्ता लगेगा या कहाँ पर लाल लगेगा, तो ये सारी चीजें उसमें वो सीखती भी हैं। और कहीं ना कहीं जब गाती हैं गीत तो उनके गाने का भी रियाज होता है। गीत हम गीत संगीत कहाँ से सिखाएंगे उसको, तो बच्चे इस पर्व के माध्यम से जहाँ चित्रकला सीखते हैं वहीं गायन कला भी सीखते हैं। और कई बार बच्चियां जो जोड़ लेती है तो कवि का भाव भी उसमें आता है कि कई बार वो अपने नाना जी का नाम जोड़ लेंगी, भाई का नाम जोड़ लेंगी, अपने ससुर का नाम जोड़ लेंगी, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो काव्य से भी जुड़ती है, संगीत से जुड़ती है, कला से जुड़ती है और प्रकृति से भी जुड़ती है
1: जी। राजेश जी, वर्तमान संदर्भ में संध्या लोक पर्व को किस दृष्टि से देखा जाता है और इसमें कौन कौन सी विसंगतियां आपको देखने को आ रही है, क्योंकि आपको संध्या के बारे में जो आपने हमें बताया आपको बहुत सारा ज्ञान है, तो आपको कुछ विसंगतियां लगी कि वर्तमान समय में जो संध्या में आ रही है?
0: वर्तमान समय में विसंगतियों की जहां तक बात है तो जो इंटरनेट का युग है
1: जी,
0: कई बार अब जो क्या है कि बालिकाएं नेट से ही गीत उठा लेती हैं
1: जी,
0: या उन गीतों का जो भाव था वो एक तरह से खत्म हो गया, क्योंकि हम जब गाते हैं तो हमारा एक भाव अलग होता है
1: जी,
0: हम उससे जुड़ते हैं, जब गाते हैं तो हमारा रियाज भी होता है, साथ हम जुड़ते भी हैं। फिर आजकल गोबर की जगह जो मार्केट में नए नए जो पन्ने आ गए हैं चिपकाने के, जो पोस्टर आ गए एक तरह से देखा जाए तो उन पोस्टरों को ला करके चिपका दिया जाता है, तो उसमें वो भाव नहीं आ पाता जो आना चाहिए। जो बालिका 15 दिन तक बनाती है अलग अलग अलग अलग आकृतियों को और उनके साथ जुड़ती है, वो जो जुड़ाव उस पर्व से है वो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी से दूर होता जा रहा है। और जहां तक संध्या लोकोत्सव के शासन के स्तर पर भी प्रयास होते हैं, लेकिन वो सिर्फ शहर तक ही होकर के रह जाते हैं
1: जी।
0: यदि उनको ग्रामीण स्तरों पर भी उन उन बालिकाओं का अवसर दिया जाए जिन्होंने कुछ अच्छा बनाया है, जो जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां तो बहुत सारी अब आ गई है, क्योंकि बालिकाएं ये गीत भी भूलने लग गई है, कैसे गाते थे, कौन से गीत गाए जाते थे
1: जी।
0: उसकी जगह फिल्मी गानों का ट्रेंड आ गया, तो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं और इसको दूर करना चाहिए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने जो संध्या के बारे में हमें बताया, जो भी आपको इतना ज्ञान है संध्या के बारे में, आपको इतिहास पता है इसका, ये हमारे आकाशवाणी उज्जैन के श्रोताओं ने सुना और इसे जानकर जो विसंगतियां आई हैं वे उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे और नई नई पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें संध्या के महत्व को, संध्या लोकोत्सव का यह पर्व मूल रूप से सब जगह मनाया जाता है, बालिकाओं द्वारा उकेरी गई आकृतियां व्रत प्रदेश के और किन किन हिस्सों में मनाया जाता है, सब जानकारी आपके द्वारा दी गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद आकाशवाणी के सभी श्रोताओं।
2: तो आपने ये सुना कि किस तरह कई संजा पर्व मने हैं, कई कई इतिहास है, कहाँ कहाँ मने हैं, कई कई अलग अलग नाम है और भी घनी सारी जानकारी। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत का साथ घर की दीवार पे गोबर से संजा की आकृति बनाई जाइए, एक फूल पत्ती रंग प्राकृतिक सामग्रियों से सजाया जाए है। रोज सांझे बालिका होर एकत्र होकर संजा का लोकगीत गाए है और पूजा अर्चना।

करे हैं। संजा की आकृति होर में फूल पत्ती चांद सूरज पशु पक्षी पेड़ पौधा और ज्यामिति आकृति होर बनाई जाई है। अलग अलग दिन में अलग अलग आकृति बनावे की परंपरा कई क्षेत्र में देखवा के मिले है। पर्व का दौरान बालिका और मिलके गीत गाए हैं जेके लोकगीत लोक कला की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े हैं। संजा खाली एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मालवा की लोक संस्कृति और लोक कला की पहचान है। एका माध्यम से बेटी होर के रचनात्मक स्वच्छता प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक जीवन का अनुभव मिले है। आज संजा की पारंपरिक कला के संरक्षित करने खाली एका लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में ऐसी कई लोक परंपरा होर धीरे धीरे कम हो जाएगी। संजा पर्व मालवा और निमाड़ अंचल की एक सुंदर पारंपरिक लोक परंपरा है कि विशेष रूप से किशोरी होर और बालिका होर द्वारा मनाया जाए है। यह पर्व प्रकृति लोक कला परिवार और सामूहिकता से जुड़े हुई है। संजा पर्व पितृपक्ष में मनाया जाए है। सामान्यतया भाद्रपक्ष पूर्णिमा के बाद में अमावस्या तक लगभग 16 दिन तक चले है। संजा की परंपरा भी इसी अवधि का साथ 16 दिन तक चले है। लड़की और घर की दीवार पर गोबर से संजा की आकृति बनाई है। फूल पत्ती चांद सूरज पशु पक्षी अलग अलग लोग आकृति बनाए हैं। हर दिन संजा का अलग अलग रूप में बनाए हैं और सांझे एकत्रित होके आरती करे प्रसाद बांटे। संजा खाली एक पर्व नहीं एक त्यौहार नहीं बल्कि भी छोटी छोटी बालिका होर का मन में वह खुशी रहे है जो भी घना टेम से इंतजार करे है। तो चलो आज माटीरी बात में टेम भी होवा वालो है पर हमारो एक और मालवी लोकगीत फिर करांगा थोड़ी बात और थोड़ा बहुत टाइम ही रहे है 7:21 से 8 बजे तक। तो सुनो यो मालवी लोकगीत।

तो आपने सुनियो योगी तामिया झरे एका बात हम बात करी है, हमने संजय की बात करी, पशु और के किस तरह की देखभाल करनी है उसकी बात करी। अब थोड़ी बहुत बात और कर ला कि किस तरह कई चल रहे हो, घना ही मजा चल रहा होगा। कदी कदी इस तरह भी लगे है कि कई कई जागरूकता की चीज करनी पड़े है, कई कई काम करना चाहिए, घना सारा साइबर फ्रॉड भी हो रहा है। तो मैं आप सबकी एक और बात बता दूं कि जदे अननोन नंबर से, माने कि जो नंबर आपके कन सेव नहीं रहे, वी नंबर से फ़ोन उठावा का पहला ट्रू कॉलर पे चेक कर लो। साइबर में आपके लग रहे हो कि आपका साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हो है, या आपके ऐसे कोई लगे, तो आप तुरंत पुलिस के एक ही इन्फॉर्मेशन दो। साथ ही साथ बहुत सारी जागरूकता का कार्यक्रम होन चले है, ऐसा जागरूकता का कार्यक्रम हो भी आप अपना गांव में चले ही सको है। बालिका होर के जागरूक करवा का लिए और घनी सारी जो चोरी हुई है उसे जागरूक करने के लिए, जो साइबर फ्रॉड हुई है उसे जागरूक करने के लिए विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, स्कूल कॉलेज मैंने कि इनमें घना सारा कार्यक्रम आप चले ही सको है। एक साथ ही अपना आधार कार्ड का नंबर, बैंक पासबुक की डिटेल, पैन कार्ड का नंबर, एटीएम का नंबर, या कहीं का भी आपका फ़ोन पे आवा वाली ओटीपी आपके कोई के भी नहीं बतानी है, क्योंकि आपके कभी भी बैंक से यो फ़ोन नहीं आई है कि आप अपना बैंक का नंबर बताओ या बैंक जो आपका फ़ोन पे एक ओटीपी आई है वह बताओ। तो ऐसा नहीं करना है। आपके यदि कोई फ़ोन करवा का लिए, माने कि कॉल करवा का लिए भी आपसे फ़ोन ले है, तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं व्यक्ति को कैसो कई है, मतलब आप थोड़ो बहुत जानो तो फोन दो ने। अगर आप बहुत मजबूरी है तो अपने एक समझ में आई जाए है कि कई को व्यक्ति किस तरह कही है, तो आप फोन देवा से पहले फोन स्पीकर पे रखो, क्योंकि आजकल घना सारा फ्रॉड अलग अलग तरह का हो रहा है। अब आपने यो गीत सुनियो, प्यारो सो गीत सुनियो, घना सारा ऐसे ही गीत हूँ आपके रोज सुनो हुए हूँ, नहीं तो हमारा साथी और हमारी जगह आए है। तो 7:21 से 8 तक आपकी अपनी ग्राम सभा में मालवी गीतारी गूंज माटी रिवाज जैसा कार्यक्रम चले है। तो साहब राम राम, नमस्कार, टेम भी हुई गयो है, नमस्कार।

श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी उज्जैन, आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटेरी बात। श्रोताओं, रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी भोपाल से विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के पांचवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। जन सेवा से देश सेवा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत एक और अंक लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे आज के अंक में जन भागीदारी, माई गव, लोगों का पद्म, मन की बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल और मिशन लाइफ, ये सब कुछ चुनिंदा विषय हैं जिन पर हमारी चर्चा होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में नागरिकों को केवल योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि बदलाव के सहभागी के रूप में जोड़ने पर जोर दिखाई देता है। शासन में लोगों की भागीदारी, उनके सुझावों को जगह देना और सामाजिक बदलाव को जन आंदोलन का रूप देना इसी सोच का हिस्सा रहा है। इसी दिशा में माई गॉव ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक डिजिटल मंच उपलब्ध कराया। नीति और कार्यक्रमों से जुड़े सुझाव, चर्चाएं, सर्वे और विभिन्न गतिविधियों के जरिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। जुलाई 2026 तक माई गॉव पर 6,32,00,000 से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके थे। यानी तकनीक का इस्तेमाल केवल सूचना पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नागरिकों को नीति और शासन से जोड़ने के लिए भी किया गया। जन भागीदारी का ये स्वरूप तब और व्यापक हुआ जब सामाजिक बदलाव से जुड़े अभियानों में लोगों को सीधे जोड़ा गया। गिव इट अप अभियान ने स्वैच्छिक भागीदारी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा। LPG सब्सिडी छोड़ने की अपील के जरिए सक्षम उपभोक्ताओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया ताकि संसाधनों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके। जन भागीदारी का दायरा समाज में योगदान देने वाले लोगों को पहचान देने तक भी पहुंचा। पीपल्स पद्मा के तहत पद्म पुरस्कारों के लिए आम नागरिकों को भी नामांकन और सिफारिश करने का अवसर दिया गया। इससे उन लोगों को सामने लाने पर जोर मिला जो अपने अपने क्षेत्रों में लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन व्यापक सार्वजनिक पहचान से दूर रहे। लोगों से संवाद का एक प्रमुख माध्यम मन की बात भी बना। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सुझावों, अनुभवों और उपलब्धियों को इस संवाद में जगह मिलती रही। इसने स्थानीय स्तर पर हो रहे सकारात्मक प्रयासों को व्यापक मंच देने के साथ नागरिकों को अपने आसपास बदलाव लाने वाले प्रयासों से जुड़ने का अवसर भी दिया। जन भागीदारी का एक पहलू देश की विविधता को जोड़ना और स्थानीय क्षमताओं को आगे बढ़ाना भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया। यानी स्थानीय स्तर पर मौजूद क्षमता को पहचान देकर उसे व्यापक बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहा। इन सभी अलग अलग पहलों के बीच एक साझा सोच है, नागरिकों को बदलाव की प्रक्रिया का सहभागी बनाना। सुझाव से लेकर स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण तक जन भागीदारी को व्यापक जन कल्याण से जोड़ने का प्रयास। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
2: हमारी चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार।
2: हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी को। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पहले बिंदु से ही। वर्तमान सरकार में विगत एक दशक से अधिक अवधि से हम जन भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित होता देख रहे हैं?
4: देखिए, पहले भी सरकारों की योजनाएं बनती रही लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उनको अमली जामा पहलाना है, क्रियान्वयन होना है, तो यह आवश्यक है कि जनता जनार्दन उससे जुड़ी रहे।
2: जी जी।
4: अगर कोई एक योजना है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं है तो उसके सफलता की जो उम्मीद है वो बहुत कम हो जाती है।
2: जी।
4: मैं उदाहरण के तौर पर स्वच्छता अभियान की बात करता हूँ, स्वच्छ भारत की।
2: जी।
4: अब स्वच्छ भारत अगर सिर्फ एक सरकारी योजना बन के रहेगी तो भारत कभी स्वच्छ नहीं होगा। स्वच्छ भारत तभी सफल होगा जब जो आम जन है वो उसके हिस्सेदार बनेंगे, उस मुहिम के वो एक जन आंदोलन का रूप लेगा और लोगों को लगेगा कि मुझे इसमें जो है प्रतिभागिता लेना है, मुझे सक्रिय रूप से अपने घर को अपने मोहल्ले को साफ रखना है, तब जाकर जो है स्वच्छ मोहल्ला बनेगा, स्वच्छ शहर बनेगा, स्वच्छ कस्बा बनेगा, स्वच्छ गांव बनेगा और स्वच्छ समाज बनेगा और स्वच्छ देश बनेगा। तो जन भागीदारी के बगैर जो है यह संभव नहीं है। कोरोना में ही अगर आप देखेंगे, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो पलायन करते मजदूरों को मदद करने की स्थिति में हो, या टीकाकरण को लेकर हो, जनता जब खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक वो योजना सफल नहीं होगी।
2: बिल्कुल।
4: तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि गिवअप का भी आपने जिक्र किया, तो ये गिवअप जैसे कार्यक्रम है, तो ये वो तभी गिवअप हो पाएगा जब वो वॉलेंटरी है। आप जबरदस्ती किससे छीन नहीं सकते हैं। भाई आपको जो है गैस का कनेक्शन मिला हुआ है, पहले सबको मिलता था, पहले सबको राशन कार्ड मिलता था, अब उन लोगों को भी मिलता था जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है, पीडीएस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने एक आह्वान दिया। अब ये आपको याद दिलाता है आपके आचार्य विनोबा भावे जी के समय में, जब उन्होंने भूदान का आंदोलन शुरू किया था, तो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो है लोगों ने अपना भूमि दान दिया।
2: बिल्कुल।
4: ताकि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, खेतीहर जो है, उनको भी थोड़ा सा जमीन मिल जाए, ये उद्देश्य है। सो मैं समझता हूं कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी योजना जो है जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकता। इस एक दशक से ऊपर जैसे आपने कहा
2: जी,
4: उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर कार्यक्रमों में एक योजनाओं में एक जन भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
2: श्रोताओ, यहाँ पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सुरेश जी ने चर्चा की स्वच्छ भारत मिशन की। यदि ठीक तारीख मैं याद करूं सुरेश जी, तो 2 अक्टूबर 2014 यानी लगभग 12 वर्ष हो गए जब हम अपने देश को स्वच्छ बनाने की दिशा में अपना योगदान देंगे, यह आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। तो गांव से लेकर शहर तक छोटे बड़े कई आयोजन हुए, लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई अभियान किया। यहाँ पर सुरेश जी हम ये समझना चाहेंगे कि एक अभियान होता है सरकार के स्तर पर, फोटो खिंचाया, आयोजन हुआ और भूल गए, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने विशेष रूप से भारत में स्वच्छता की संस्कृति को फिर से कैसे यानी कायम कर दिया।
4: बिल्कुल। देखिए, याद रखिए, आपने 2014 उस दिन की तारीख का भी महत्व देखिए, गांधी जयंती
2: जी,
4: 2 अक्टूबर जी। और गांधी जी अपने आश्रम में इस बात को जरूर जो है सुनिश्चित करते थे कि वहां की पूरी सफाई की जिम्मेदारी किसी कर्मचारी को नहीं देते थे, अपितु जो आश्रम के जो निवासी हैं उनको ही ये दायित्व दिया जाता था, उनकी जाति देखकर जो है उनको काम नहीं दिया जाता था। तो उसी से प्रेरित होके, गांधी जी के उस दृष्टि से प्रेरित होके हमने स्वच्छ भारत का जो है शुरुआत किया। उसका नतीजा क्या हुआ, हमने जो है मात्र 5 साल में 2019 तक हम ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया, पूरे देश भर में घरों में खासकर जो है कई करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। उसका नतीजा हुआ कि जो पहले भारत की एक छवि होती थी कि लोग खुले में शौच करते हैं, ये भी स्वच्छता से जुड़ी हुई है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और स्वच्छता से जुड़ी हुई है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप स्वच्छ हो, अगर आप खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा। तो ये सब परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को जो है ये निर्भर भी रहती है, तो इसलिए स्वास्थ्य से भी संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जन आंदोलन का रूप जो लिया, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्वच्छ भारत जो है उसमें आपने स्वच्छता रैंकिंग्स देखे एक एक शहर का, अब देखिए इंदौर शहर का नाम आया और अन्य शहरों का नाम आया, और यहां सब किसी जमाने में जो है बहुत कूड़ा करकट हुआ करता था, लेकिन आज जो है आप उसको एक जन आंदोलन के रूप में, लोग खुद जो है कूड़ा डालने से उनके अंदर नो प्लास्टिक यूसेज की बात की गई है
2: जी।
4: तो मैं समझता हूं कि एक जागरूकता जनता के अंदर पैदा भी हुई।
2: सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ योजना ना हो बल्कि व्यवहार में परिवर्तन आए। घर के लोग जो कूड़ा गाड़ी आएगी उससे पहले अपने कूड़े को लेकर तैयार खड़े हैं कि गाड़ी आएगी हमें डाल देना, तो ये बड़ा बदलाव हमने देखा। और ये सफल नेतृत्व का एक स्पष्ट सोच का परिचायक हम मान सकते हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा वह गांधी जी की ही भूमिका एक नायक निकल कर आया और उसने उसे जमीन स्तर तक पहुंचा दिया। यहां पर हम आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, कार्यक्रम को ले जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे गिव इट अप अभियान यह अपने आप में कैसा अभियान था, इसके परिणाम क्या निकले हैं। राकेश जी, त्याग की भावना यदि भारतवर्ष की मूल भावना रही है तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। त्यागी कोई भी हो उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है भारतीय शास्त्रों में भी और भारतीय जनजीवन में भी। यहाँ पर ये जो गिव इट अप, त्याग अपना कर दीजिए यदि आप सक्षम हैं, तो इसका लाभ किस रूप में ग्रामीण भारत में और संपूर्ण भारत में उज्ज्वला योजना के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को मिला है, क्या आकलन कर पाए हैं आप?
5: देखिए,

0: आकलन बिल्कुल स्पष्ट है। जिन ही सरकार ने यानी प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि मीडिया कर दीजिए, तो लोगों ने स्वेच्छा से, अभी सुरेश जी ने ठीक बताया कि लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनिशियल प्रारंभिक दिनों में ही गिव अप कर दिया और सब्सिडी छोड़ी। नतीजा हुआ कि आज 12 करोड़ से ज्यादा उन गरीब परिवारों में उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंच गया है, वहां धुआं घटा है, सेहत सुधरी है, कठिनाई घटी है, लोगों का समय बचा है। और आम तौर पर जो ये माना जाता था कि गैस सिलेंडर एक स्टेटस सिंबल कभी हुआ करता था, राशनिंग होती थी, काफी मुश्किलों से दिक्कतों से लोगों को गैस सिलेंडर मिल पाता था, और 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घरों में गैस सिलेंडर का पहुंच जाना, आज की तारीख में करीब 1.6 करोड़ लोगों ने अपना LPG गैस कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी। और अब तो PNG के इस दौर में, मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मोतिहारी जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, छोटा सा शहर है, यहाँ भी घर घर PNG की पाइप बिछ गई है और लोग PNG का कनेक्शन ले रहे हैं और गैस सिलेंडर को यूं ही वापस कर रहे हैं। तो एक तो गांव में गरीबों के चूल्हों तक, उनकी झोपड़ियों में, और सुखद आश्चर्य ये होता है कि झोपड़ी में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा रख के, गैस चूल्हा रख के खाना बनाती महिलाओं को देखिएगा तो पूरा एक दृश्य बदल गया है। सरकार की ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता है और जन भागीदारी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इस सबका विश्वास का ही नतीजा है कि लोगों ने सीधे सीधे विश्वास किया और इससे एक सामाजिक समरसता की सौर्यता भी आई है और लोगों को मन में ये बात गई है कि भाई केवल हम सुखी संपन्न नहीं हो, मेरे वो पिछड़े गरीब जो वंचित पीछे छूट गए हैं, अगर वे भी गैस पर खाना बनाए, उन्हें भी धुआं से आजादी मिले, कि सेहत में सुधार हो, तो ये सब बातें हुई है और जिसका परिणाम ये है कि आज आप गांव में दृश्य बदल गया है।
1: सुरेश जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई करोड़ लोगों ने जो है अपना, जो खासकर ये जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया और ग्रामीण महिलाओं को गैस के चूल्हे का उन तक वो सुविधा पहुंचे, जो धुआं, जो कोयला, जो लकड़ी का इस्तेमाल करके TB जैसे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होते थे, उनके लिए एक साफ ईंधन प्रदान करने का जो एक पूरा मुहिम था, ताकि महिलाओं के जीवन में भी जो है वो दिन भर पेड़ काट के लाना, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था
2: जी,
1: और उनको इकट्ठा करना दिन भर, फिर शाम को लाकर उनसे खाना तैयार करना, उससे हटकर एक गैस जो पहले सिर्फ शहरों तक LPG की जो एक व्यवस्था थी उसको पहुंचाने का उज्ज्वला योजना का ये तय किया गया। तो इसमें ये भी देखा गया कि बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग भी थे जिनको एक तो अफोर्ड कर सकते थे, उनको सब्सिडाइज्ड गैस की जो है आवश्यकता नहीं थी, दूसरा PNG के कनेक्शन शहरों में बड़े तादाद पर जो है कनेक्शन मिल गए, जिसके बाद LPG की आवश्यकता ही खत्म हो गई।
2: बिल्कुल।
1: तो उसके बाद उनसे यही अनुरोध किया गया, आह्वान किया गया कि आप अपना ये जो राशन कार्ड या आपका जो हक है उसको आप छोड़ दीजिए
2: जी।
1: अब हम लोगों के पास भी 2-3 सिलेंडर का हम लोगों का भी कोटा हुआ करता था
2: जी, जी।
1: हम एडिशनल भी हमने एक ले लिया था क्योंकि जी, जी। कभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब से PNG आया, घर के अंदर सीधे किचन में गैस आ रहा है, कोई शिकायत, कोई फोन करने की जरूरत भी नहीं है, वो नियमित सप्लाई चल रहा है, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं लगी, तो हमने वॉलंटियरली दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि उससे क्या हुआ कि जो दबाव, क्योंकि हम भी देखिए विदेश से बहुत फ्यूल को आयात करते हैं, तो इसलिए उसका एक संसाधन सीमित है और उसको ज्यादा संख्या में बांटना भी है, तो किसी को तो उसको जो है गिव अप करना ही पड़ेगा
2: जी, जी,
1: तब जाके जो है ये होगा
2: जी, जी।
1: इसी तरीके से राशन कार्ड है, आज लगभग 80 करोड़ आबादी को हम जो है सब्सिडाइज्ड या मुफ्त में ही हम लोग राशन देते हैं, तो अब ये तभी संभव हो पाएगा। एक बहुत बड़ा तबका जो है राशन कार्ड होल्डर्स थे, मध्यम वर्ग में भी थे, निम्न मध्यम वर्ग में भी थे, और कई बार वो लेते थे, कभी ऐसे टोकन के लिए लिया जाता था या किसी और को देने के लिए लिया जाता था
2: जी।
1: तो ये तय किया गया कि भाई उनको उसकी क्या जरूरत है, तो वो भी अपना गिव अप कर दें आज, क्योंकि PDS की उनको जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की आकांक्षा यही होना चाहिए, जिसको हम एस्पिरेशनल लेवल्स भी कहते हैं
2: जी, जी, जी,
1: कि भाई वो सरकारी सब्सिडीज पर से डिपेंडेंसी खत्म करके स्वायत्त बने, वो इतना स्वावलंबी बने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जैसे जनभागीदारी की हमने बात कही थी शुरुआत, तो आपने अपना अधिकार को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए। इससे जो है लाखों लोगों को जो है उसका लाभ मिला, और सरकार पर भी जो दबाव था कि इनको भी देना है, उनको भी देना है, सब तक पहुंचाने का, और खासकर जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है सरकार इसमें भी ये गिव इट अप के तहत जो है सफल हुए हैं।
2: श्रोताओं, एक प्रेरक व्यक्तित्व किस तरह न केवल अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि संपूर्ण दुनिया के लिए एक अनूठा व्यक्तित्व बन जाता है, उसका एक उदाहरण है वह कार्यक्रम जिसे आप बड़े ध्यान से, प्यार से और स्नेह से सुना करते हैं। सुरेश जी, मैं चर्चा कर रहा हूँ मन की बात कार्यक्रम का। प्रधानमंत्री का यह संबोधन किस रूप में क्रांतिकारी साबित हुआ है और इसके लगातार एपिसोड आ रहे हैं, आम जनमानस पर इसकी क्या भूमिका रही?
1: देखिए, मैं तो कहूंगा कि रेडियो के पुनरुत्थान में भी मन की बात की एक बड़ी भूमिका रही है। लोग जिस समय में विजुअल मीडिया, टेलीविजन और डिजिटल की तरफ चले गए थे, रेडियो की सार्थकता एक तरह से ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं सिर्फ एफएम के गाने सुनने तक सीमित है गाड़ी में
2: जी।
1: तो वहां एक कार्यक्रम, और देश का नहीं विश्व का पहला कार्यक्रम जहां कोई भी लोकतांत्रिक देश का नेता, राष्ट्र एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री स्वयं राजनीति से हटकर,
2: बिल्कुल
1: जितने भी राजनेता बात करते हैं अपना राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, दुनिया में एक अनूठा कार्यक्रम है जहां आप राजनीति की चर्चा ही नहीं करते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते ही नहीं है, आप दैनिक दिनचर्या के विषय, लोगों की आदतों की बात, हमारे नागरिकों की उपलब्धियों की बात, आम जनता में से निकले हुए लोग जो कुछ हटके काम कर रहे हैं उनके बारे में, हमारे कुछ ऐसे खेल, ऐसे हमारे जो हथकरघा और इस तरीके से जो हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, इनके बारे में लोगों को बताना, मैं समझता हूं कि इतना ज्ञानवर्धक है कि आप एक घंटे सुनेंगे। अब तो लोगों से सीधे वार्तालाप भी, संवाद भी प्रधानमंत्री करते हैं जिसमें बातचीत भी करते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका बहुत अभूतपूर्व योगदान है। जब मैं माखनलाल विश्वविद्यालय का कुलपति था तो हमने जामिया मिलिया के साथ मिलकर
2: जी,
1: और पूरा पत्रिका हमने प्रकाशित किया जिसमें ये देखा गया कि मन की बात का जमीनी स्तर पर कितना फर्क पड़ रहा है, और वाकई लोगों के लिए एक प्रेरणादायी, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसके तहत क्या क्या बड़ी बातें कही है, बनारस की साड़ियां लेने से लेकर उत्तर पूर्व में जो है पर्यटन करने जाने से लेकर, ऐसे ऐसे बातों को लेकर प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लोगों को, जिस पर आम तौर पर यह माना जाता था कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति क्या इतने रोजमर्रा जिंदगी की बातें करेंगे क्या
2: जी,
1: मैं समझता हूं वो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, पूरा परिवर्तन, वो उन भावनाओं के बारे में, हमारे सोच के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में ऐसे पहलू लेकर जनता के समक्ष आए जो मैं समझता हूँ न सिर्फ ज्ञानवर्धक है, हम सबके लिए प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं समझता हूँ कि उससे एक राष्ट्र का एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और रेडियो के प्रति जो रुझान बढ़ा है और उसके चलते प्रधानमंत्री क्योंकि रेडियो में बोल रहे हैं तो वो लाइव टीवी में भी जा रहा है, डिजिटल भी जा रहा है, शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा होगा विश्व भर में जिसका जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है करोड़ों लोग उसे देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
2: राकेश, आपसे हम समझना चाहेंगे कि बातों का जो विषय वैविध्य है, भिन्न भिन्न विषयों को प्रधानमंत्री ने अलग अलग समय पर उठाया, आम लोगों को लुभाने में और आम लोगों के जीवन में बदलाव में ये बिंदु, उनका दिया हुआ एक उदाहरण दूसरों के लिए कैसे अनुकरणीय बना है?
0: नहीं, बिल्कुल अनुकरणीय बना है। आप ये जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात वाला कार्यक्रम जब उनका होता है, आप किसी भी शहर में, कस्बे में, गांव में देखेंगे, लोग एकजुट होके, सड़कें सुनी हो जाती है, लोग बैठ के उसको सुनते हैं। तो सुनते इसलिए है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा है। ठीक अभी सुरेश जी ने कहा कि वो छोटे छोटे ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का चयन करते हैं, ऐसे लोगों का, कोई दिव्यांग है उसकी कोई उपलब्धि है, कोई गांव गली के कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई आर्ट है किसी लोकल स्तर पर, जैसे बिहार की सुजनी कला, बिहार का मधुबनी पेंटिंग कला, बिहार के भागलपुर का सिल्क, या किसी खास स्तर पर कोई मिठाई बन रही है, कोई छोटे उत्पाद है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो एक तो जिसकी चर्चा वो करते हैं वो पूरा समाज, वो पूरा जिला, पूरा राज्य अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और दूसरा इसे लगता है कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात गया है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई नोटिस ले रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में एक भरोसा जगा है कि मेरे किसी काम का, मेरे किसी योगदान का, स्वच्छता का ही क्षेत्र है या फिर शिक्षा का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति कहीं मुसहर टोली में, किसी दलित बस्ती में कोई ऐसा काम कर रहा है, बरसों से कर रहा है और आज तक किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली, उसे यह लगता है कि नहीं यह नोटिसेबल है कि मन की बात वाले कार्यक्रम में उसकी चर्चा होती है तो वो व्यक्ति फूले नहीं समाता है और दूसरों को भी उससे ये प्रेरणा मिलती है। आपने पूछा कि ये कितना अनुकरणीय कितना प्रेरक है, ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग के सामने रोज बरोज आते हैं कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से अगर कुछ किए जा रहा है और जब उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो उसे लगता है कि उसका दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मिल गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने काम में और ज्यादा उत्साह से लगन से लग जाता है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंदर अभी 137 एपिसोड उनका हो गया है और कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह इतने दिनों से लगातार जारी है और लोगों के मन को छूता है।
2: श्रोताओं, यदि मैं ठीक से याद करूं तो प्रधानमंत्री के मन के बात से ही, मन की बात में ही वो बीज छिपे थे जहां से वोकल फॉर लोकल का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेश जी, वोकल फॉर लोकल यानी अपने स्थानीय उत्पाद को जो जमीन है वहां से फर्श से अर्श तक ले जाना या शिखर तक पहुंचाने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया, वह किस रूप में सफल होता लग रहा?
1: देखिये, इसको एक समग्र रूप में हमें देखने की जरूरत है
2: जी।
1: एक तरफ इसमें स्वदेशी का जो है खुशबू आती है, जहां हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो फिर अपने देश का प्रोडक्ट, अपने देश के प्रोडक्ट को अगर आप आगे को ले जाएंगे तो आप उस तर्क को आगे ले जाते हुए देखेंगे कि भाई अपने राज्य का प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखेंगे अपने जिले का हो,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो अपने गांव का हो, गांव से जिला, जिला से जो है आपका राज्य, राज्य से राष्ट्र, तो ये जो पूरा एक क्रम बना हुआ है उसके तहत जो है हम अपने स्थानीय चीजों को जो है वैश्विक स्तर पर उसकी चर्चा करें और उसके बारे में वोकल होना, हम उसको जो है प्रचार प्रसार करें, उसका उसकी चर्चा करें, उसको खरीदें, उसको खरीदवाएं, उसका जो है सोशल मीडिया में हम चर्चा करें ताकि उसका अलग एक ब्रांडिंग बने। जीआई टैगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले कभी नहीं होता था,
2: जी, जी,
1: आज
2: जी।
1: जो है देश के न जाने कितने प्रोडक्ट्स, चाहे वो उड़ीसा और बंगाल के रसगुल्ले से लेकर अगर आप शुरू करेंगे, दुनिया भर के जो है, देश भर के जो है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स जीआई टैग हो गए हैं, बासमती राइस से लेकर हुआ हो, सीहोर का गेहूं हो, आप देखेंगे कि एक एक इलाके का जो विशेषता है उससे क्या होता है, पर्यटन बढ़ता है उस क्षेत्र का, लोग उसका स्वाद लेने के लिए आते हैं, उसका जब चर्चा होती है तो हम उधर के जो है उसके स्वाद को अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, हम उस क्षेत्र में पर्यटन इससे बढ़ता है, हमारे जो कृषक वर्ग है, हमारा जो किसान वर्ग है, उनकी जो है आय बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है जब बिक्री होती है तो, और उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये समग्र समुचित है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। इसमें जो है आपने स्टार्टअप इंडिया दे दिया है, इसमें आपने जो है मुद्रा योजना लगा दिया है ताकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को आगे जो है हम बढ़ा सके, तो इससे मेक इन इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट आया है कि भाई भारत में निर्मित करो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय उत्पाद के प्रति जो है उसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। आज भारत के उत्पादों को लोग खरीदना चाहते हैं बनिस्बत विदेश के। पहले विदेश जाते थे तो टीवी भी उठा के लाते थे, वहां के सब चीजें उठा के आपका दुबई से इधर उधर से, आजकल कोई नहीं लाता है, आजकल जो है घूमने फिरने जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं लेकिन वापस आके हमारे यहाँ बेहतरीन गुणवत्ता का मिलता है। तो ये इसलिए कि ये लोकल फॉर वोकल, अपने स्थानीय पदार्थों के बारे में, स्थानीय उत्पादों के बारे में हम लोग बहुत मुखर होकर हम इन बातों को रखें और उसको प्रचार प्रसार करें, उसको प्रोत्साहित करें, जिस उद्देश्य से ये शुरू किया था और बहुत ही सफल रही है।
2: यहाँ पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, लोगों का पद्म, सुरेश जी पद्म पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, लेकिन पहले एक नीति थी उसमें हम देखते थे कि जो नामचीन व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाता था, यानी ऐसा लगता था कि पद्म पुरस्कार के लिए पहले प्रख्यात होना आवश्यक है, निसंदेह वो बड़े ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते थे, लेकिन आम आदमी जो कि वास्तव में बहुत गुणी है उसे अब पद्म पुरस्कार मिल रहे हैं, कैसे यह परिवर्तन आया?
1: नहीं, ये तो पद्म पुरस्कारों का लोकतांत्रिकरण हुआ है
2: जी,
1: इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जनजाति क्षेत्र से कोई बहुत ही कम शिक्षित
2: जी,
1: एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ जो है सांप के काटने से जो स्थानीय जो जनजाति है उनको जो है दवा और मरहम करती थी, उनको कभी पद्म पुरस्कार मिलेगा? कई लोगों की जान बचाई आम जनता, उनको उस पुरस्कारों के साथ जोड़ना, वे साधारण लोग जिन्होंने असाधारण काम किया है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको मान्यता देना, उनका जाति, उनका मजहब, उनका भाषा देखकर नहीं, उनके काम को देखकर। और पहली बार ऐसा हुआ, पहले सरकार तय करती थी आज जो है ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहां कोई भी आवेदन दे सकता है, सब

0: ये अधिकार दिया गया है कि वो आवेदन दे सकते हैं और उन आवेदनों पर विचार होता है
1: जी।
0: तो इसलिए ये अभी किसी का एकाधिकार नहीं रह गया है, लोकतांत्रिकरण हो गया है। और मैं समझता हूं कि इससे जो है एक बहुत बड़े तबके के अंदर एक आकांक्षा जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें भी एक पद्म पुरस्कार मिल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक कलाकार से लेकर एक अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा करने वाले से लेकर किसी के अंदर ये जरूर हो सकता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरा पीठ थपथपाया जाएगा, उच्चतम स्तर माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किया जाने की संभावना है। ये जो एक सपना है साकार होने का, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए पद्मा को अब पीपल्स पद्मा कहा जाता है।
1: चर्चा को हम एक आयाम और देते हुए राकेश जी सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान दिया गया, इस आह्वान के कहले के विविध रूप हमने देखे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में या अपने लक्ष्य तक पहुंचने में यह कितना समर्थ होता दिख रहा आपको?
2: नहीं, बिल्कुल ये समर्थ है। और यह कार्यक्रम शुरू किया गया 31 अक्टूबर 2015 से, जो सरदार पटेल की 140वीं जयंती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो राज्यों के बीच, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच, दो परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जो ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, एक दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। 40 वर्ष पहले दौरान एक कार्यक्रम चलता था अंतर्राज्यीय आदान प्रदान का कार्यक्रम, कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ छात्र बिहार यूपी के जैसे राज्यों में आते थे, यहाँ के छात्र वहां जाते थे और एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के घरों में रहते थे और उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानकारी लेते थे। तो इसी ढंग से एक भारत श्रेष्ठ भारत का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हम एक सांस्कृतिक दूरी भी घटा रहे हैं, भौगोलिक दूरी भी घटा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में एक मानवीय भावना भी विकसित कर रहे हैं और वो भी एक भारतीय हैं। इस भारतीयता के भावना से देश की एकता के लिए यह अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लोगों में एक एहसास आया है कि हम सब भारतीय, चाहे उत्तर के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों, हम सब आपस में एक भारतीय हैं, एक देशवासी हैं और हमारी संस्कृति अलग अलग है, पहनावा पोशाक भी थोड़ा अलग है, कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर खान पान में फर्क है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि अगर इस देश की 140 करोड़ जनता एक कदम आगे बढ़ती है तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है, यह भावना लोगों में है और इसलिए ये एक सफलतम कार्यक्रम है।
1: सुरेश जी, इसी बिंदु पर हम आपसे समझना चाहेंगे, भारतीय वांग्मय को हम देखें, पुरातन भारतीय शास्त्र को देखें तो निसंदेह राजनीतिक इकाइयां अलग अलग हुई, सांस्कृतिक इकाइयां भी अलग अलग हुई, लेकिन एक भारत की अवधारणा, भारतवर्ष की अवधारणा हिमालय से लेकर सागर तक वो एक सूत्र में हम बंधे हुए हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। उसमें प्रधानमंत्री ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का कह लें कि आह्वान दिया तो इसकी मूल अवधारणा क्या रही और हम उसमें कितने सफल होते दिख रहे?
0: निश्चित ही जैसे कि बताया गया, ये सरदार पटेल की जयंती के दिन ये श्री गणेश हुआ था, उसके पीछे क्या सोच रही सरदार पटेल ने जो है
1: एक किया पूरे भारत
0: एक किया पूरे देश को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जैसे आपने कहा कि पहले से ही जो है आदि शंकराचार्य को देखिए,
1: बिल्कुल
0: भारत के उस चार कोनों में वो जो मठ की स्थापना करते हैं, तो वो अवधारणा पहले से ही थी लेकिन उसको राजनीतिक रूप से सरदार पटेल ने, तो राजनीतिक और
1: सांस्कृतिक
0: एकता को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, उसी दृष्टि से जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरा कल्पना की गई। राकेश जी ने तो कई बातें कही, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आपका काशी तमिल संगम अब आयोजित हो रहा है। काशी क्या है? संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में देखा जाता है। याद रखिए, यही जो है आपके आदि शंकराचार्य आए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य केरल के कालडी से आए थे, है ना, और वहीं संस्कृत के उस जगह में देश का ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है तमिल, और वहां तमिलनाडु के जो है न सिर्फ विद्यार्थी शोधार्थी अपितु वहां के तमिल भाषा के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको वहां आमंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो है तमिल विषय जो है आज एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं इस बार भी जब वे ब्रिक्स के नेता आते हैं तो रूस के राष्ट्रपति को भी जो है तिरुकुरल की प्रति जो है देते हैं। पहले वो भगवद गीता दिया करते थे। तमिलनाडु का सबसे न सिर्फ प्राचीन बल्कि सबसे, अगर आप कहेंगे कि लोग जिससे जुड़े हुए हैं,
1: लोग जीवन में
0: बसे हुए हैं, ऐसा एक ग्रंथ है वो, तो उसके साथ जो है, तो कहने का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अलग अलग

0: चाहते हैं कि बाहर मत घूमने जाओ, देश के अंदर घूमो, LTC लो, देश के अंदर घूमो, नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अपने देश को जानो, ये बहुत जरूरी है और उसी के तहत मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक सफल प्रयोग रहा है।
1: मैं लोग स्वस्थ हों, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उस पर भी हम संक्षिप्त आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किस रूप में ये विभिन्न योजनाएं आम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रही हैं?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत भी बहुत ही आवश्यक है और पर्यावरण के साथ भी हमारा जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आयुष्मान भारत के तहत हो, जिसके तहत जो है आम व्यक्ति भी आज निजी अस्पतालों में जाकर भी कितना भी कठिन जो है प्रक्रिया क्यों ना हो, कितना भी कीमती महंगी प्रक्रिया क्यों ना हो, उसको वो सरकारी खर्चे पर जो है उसका इलाज करा सकता है। आज जो है हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में हम टीकाकरण को लेकर, हमने उसका यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर हमने कितना प्रयास किया, कोरोना के दौरान देखा कि हमने मात्र 6 महीने के अंदर हमने एक टीका तैयार किया और न सिर्फ भारत के लोगों को अपितु पूरे विश्व के विकासशील मुल्कों में भी हमने उसको दिया। और इसी तरह स्वास्थ्य को लेकर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, उनको कैसे और मजबूत किया जाए, इस दिशा में हमने काम किया। आयुष्मान भारत के साथ साथ जो आयुष मंत्रालय है, जिसके तहत जो है न सिर्फ हमने क्यूरेटिव हेल्थ बल्कि प्रिवेंटिव हेल्थ उस पर भी जोर दिया, ताकि जो है हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिससे कि आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद, होमियो, यूनानी, सिद्ध, ये सारे जो सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, इसको हमने जो है लोगों को विकल्प के रूप में दिया। हमने बाकी जितने विधाओं के लोग हैं उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि वो इन विषयों को भी समझें। तो एक दूसरे का जो एक अछूता, अंग्रेजी दवाई वाले जो है आयुर्वेद वालों को पूछेंगे नहीं, ये अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो है हम किस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अस्पतालों की जिस तरीके से संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, आप देखेंगे कि इतने अस्पताल खुल गए, इतने स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए। उद्देश्य ये है कि हमारी जनता जो है वो स्वस्थ बने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो मान्यता दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग जो है योग के साथ भी अपने मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जो है संतुलन बनाए रखें। फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ताकि जो है देश में सब लोग फिट रहें, बीमारियों से बचते रहें। मैं समझता हूं कि एक समग्र चिंतन गया है और अगर इसको सही मायने में अगर अमली जामा पहनाया जाए और इस पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए, साधारण भारतीय का जीवन जो है वो काफी उम्र उसके बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी भूमिका जो है ये स्वास्थ्य के जो विकास हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विकास हुआ है, उसका निश्चित ही कारण।
1: सुरेश जी, आपने बहुत जानकारियां दी, बहुत सार्थक और उपयोगी जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: राकेश जी, आपने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया, श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण उपयोगी जानकारियां दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 5वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा जन भागीदारी से जन कल्याण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KG सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: नमस्कार श्रोताओं, FM 102.5 MHz और News on AIR ऐप पर यह है आकाशवाणी उज्जैन। रात के 8:35 हो चुके हैं और मैं आपकी रेडियो साथी दृष्टि स्वागत करती हूं सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस सफ़र में। श्रोताओं, आज का दिन यानी कि 21 सितंबर राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या का पुण्यतिथि दिवस, लेकिन राजश्री की यात्रा उनके निधन के साथ नहीं रुकी। उन्होंने जिस संस्था की नींव रखी उसने आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना विस्तार जारी रखा और फिर आया वर्ष 1989 जब उनके परिवार की अगली पीढ़ी सूरज R. बड़जात्या ने निर्देशन में कदम

रखा और फिल्माई मैंने प्यार किया। यह फिल्म राष्ट्रीय के इतिहास में एक बड़ा मोड़ बनी। फिल्म ने सलमान खान को प्रमुख पहचान दिलाई और भारतीय लोकप्रिय सिनेमा में प्रेम, दोस्ती और परिवार को जोड़ने वाली एक नई पीढ़ी की शुरुआत की।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार असद भोपाली के बोल और संगीत रमन लक्ष्मण का।

0: श्रोताओं, फिल्म हम आपके हैं कौन ने राशि परिवार की फिल्मों की परंपरा को और बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाया। फिल्म ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट प्राप्त किया और 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स तथा 6 स्क्रीन अवार्ड्स जीते। और फिर हम साथ साथ हैं, विवाह और आगे कई फिल्मों ने राजश्री की पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। ताराचंद बड़जात्या की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है कि उन्होंने केवल फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो उनके बाद भी बदलते समय के साथ आगे बढ़ती रही।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से, गायक लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़, गीतकार रविंद्र रावल के बोल और संगीत रमन लक्ष्मण का। इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी उज्जैन। श्रोताओं, रात के 8:45 होने को हैं और कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने

0: पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
7: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
6: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
8: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुँच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
9: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities.
1: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.
9: The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the 4th round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. A report.
10: This procurement is a significant step towards indigenization of critical subsystems of armored platforms and demonstrates industry-led research and development make too. The induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. The contract is aligned with government's vision of Viksit Bharat at 2047 and marks a notable milestone towards achieving Atmanirbharta in defense and building a resilient, self-reliant and globally competitive Indian defense industry. With Arzu, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
9: The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. This is Akashwani giving you the news.

0: भारत और न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे MSMEs में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शहराओं के लिए सड़क तहफ्फुज और सलाहियत को फरोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमिर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने शूटिंग में 3 तमगे जीते हैं। बैडमिंटन में मर्दों की टीम बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तिजारती मुआहिदा FTA विजयदशमी के मौके पर इस बरस 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इस मुआहिदे से 100% भारतीय बरामदकारों को न्यूजीलैंड तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि कलीदी शराकतदारी इस तआवुन को मजीद मजबूत करने और सामान और खिदमात के शोबे में बाहमी तजारत को दुगना करके अगले 4 से 5 बरस के दौरान तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के उमंगों से भरे हदफ की मुश्तरका ख्वाहिश को जाहिर करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहिदे का नाफिजुल अमल होना इस हदफ को एक ठोस इक्तिसादी महासल के तौर पर जाहिर करता है।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहिदे से भारत के MSMEs, किसानों, दस्तकारों और हैंडलूम के कारीगरों को बहुत फायदा मिलेगा और इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने FTA के तहत गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी के तौर पर भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया है।
1: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस मुआहिदे से भारतीय बरामदकारों के लिए नए मौके खुलेंगे, जिसमें टेक्सटाइल और मलबूसात, लेदर और फुटवियर, इंजीनियरिंग का साजो सामान, अदवियात, जराती साजो सामान और डिब्बा बंद गजाई मसनूआत शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ के गोश्त और खाम चमड़े के लिए भारतीय मार्केट तक बहुत ज्यादा रसाई हासिल होगी। इस मुआहिदे से खिदमात, सरमायाकारी और पेशे तलबा और नौजवानों की आमदोरफ्त के नए मौके पैदा होंगे, जिसमें भारतीय पेशेवर अफराद और तलबा के लिए आमदोरफ्त के ज्यादा मौके शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड के तवील अरसे से और करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जिनकी बुनियाद अवाम के अवाम से मजबूत रवाबित, तिजारत और सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, खेलकूद, टेक्नोलॉजी और दीगर कई शोबों में वसीतर तआवुन पर कायम है। आजाद तजारती माहिदा इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम है और इससे दोनों मुल्कों में कारोबारी अफराद और मुआशरे के लिए नए मौके पैदा होंगे। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि बाहमी ताल्लुकात में अगले 90 दिन एक अहम दौरानिया साबित होंगे। जनाब गोयल ने बताया कि मुजव्वजा तजारती माहिदे के सिलसिले में कनाडा के उनके हम मनसब के साथ चौथे दौर के मुजाकरात पिछले हफ्ते मुंबई में हुए थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने मुजाकरात की की रफ्तार को तेज करने से इत्तफाक किया था। लिंड से ओग्राहम रूस और ईरान पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक एक्ट 2026 के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि इस एक्ट की मजीद तफसीलात अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनका मुताला करेगा और मुनासिब वक्त पर इस मामले पर तबादला ख्याल करेगा। वजारत दिफा ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड

0: के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। इस मुआहदे पर महकमा दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के शहर पुणे में कायम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक भारतीय फर्म है। ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs आग को कंट्रोल करने के निजाम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और टैंक के दीगर आलात के लिए बिजली पैदा करने का एक मुतबादिल वसीला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उसूलियाबी के सिलसिले में ये मुआहदा मुसल्ला प्लेटफॉर्म्स के लिए कलीदी नौइयत के ज़ैली निज़ामों की मुल्क में ही तैयारी की जानिब एक अहम कदम है और ये सनत की क़यादत वाली तहकीक व तरक्की के मेक टू को जाहिर करता है। मुल्क में ही तैयार APUs की शमूलियत भारतीय फ़ौज की मैकेनिकल तश्कील की कार्रवाई पर मबनी तैयारी, भरोसेमंदी और पायदारी को मजीद मुस्तहकम करेगी। इससे निज़ाम की मुल्की इख्तिरात को पैदावार और शमूलियत में तब्दील करने की असर पजीरी का इजहार होता है। ये माहिदा हुकूमत के विकसित भारत 2047 के विजन से वाबस्ता है और दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता की हुसूलियाबी की जानिब एक काबिले जिक्र संगे मील है। साथ ही ये एक मुजाहिमत, खुदकफील और आलमी सतह पर मुकाबला जाती भारतीय दिफाई सनत की तश्कील की जानिब भी एक अहम संगे मील है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: भारत की कौमी शाहराओं की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल कौमी शाहराओं की मनसूबाबंदी और डिजाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराओं पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज रफ्तार कौमी शाहराओं की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में यकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहरा के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। वजारत ने कहा कि ये रहनुमा खतूत हुकूमत के तवील मुद्दती कलीदी लाहे अमल से मुताबिकत रखते हैं, जिसके तहत विकसित भारत 2047 के तहत रसाई को कंट्रोल करने वाले इंतहाई तेज रफ्तार 50,000 किलोमीटर राहदारी की तैयारी की बात कही गई है, जिससे कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के भाई थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुआशरे की खिदमत अंजाम देने के लिए उनकी कोशिशों को आने वाली नस्लें हमेशा सराहेंगी। वजीर आजम ने दुबई के शाही खानदान और अवाम से ताजियत का भी इजहार किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी शेख अहमद बिन राशिद अल मकतूम के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत दुबई के शाही खानदान और अवाम के इस गम में शरीक है। यह आकाशवाणी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की जिंदगियों में तब्दील ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खुसूसी सीरीज के तहत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के जरिए लाई गई तब्दीली का जायजा पेश किया जा रहा है।
2: डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा मुल्कों के हुक्मरानी, लेन देन और खिदमात की फराहमी के तरीक़ेकार को नई शक्ल दे रहा है। भारत डिजिटल सिस्टम के सबसे बड़े इस्तेमाल करने वाले से लेकर आबादी के तनासुब के मुताबिक डिजिटल आर्किटेक्चर के मेमार के तौर पर उभरा है। भारत ने मुश्तरक डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 सतहें तश्कील दी हैं और हर सतह को दूसरों के जरिए तामीर के लिए खुला रखा है। इसके तहत पहली सतह आधार है, जो काबिले तस्दीक शनाख्त फराहम करता है। वहीं UPI रकम की 2 बैंक खातों के दरमियान फौरी मुंतकली को मुमकिन बनाता है और अदायगी करने वाले शख्स पर किसी तरह का चार्ज आयद नहीं होता। इसी तरह अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शहरी को अपने मालियाती रिकॉर्ड अपनी मर्जी से कर्ज देने वाले या बीमा करने वाले के साथ साझा करने की भी इजाजत देता है। मुंबई में इस महीने मुनक़िद हुए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल काबिले ज़िक्र सफ़र और उसकी बढ़ती आलमी पहुंच को नुमाया किया था। डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के साथ भारत का सफ़र डिजिटल दौर में तरक्की और हुक्मरानी की जानिब बड़े पैमाने पर मुंतकली को जाहिर करता है। जो कभी मालियाती शमूलियत और पहचान तक रसाई के लिए शुरू हुआ था, वो आज जामे और इंटर ऑपरेबल तरीक़ाकार बन गया है, जो इक्तसादी सरगर्मी, अवामी खिदमत की फराहमी और इदारा जाती सलाहियत को मुमकिन बना रहा है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरीन 90 स्टेट दूमा के लिए हुए इंतखाबात में बरसर इख्तदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतीजे सदर व्लादिमीर पुतिन को इख्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मॉस्को में आज अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन की चेयरपर्सन एला पामफिलोवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है, जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है, जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 59% राय दही हुई, जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 रोजा दौरे पर आज गुजरात पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया केवड़िया के एकता नगर और वडोदरा में अहम तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कल शाम केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म इनामात अता करेंगी। एकता नगर इन बावकार इनामात की पहली मरतबा बेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्मों की गुनागुनियत को जश्न मनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के तहत मुल्क के आला तरीन फिल्म इनामात अता किए जाने की तकरीब को कौमी राजधानी से आगे ले जाते हुए दूसरे मकामात पर मुनक़िद करने का तारीखी फैसला लिया है। भारत ने जापान के एची नागोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इंफरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा, जबकि रुद्राक्ष पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। कल एलाविनिल वलारिवन ने ख्वातीन के इंफरादी 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। भारत ने ख्वातीन के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। इस तरह निशानेबाजी में 4 चांदी के और 1 कांसे के तमगे के साथ कुल 5 तमगे जीते हैं। सुचिका तरियल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तमगा जीता, जो भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर हिमांशु ढिल्लन को मुबारकबाद दी है। भारत ने आज जापान के इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त देकर मर्दों के बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बना लिया है। लक्ष्य सेन ने अयमिन एमन इब्न को 21-4, 21-12 से, आयुष शेट्टी ने गौरव सिंघा को 21-4, 21-13 से और किदाम्बी श्रीकांत ने जुमारुल अमन को 21-15 और 21-9 से शिकस्त दी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड आज़ाद तजारती माहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे MSMEs में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तसादी शराकत दारी माहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराओं के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फरोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार, आपके अपने मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीष शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी से सीधा जुड़ा हुआ है। जी, आज हम ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा में की गई बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद

0: बदलाव आ जाएगा और रिटायरमेंट का वक्त आते आते आपके हाथ में आने वाला फंड लगभग अंदाजन कितना बड़ा हो सकता है, जैसे तमाम सवाल लोगों के मन में प्राय उठते रहते हैं। और आज ऐसी ही बातों की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी को। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद मुनीश जी।
0: जी सर, आज हमारा विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं और हमारे नंबर हैं लैंडलाइन के 011-233-1048। अगला नंबर है 23-717-117-106 और 233-1-4444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें फोन कर रहे हैं, एनसीआर के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो इन नंबरों से पहले आप 011 लगाना न भूलें। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का। और हम आपको फिर से विषय बता दें एक बार, कामगारों की, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा। और चर्चा का हम शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि नाम जो यहां फ्लैश हो रहा है, राय बरेली उत्तर प्रदेश से रमा शंकर जी। कहिए रमा शंकर जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो सीलिंग रेजिंग हुई है, इसमें जो है कामगारों के जो है फंड ईपीएफ का रास्ता प्रशस्त हो गया, तो इसकी सुरक्षा क्या गारंटी है?
0: जी आप रमाशंकर जी अपना सवाल कृपया दोहराएंगे एक बार।
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कामगारों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है
0: जी,
2: तो इससे इनके ईपीएफ का रास्ता तो खुल गया।
0: जी हाँ, ईपीएफ का रास्ता आप कह रहे हैं कि खुल गया, ईपीएफ के दायरे में और कर्मचारी आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपका क्या है?
2: हमारा यही प्रश्न है कि क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा?
0: क्या ये पैसा सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न
2: रहेगा
0: रमाशंकर जी का? जी सर,
1: बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केंद्रीय सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो जितने आप जैसे जितने कर्मचारी हैं उनके जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास आपके नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है वो जमा करते हैं। हर महीने हम ये जितने भी अपनी राशि है इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड और ऐसे सब बहुत ही सुरक्षित जितने भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। और इसके बाद हर साल में एंड में हम इंटरेस्ट घोषित करते हैं। पिछले साल 8.25% इंटरेस्ट रेट हमने घोषित किया था और इस पे जितने भी आपके पीएफ का बैलेंस बचा है हमारे पास उस पे 8.25% जो है हम आपके पीएफ के अकाउंट खाते में जमा कर देते हैं। ये क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, ये आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित है।
0: तो रमा शंकर जी, आशा है कि आप आश्वस्त हुए होंगे कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला। और जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, पब्लिक स्पीक में आज विषय है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ की वेतन सीमा। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी। आपसे ये हम जानना चाहेंगे अपने ऐसे श्रोताओं के लिए जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं।

0: और बहुत तकनीकी रूप से शायद नहीं जानते कि ये जो ईपीएफओ की वेज सीलिंग या वेतन सीमा बढ़ाई गई है, इसका सीधा अर्थ क्या है और आम तौर पर ये कर्मचारियों को किस तरह से प्रभावित करेगा?
1: ये मैं सारे आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये 1952 का एक्ट है जो कि अभी हाल ही में 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड के द्वारा पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो जितना भी वेतन है प्राइवेट सेक्टर में जितने कर्मचारी हैं उसमें मैंडेटरी कवरेज जिसको बोलते हैं कि अनिवार्य कवरेज जो है वो 15,000 की वेतन सीमा तक की थी। 2014 में इसको 6,500 से 15,000 किया गया था और अब जो है हाल ही में 17 तारीख को इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसका मतलब ये है कि जो भी कर्मचारी 25,000 का वेतन कमाता है उसका 12% जो है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो कि आपका वेतन से कट के हमारे तरफ कंट्रीब्यूट होगा वो, और आपका जो नियोक्ता है आपके एम्प्लॉयर जो है वो अपने तरफ से 12% वो जमा करेंगे ईपीएफओ के आपके खाते में। तो ये जो पैसा जो जमा होके आएगा ये 3,000, जैसे कि आपका अगर सैलरी 25,000 है तो 3,000 रुपया आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर 3,000, टोटल 6,000 रुपए कट के आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा प्रति माह जब तक कि आप काम कर रहे होंगे इसी एम्प्लॉयर के साथ। तो पहले ये राशि जो है ये 15,000 के वेज सीमा वेज सीलिंग पे था, अब बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पहले जितने भी अगर लोग कोई अगर 16,000 कमा रहा था या फिर 20,000 कमा रहे थे तो उनको पीएफ का कोई भी फायदा नहीं था। ये वॉलंटरी अपना वॉलंटरी स्वेच्छा की तरह से अगर कंट्रीब्यूट करें तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी कवरेज नहीं था। अब ये लोग सब ये सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अब सुरक्षित अपने आप को पाएंगे।
0: जी हाँ, और देखिए एक और हमारे श्रोता छतरपुर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ रहे हैं लाइन पर, राशिद अहमद खान। राशिद साहब, क्या सवाल है आपका, बताइए।
2: सर नमस्ते। सर
0: नमस्कार। नमस्कार
2: आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत बहुत बधाई।
2: जी सर, दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये कि जैसे कोई भी कर्मचारी है एक कंपनी में काम कर रहा है तो बाय द वे दूसरे कंपनी में शिफ्ट होता है तो क्या उसका मतलब प्रोविडेंट फंड नंबर वही रहेगा उसका या चेंज हो जाता है, एक बार। दूसरी बात, जैसे 12% का आपने बताया कि 12% कर्मचारी 12% नियोक्ता, इसको मतलब प्लस माइनस किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है क्या, या मतलब फिक्स है ये नियम, ये बताना सर प्लीज।
1: धन्यवाद आपके सवाल का। तो इसमें यह बताना चाहूंगा कि आपका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसको वो यूएएन बोलते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार आपने ले लिया तो वही आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है। जब भी आप अपना नौकरी चेंज करते हैं तो आप अपने यूएएन वो दूसरे एम्प्लॉयर को आप दे देंगे, वो उसी हिसाब से आपका जो है पीएफ काट के जमा करना शुरू करेंगे। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये था कि क्या ये 12% चेंज हो सकता है? नहीं, ये कानूनी या फिर लीगल तरीके से ये फिक्स किया गया है एक्ट में, तो इसका जो है ये 12% ये चेंज नहीं होगा मैक्सिमम। लेकिन जो है आप अगर आप 30,000 कमा रहे हैं या 40,000 कमा रहे हैं, ये आप और आपके नियोक्ता दोनों मिलके कंसेंट जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कंसेंट, आप ये कह सकते हैं कि हम 25,000 से ऊपर हम नहीं कटवाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका लिमिट जो है वो 25,000 तक ही अनिवार्य है कटना। अगर आप उसके ऊपर आप 40,000 के वेतन पे आप 12% जमा करना चाहते हैं आपका और आपके नियोक्ता का ज्वाइंट कंसेंट के साथ मतलब सहमति के साथ, वो 40,000 पे भी कट सकता है। लेकिन अनिवार्य जो राशि अब रहेगा और वेतन जो रहेगा वो है 25,000। 25,000 पे 12% बनता है 3,000, तो 3,000 आपका और 3,000 नियोक्ता का मैंडेटरी है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता।
0: तो आशा है कि आपको अपने दोनों प्रश्नों के जो हैं जवाब राशिद साहब मिल गए हैं। और आपसे अगला प्रश्न हमारी ओर से ये है कि इस फैसले से कर्मचारियों की जो इन हैंड सैलरी है, टेक अवे जो सैलरी, घर ले जाने वाला जो विशुद्ध वेतन है, उस पर क्या बहुत बड़ा असर पड़ेगा?
1: देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि 15,000 जब आपका मैंडेटरी सीलिंग वेज सीलिंग था तब आपका जो 12% है वो 1,800 था।

0: अब जब 25,000 हो गया तो जो 15,000 से कम कमा रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी 12% दे रहे थे। जैसे किसी का समझ लीजिए, मान लीजिए 10,000 पीएफ का वेजेस है, तो पहले वो 1200 रुपया कटवाता था, अभी भी 1200 रुपया ही कटेगा उसका। इनका इसमें सिमिलरली, जब जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं तो उनका जो है, पहले अगर वो वॉलंटरी स्वेच्छा अपने इच्छा से ज़्यादा अपना 12% जमा कर रहे थे तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो 15,000 और 25,000 के बीच में थे, और जो पहले पीएफ के बाहर थे कम्प्लीटली, जो जिनका पीएफ कवरेज होता नहीं था, अब उनको जो है अब उसका पीएफ कवरेज देना पड़ेगा। जो जैसे कि किसी का अगर 20,000 रुपये वेतन रहा तो उसको 2400 उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा और नियोक्ता का 2400 रहेगा। इससे डेफिनेटली आपका जो 20,000 है, 20,000 में से अगर 2400 आपका डिडक्शन हो जाता है तो आपका जो टेक होम रहेगा वो 17,600 रुपये आपके टेक होम रहेगा। लेकिन मैं सब सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये समझ लीजिए ऐसा है कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में जाने वाली बात हो गई। जैसे कि ये जो 2400 है ये कहीं नहीं जा रहा, वो आपके बैंक के खाते को छोड़कर आपके पीएफ के खाते में जमा हो रहा है, और पीएफ के खाते से अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया उसमें 75% जो है स्ट्रेट अवे किसी भी कारणवश अगर आपको जरूरत हो तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये हो गया कि ये पैसा आप ही के पास है, इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट में या आपके पॉकेट में हो, ये पीएफ के अकाउंट में है, और पीएफ का खाता जो है उसमें से आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।
1: जी हाँ, लेकिन ये प्राय ये भी एक प्रश्न जो है वो सुनने में आता है कि क्या उसका एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत है जिसे आप रिटायर होने से पहले भी निकाल सकते हैं, या पूरा का पूरा आप निकालने की स्थिति में होते हैं?
0: देखिए, हमारे जो जो प्रावधान है, दो तरीके के प्रावधान है। एक है एडवांस, या जिसको पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पीएफ खाता है उसमें से आप 75% आपका और नियोक्ता का जो शेयर है दोनों को मिला के जो भी आपका उसमें आपके बैंक पीएफ अकाउंट में जो खाता में जो राशि है वो 75% आप कभी भी किसी समय किसी कारणवश आपको निकालना हो, चाहे वो आपको बीमारी की वजह से हो, हेल्थ की वजह से हो, एजुकेशन, हाउसिंग, या फिर आपको शादी के लिए या किसी भी वजह से आपको चाहिए, तो आप ये पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका परमानेंट जॉब लॉस हो गया, तो आप एक साल से जॉब से वंचित हैं, तो 75% के अलावा जो बाकी के जो 25% है वो भी आप एक साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये रिटायरमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं
1: है। एक वर्ष हो गया है आपको नौकरी से बाहर हुए दुर्भाग्यवश, तो वो उस स्थिति में आप पूरा भी उसको निकाल सकते हैं। जबकि सामान्य तौर पर जैसा आपने बताया कि यदि आप अपने नियमानुसार समय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उससे पहले 75% तक निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपने कुछ वजहें बताई कि जो देनी होती हैं, जो शायद अब बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं। पहले उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शंका होती थी कि क्या वो वजह हो सकती हैं, तो जैसे शायद शिक्षा और विवाह है, और या
0: हाउसिंग,
1: मकान का निर्माण कर रहे हैं या खरीद रहे हैं,
0: या बीमारी कोई भी,
1: या कोई रोग है, तो उस स्थिति में उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ पक्ष हैं जिनमें ये आशंका व्यक्त की जाती है कभी कभी कि जो छोटे उद्यम हैं, एमएसएमई, जिनके प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो क्या ये नए नियम उनके लिए कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे?
0: देखिए, ईपीएफ में जो कवरेज है वो अगेन वो मैंडेटरी तभी है कोई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब वो 20 से अधिक कर्मचारी उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। तो एक तो सेफगार्ड यहाँ पे रखा गया है कि थोड़ा सा मतलब मीडियम से भी ज़्यादा अगर कोई उद्यमी है तो उन्हीं को ये पीएफ वाला पूरा कानून लागू होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए रिटायरमेंट, अभी तो जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अभी 20-25 साल का दूरी दिखता नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये अभी से आप अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो जब आपका समझ लीजिए कि जब आपके आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो
1: जिम्मेदारियां बढ़ जाती
0: हैं, जिम्मेदारियां

0: बढ़ जाती हैं, एजुकेशन के लिए खर्च होना पड़ता है, तब आपके पास जो सेविंग्स है, जो जमा पूंजी है, वो कहाँ से मिलेगा? तो पीएफ एक ही इस पूरे प्राइवेट सेक्टर में एक ही उपाय है जिसके जरिए आप समय समय पर आपका सेविंग्स बनता रहता है, और इसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, नियोक्ता का भी और आपका भी कंट्रीब्यूशन साथ में जुड़ता है इसमें। जैसे कि मैंने कहा कि 8.25% इंटरेस्ट हम देते हैं, एक समझ लीजिए, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज का जो 25,000 का जो वेज सीलिंग बना, उससे अगर 6,000 रुपया आपका, 3,000 आपका और नियोक्ता का 3,006 रुपया प्रति माह आपका सेविंग्स बनता है, तो एक साल में आपका सेविंग्स बनता है 72,000। और ये अगर आप 35 साल तक अगर इसको कंटिन्यूसली बिना विड्रॉल के आप जमा करते हैं 30-35 साल तक, तो करीबन आपके 7% कम भी आप लेके इंटरेस्ट चलेंगे तब भी आपका 1 करोड़ का जमा पूंजी बनता है। तो ये रिटायरमेंट सेविंग और कंपाउंडिंग का बेनिफिट है। तो मैं ये जरूर मैं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये तो हमारे तरफ से एक 1200 रुपये का एडिशनल, कोई अगर पहले पीएफ में नहीं था और अभी उसको देना पड़ रहा है तो 3,000 रुपये का एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, या फिर वो पहले 15,000 कटवाता था, अब 25,000 रुपये कटवाना है तो 1200 रुपये का एडिशनल उसको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एम्प्लॉई जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, आपका वफादार है, आपका लॉयल्टी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बेनिफिट जो है उसको भी आश्वासन देता है, उसको भी ये मैं बोलूंगा प्रिवेंट करता है कि वो अलग अलग नौकरी छोड़ के जाने का सोचे ना, वो यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये एक तरीके से ये इंसेंटिव है कि आप अपने एम्प्लॉय रिटेंशन जिसको बोलते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ ही काम करते रहें, तो उनको आप जितना आप वेलफेयर जितना भी आप कुछ अच्छा करके देंगे,
1: लाभ दे सकते हैं
0: तो फिर उतना आपके साथ तो वो जुड़ के काम करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता लाइन पर हैं सासाराम बिहार से, अमित उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, क्या है आपकी जिज्ञासा, कहिए
2: जी। नमस्कार, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि मान के चलिए पीएफ अकाउंट है और कोई जॉब करते हैं और मान के 20 साल या 25 साल तक जॉब किए या फिर अपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिए, बिजनेस कर दिए, तो पीएफ अकाउंट को क्या वैसे ही रहता है या फिर उसको कैसे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये था कि जो आम आदमी उपभोक्ता है, जो मान लीजिए जो नॉर्मल श्रमिक लोग हैं, एक उसमें होता है पीपीएफ अकाउंट, जो पीएफ और पीपीएफ में थोड़ा सा भी इसका डिफरेंट थोड़ा बता दीजिएगा। जी
0: हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि ईपीएफ में क्या है, ये आपका प्रोविडेंट फंड जो है ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें जो भी आपने पैसा जमा किया, जैसे आपने कहा कि 20-25 साल तक काम किए उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो ये जो पैसा है 55 साल तक, जो रिटायरमेंट जो एज है 58 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है, तब तक आप अपना सेविंग्स पीएफ के अकाउंट में आप रख सकते हैं। हर साल ये आपका इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा, इसमें से जब चाहे, जैसे मैंने कहा अप टू 75% आप निकाल सकते हैं। इस टाइम हमने जो अभी जून में जो स्कीम जो निकाला है, नोटिफाई किया है, उसमें हमने ये भी कहा है कि किसी कारणवश, मतलब आपको ये नहीं हो कि कोई बीमारी हो या आपको घर चाहिए या फिर घर बनाना है या फिर विवाह क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एजुकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको किसी और रीजन से भी आपको निकालना है पैसा, तब भी पीएफ अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो स्टार्टअप में अगर आपको कुछ पैसा इसमें से पीएफ से निकाल के लगाना हो तो लगा सकते हैं। ये अकाउंट जो है आपके 58 ईयर्स उसके बाद 3 साल तक इंटरेस्ट कमाता रहेगा, आप यहाँ पे पैसा सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ये आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट ऑनलाइन पासबुक आपका आपको हमेशा दिखता रहता है, तो इसमें बैंक से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें, तो इसमें आप पैसा जरूर जोड़ के रखिएगा। सेकंड, आपने बोला कि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो आप अपने आइदर पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट के खाते में आप खोलते हैं, इसमें हर वर्ष में आप मैक्सिमम 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट जो है ये ईपीएफ से काफ़ी कम मिलता है आपको, और ये हर 5 साल, 15 साल तो रहता है, उसके बाद हर 5 साल में इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये आपका कंप्लीटली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है और आपके एम्प्लॉयर आपके नियोक्ता जो हैं वो भी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिफरेंस है।
1: जी जी जी, तो आशा है आपको ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर चर्चा कर रहे हैं और आपके जिज्ञासाओं का, आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं रमेश जी, और उनसे अब हमारा जो ये सवाल है वो ये है अगला कि प्राय ये हमारे एक साथी ने ही दरअसल हमसे अनुरोध किया कि ये भी पूछिए कि क्या ऐसा है कि ये जो ब्याज दर है या जो सरकार की ओर से जो उस पर जो प्रतिफल दिया जा रहा है क्या वो मार्केट लिंक्ड है या वो जो दर घोषित कर दी गई वही है या उसमें जो उतार चढ़ाव है उसका आधार क्या रहता है।
0: हाँ, तो मैं ये अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो हम घोषणा करते हैं ये हमारा जितना भी आप जैसे जितने कर्मचारी हैं जितने एम्प्लॉयज़ हैं इनका कंट्रीब्यूशन से हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो वित्त मंत्रालय है उनका बनाया हुआ जो अधिनियम है जो रेशियो है कि कहाँ हम निवेश कर सकते हैं उसके स्ट्रिक्टली उसके अनुपालन हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा करीब करीब 85% जो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, मतलब जो फिक्स्ड ब्याज देने वाली सिक्योरिटी है जैसे केंद्र सरकार का बॉन्ड हो गया हो या फिर रिजर्व बैंक का बॉन्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स हो इसमें हम निवेश करते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा 15% जो है ये हमारा स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है इस पे हम जो इंडेक्स फंड्स हैं इस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित रहता है और इसमें से जो हमारा हर साल में इसका जो रिटर्न आता है वो हम सबको एट नो कॉस्ट बेसिस, मतलब हम इसमें से कोई भी पैसा हम नहीं रखते, हम इसको बांट देते हैं। हम इसी हिसाब से हम ये हर साल में हम जब अपना जो जैसे कि बही खाता टाइप का हम जब निकालते हैं कि हमने कितना कमाया और हमको कितना ब्याज देना है, ब्याज की वजह से कितना हमारा खर्चा आएगा, ये दोनों का हिसाब बराबर करके उसके हिसाब से अगर 8.25% बना तो हम इंटरेस्ट 8.25% देते हैं, अगर कम ब्याज मिला हमको कम रिटर्न मिला तो हम 8% या जो भी है ज़्यादा मिला तो 8.5% हम ब्याज देंगे। तो ये मार्केट लिंक नहीं है, ये फिक्स्ड है और हर साल के एंड पे घोषणा किया जाता है और इसका जो भी राशि है आपका PF बैलेंस से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
1: जी, मौजूदा दौर में देखें तो सामाजिक आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं वो बढ़ रही हैं और लोग परिश्रम अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी एक कंपनी यदि इस पर कोई आपत्ति नहीं करती है तो वो कई बार होता है कि दो जगह भी वो काम करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ दोनों जगह उसको ये जो प्रोविडेंट फंड है उसकी व्यवस्था है तो क्या उसे उन दोनों का लाभ मिलेगा या दोनों जगह उसके कटवाने की अनिवार्यता होगी?
0: ज़रूर, ये जो है ये अगर जिसको बोलते हैं कि काफ़ी आज के यूथ जो हैं सुबह कुछ काम कर लेते हैं शाम को और कुछ जगह पे काम कर लेते हैं, तो अगर दोनों जगह से उसका PF अगर कट रहा हो तो ये दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके खाते में दिखेगा, दो एम्प्लॉयर दिखेंगे, दोनों का एम्प्लॉयमेंट जो है उससे लिंक जो भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकाउंट में दिखेगा। इसमें कोई भी हमारे तरफ से EPF कानून में कोई भी कंस्ट्रेंट या कोई भी रुकावट नहीं है, ये कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है ये जमा हो सकता
1: ये
0: है।
1: नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में है कि यदि उन्हें ये आपत्ति नहीं है कि आप दो जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते और वो लेकिन इस स्थिति में जो उनका जो नंबर है जो वो वही रहेगा, लेकिन
0: वो UAN नंबर एक आदमी का हमेशा वो परमानेंट है, वो UAN नंबर हर जगह हर एम्प्लॉयर को उसको UAN नंबर देना है।
1: जी जी जी, और इसमें एक और जो प्राय एक समस्या यदि आती है तो देखें कि ऐसी स्थिति में कि यदि दुर्भाग्यवश

0: व्यक्ति की मौत हो जाती है काम करते हुए, और उन्होंने बनाया था किसी को अपना नॉमिनी, तो वो जो स्थिति है वो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि वो काफी जटिल हो जाती है, उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है उसको ये बताइए।
1: तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो ये वेज सीलिंग जो सीमा सीलिंग जो इंक्रीज हुआ तो उससे न ही प्रोविडेंट फंड बट इवन पेंशन स्कीम में और EDLI दोनों में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये भी आएगा। तो हमारा जो पेंशन स्कीम था वो 15,000 से सीमित था, इसका मतलब अगर कोई 16,000 रुपया भी कमा रहा हो तो हमारा पेंशन स्कीम का पात्र नहीं था, वो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ, वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं था। अब जब बढ़ा के इसको 25,000 कर दिया गया है तो इसका जो है ही बिकम्स, वो अब पेंशन स्कीम का भी पात्र बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से 8.33% डाइवर्ट होके वो उसके खाते में, पेंशन खाते में चला जाता है। अगर 10 साल तक वो अगर नौकरी कर लेता है तो वो पेंशन, लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भी एक बहुत मेजर फायदा है इसमें। और जैसा कि आपने कहा कि EDLI जो हम बोलते हैं एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो ये अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेंबर का डिमाइस हो जाता है तो उसके सर्वाइवर जो नॉमिनी हैं तो उनको जो है ना केवल फैमिली पेंशन बट EDLI में 2.5 लाख से 7 लाख तक का इंश्योरेंस भी उसको प्राप्त मिलेगा। अच्छा, इसमें जो है आपने सही कहा, इसमें अगर नॉमिनी होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है हमारे वेबसाइट में, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तुरंत जो नॉमिनी को पूरा पैसा EDLI का इमीडिएटली मिल जाता है। उसको अगर ई नॉमिनेशन किया हुआ है तो उसको क्लेम फॉर्म एक भरना है और क्लेम फॉर्म के भरते ही उसको पैसा मिल जाता है। तो ये एक एडिशनल फायदा है। अगर 25,000 तक का वेज सीलिंग है, अगर वो कोई भी एम्प्लॉई 33 साल काम करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन जो है 12,500 रुपए, अगर वो 25,000 पे कंटिन्यूसली पे कर रहा है तो उसको पेंशन 12,500 रुपए का।
0: लेकिन क्या केवल नॉमिनी का नाम भर देना ही पर्याप्त है या वो ई साइन होना चाहिए इस विषय में?
1: नहीं, तो मेंबर को ई साइन करना पड़ता है और नॉमिनी का आधार भी उसको देना पड़ता है।
0: जी जी जी जी, तो ये जानकारी तो काफी महत्वपूर्ण रही और मैं समझता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं उन्हें अपनी तमाम जिज्ञासाओं के जो हैं जवाब इसमें जरूर मिले होंगे। और दोस्तों, अब समय हो रहा है ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति हमारे स्टूडियो में पधारे, उन्होंने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही दोस्तों, पब्लिक स्पीक का ये अंक समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर होगी चर्चा। अब मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए

0: अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: इट इज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर आवर बिजनेसेस।
2: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और एमएसएमई, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमेरिका के शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर
3: प्रतियोगिता। जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
4: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कॉम्पिटिशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कॉम्पिटिशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वॉज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कॉम्पिटिशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्राक्ष पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाए, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून। होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
3: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
5: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
3: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
6: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurab Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
3: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
5: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
3: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
6: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jeon Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds.

0: Americans. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200 meter freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
2: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीतती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीत कर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
0: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्रीजाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड thereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस्ड टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Srijakula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Muhammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0. And thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
1: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
3: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जे को, उन्होंने हराया कंबोडिया को, मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आध्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
2: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
1: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत, सुनिए प्यासा फिल्म से ये गीत। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और संगीत है SD बर्मन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आनंद लीजिए संतूर वादन का राग जयंत मल्हार में। संतूर वादक सतीन्द्र सिंह सोलंकी से और तबला संगीतकार हैं रामेंद्र सिंह सोलंकी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि

अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।